103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संबत 1948 के भाद्रपद मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 19 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

FM 103 MHz पर हम आकाश वैन की डाल्टनगंज से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आइए समाचारों के लिए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों के बाद स्वागत है आपका आकाशवाणी डाल्टनगंज के कार्यक्रमों में। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। नए बागों की स्थापना एवं प्रबंधन पर जानकारी दे रही हैं प्रतिमा वर्मा।
3: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें नए बागों की स्थापना और प्रबंधन की। बागवानी एक दीर्घकालीन निवेश है, इसलिए एक फलदार बगीचे की स्थापना और प्रबंधन बहुत ही सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। अधिकतम पैदावार और ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित करने के लिए बगीचे के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, सही रोपण प्रणाली, उचित रोपण दूरी, पौधों की अच्छी किस्मों का निर्धारण, नर्सरी से स्वस्थ पौधों का चुनाव, पौधों की देखभाल, फसल की बाजार व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। किसान भाइयों, एक अच्छा बागीचा लगाने के लिए ऐसे स्थान का

भूमि की भीतरी सतह पथरीली ना हो, उसमें अधिक कंकर पत्थर ना हो और ना ही उसमें अधिक जल खड़ा होता हो। जमीन की भीतरी सतह तक खुदाई आवश्यक है ताकि पथरीली सतह को हटाया जा सके। जमीन के अंदर पथरीली सतह जड़ों के बढ़ने और फैलने में बाधा पैदा करती है। जी हाँ किसान भाइयों, बागीचा ऐसी व्यवस्था और अनुमोदित विधि द्वारा लगाया जाना चाहिए जिससे पौधे का पूर्ण विकास हो और उत्पादन क्षमता बढ़ सके। समतल और घाटियों वाले क्षेत्र में वर्गाकार, षटकोण, आयताकार या किसी दूसरी विधि से पौधे लगाए जा सकते हैं। ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर विधि से पेड़ लगाना उत्तम है। किसी भी विधि से बागीचा लगाते समय यह विशेष ध्यान रहे कि आयु के साथ पेड़ों को फैलने के लिए उचित स्थान, प्रकाश और वायु मिले और पौधों की शाखाएं आपस में ना उलझें। ग्रामीण भाइयों, पौधे स्वस्थ तथा रोग रहित होने चाहिए, इसके लिए पंजीकृत पौधशालाओं और विश्वस्त स्रोतों से ही पौधे खरीदें। कलम का जोड़ भूमि से लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। ग्रामीण भाइयों, गड्ढा पौधा लगाने से एक महीना पहले तैयार कर लें ताकि मिट्टी में मिले उर्वरक और खाद पौधे को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके और मिट्टी अपने स्थान पर ठीक से बैठ जाए। जड़ों के विकास के लिए गड्ढे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और फलों की किस्म देखकर विभिन्न आकार और गहराई के बनाए जाते हैं। यदि क्षेत्र की मिट्टी पथरीली हो और मिट्टी की गहराई कम हो तो गड्ढे का आकार बढ़ा लें और जंगल की ऊपरी सतह से मिट्टी लेकर गड्ढे में भरें। पौधों को गड्ढों के ठीक मध्य में अथवा उतनी ही ऊंचाई पर लगाएं जितना कि वह पौधशाला में था। पौध रोपण के पश्चात इसके आसपास की मिट्टी को पैरों से दबा दें ताकि मिट्टी पौधे की जड़ों के साथ ठीक से बैठ जाए। पौधा लगाने के पश्चात हल्की सिंचाई अवश्य करें। किसान भाइयों, छोटे पौधों को सहारा देने के लिए इस तरह से सहारा लगाएं ताकि जड़ों को क्षति ना पहुंचे और उन्हें तने के साथ बांध दें, परंतु जैसे ही इनकी आवश्यकता ना हो इन्हें निकाल दें। खरपतवार का समय समय पर नियंत्रण जरूरी है। बिल्कुल ग्रामीण भाइयों, इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। बरसात में मल्च को हटा दें। पौधा लगाते समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। फल की बढ़ोतरी के समय और फूल आने पर, चाहे फल उगाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती भी हो, फिर भी संभव हो सके तो सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए। कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें नए बागों की स्थापना और प्रबंधन की। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें से हमें दीजिए अनुमति।

अरण्य में सीता की खोज में भटकते श्रीराम और लक्ष्मण की गिद्धराज जटायु से भेंट होती है। मरते समय जिनके नाम के उच्चारण मात्र से अधम को भी सदगति प्राप्त हो जाती है, उन्हीं प्रभु के दर्शन और हाथों का स्पर्श प्राप्त कर जटायु का जीवन धन्य हो गया। महाप्रयाण के लिए तत्पर गिद्धराज से श्रीराम अपने उद्गार प्रकट करते हैं। हे तात, आपको मैं क्या दे सकता हूं? आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं। आप परमधाम जाइए, किंतु आप पिताजी से सीता हरण का दुखद समाचार न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो रावण अपने पूरे कुटुंब सहित स्वयं जाकर उन्हें सारी कथा सुना देगा।

हमारी सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता मायने रखती है। समय के थपेड़े तन को झुलसा देते हैं, किंतु मन पर उसका प्रभाव तब तक नहीं पड़ता जब तक हम नहीं चाहते हैं। व्यक्ति यदि शक्ल सूरत से साधारण है, किंतु वह गुणवान है, प्रतिभावान है, संस्कारी है, परोपकारी है, तो वह जल्दी ही लोगों का प्रिय बन जाता है। यह सच है कि बाहरी सुंदरता का आकर्षण बहुत दिनों तक नहीं रहता, किंतु आत्मिक सुंदरता ताउम्र बनी रहती है, क्योंकि जीवन की लंबी दौड़ में सांझ की तरह ढलते रूप की नहीं बल्कि सूरज की तरह अंधेरे में उजालों को रोशन करने वाले गुणों की कद्र होती है। एक अच्छा इंसान वाकई खूबसूरत होता है। वह लोगों का मन आसानी से जीत लेता है। अगर सुंदरता तन और मन दोनों की है तब तो सोने पे सुहागा, लेकिन तन सुंदर ना भी हो, मन आत्मा में छल कपट बुराई नहीं है, तो इंसान बेहद सौंदर्यवान हो जाता है। स्वभाव एवं संस्कारों की सुंदरता से शरीर आभावान होकर स्वयं ही दमक उठता है। अंतस में खूबसूरती

नसीब से जीवन जगमगा उठता है। इंसान का रंग रूप समय के साथ फीका होने लगता है, यानी सूरत तो धीरे धीरे ढलने लगती है किंतु सीरत कभी नहीं बदलती। भीतरी सुंदरता ही अलौकिक है, शाश्वत है और इसका अस्तित्व सदैव बना रहता है। ईश्वर ने हमें जो रूप दिया है उसे स्वीकार कर मन को निखारना चाहिए। मन जितना सुंदर होगा तन भी वैसा ही हो जाएगा। हमारे आचार विचार व्यवहार का सीधा असर लोगों पर होता है और मृत्यु के बाद भी लोगों के बीच यह जीवित रहता है, काया तो मिट जाती है। एक कोयल जो काली है किंतु उसकी मधुर मीठी आवाज उसे सुंदर बना देती है। इसी संदर्भ में एक लघु कथा भी प्रचलित है। एक दिन कुरूपता और सुंदरता दोनों सागर के तट पर मिली। वे एक दूसरे से बोली, चलो सागर में स्नान कर लेते हैं। दोनों नहाने चली गईं। कुछ समय के बाद कुरूपता बाहर आ गई और उसने सुंदरता के कपड़े पहन लिए और वहां से चली गई। जब सुंदरता बाहर आई तो उसे अपना परिधान नहीं मिला। वह दुखी हुई और कुरूपता के कपड़े पहनकर वह चली गई। तभी से हम एक दूसरे में दोनों को समझने की भूल करते हैं, किंतु कई लोग हैं जो सुंदरता को कुरूपता के परिधान में भी उसे पहचान लेते हैं और कुरूपता सुंदर परिधानों में भी पहचान में आ जाती है। यह एक लघु कथा प्रचलित है जो असली खूबसूरती का अर्थ समझाती है, यानी बाहरी आवरण कितना भी सुंदर हो यदि आंतरिक सौंदर्य नहीं है तो वह बेकार है। बाहरी काया क्षणिक आकर्षण है किंतु आंतरिक सौंदर्य चिरस्थाई है। इसलिए मन के सौंदर्य को निखारें, बाहरी सौंदर्य स्वयं ही निखरता चला जाएगा।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के तहत आज आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर को, और अब समय हो चुका है गांधी कथा का। संकलन में वाचन स्वर है अनुराधा सिंह का।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, प्रस्तुत है गांधी कथा।

प्रस्तुत है गांव का आहार के बारे में गांधी जी के विचार। हाथ कुटाई का चावल, अगर चावल पुरानी पद्धति से गांव में ही कूटा जाए तो उसकी मजदूरी हाथ कुटाई करने वाली बहनों के हाथ में जाएगी और चावल खाने वाले लाखों लोगों को, जिन्हें आज मिलों के पॉलिश किए हुए चावल से केवल स्टार्च मिलता है, हाथ कुटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे। चावल पैदा करने वाले प्रदेशों

में जहां तहां जो भयावनी चावल की मिले खड़ी दिखाई देती हैं, उनका कारण मनुष्य का वह अमर्यादित लोभ ही है, जो न तो अपनी तृप्ति के लिए अपने पंजे में आए हुए लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करता है और न उनके सुख की। अगर लोकमत शक्तिशाली होता तो वह चावल की मिलों के मालिक से इस व्यापार को समूचे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खोखला बनाता है और गरीबों को जीविकोपार्जन के एक ईमानदारी के साधन से वंचित करता है, बंद करने का अनुरोध करता और हाथ कुटाई के चावलों के ही उपयोग का आग्रह रखकर चावल कुटने वाली मिलों का चलना अशक्य कर देता। गेहूं का चोकर युक्त आटा, ये तो सभी डॉक्टरों की राय है कि बिना चोकर का आटा उतना ही हानिकर है जितना कि पॉलिश किया हुआ चावल। बाजार में जो महीन आटा या मैदा बिकता है उसके मुकाबले में घर की चक्की का पिसा हुआ बिना चला गेहूं का आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि पिसाई का पैसा बच जाता है, फिर घर के पिसे हुए आटे का वजन कम नहीं होता, महीन आटे या मैदे में तौल कम हो जाती है। गेहूं का सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकर में होता है। गेहूं की भूसी चाल कर निकाल डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा बिना चला हुआ खाते हैं, वे पैसे के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मिलें जो लाखों रुपए कमा रही हैं, उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गांव में हाथ की चक्कियां फिर से चलने लगने से गांव में ही रहेगा और वह सतपात्र गरीबों के बीच बढ़ता रहेगा। गुड़, डॉक्टरों की राय के अनुसार गुड़ सफेद चीनी की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक है और अगर गांव वालों ने गुड़ बनाना छोड़ दिया तो उनके बाल बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जाएगी। वे खुद शायद गुड़ के बिना अपना काम चला सकेंगे पर उनके बच्चों की शारीरिक ताकत गुड़ के अभाव में निश्चय ही घट जाएगी। अगर गुड़ बनाना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्रामवासियों का करोड़ों रुपया उनके पास ही रहेगा। हरी पत्ता भाजियां, आहार या विटामिनों के विषय पर लिखी गई कोई भी आधुनिक पाठ्य पुस्तक उठाइए तो उसमें आप इस बात की जोरदार सिफारिश पाएंगे कि हर एक भोजन के साथ थोड़ी सी कच्ची हरी पत्ता भाजी जरूर ली जाए। बेशक खाने से पहले उन्हें 4-6 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उनमें लगी हुई मिट्टी और दूसरा कचरा बिल्कुल साफ हो जाए। ये पत्ता भाजियां हर एक गांव में आसानी से मिल सकती हैं। सिर्फ उन्हें तोड़ने की जरूरत है। फिर भी हरी पत्ता भाजियां शहरों के ही लोगों के शौक की चीज समझी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गांव वाले तो दाल चावल या रोटी पर ही गुजारा करते हैं और इनके साथ बहुत सी मिर्चें खाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चूंकि गांव के आर्थिक पुनर्गठन का काम आहार के सुधार से शुरू किया गया है, इसलिए सस्ते और सादे ऐसे खाद्यों को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है जिसे गांव वाले अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सके। भोजन के साथ थोड़ी सी हरी पत्ता भाजी लेने से गांव के लोग ऐसे अनेक रोगों से बच जाएंगे जिनसे वे आज तकलीफ भोगते हैं। गांव वालों के भोजन में विटामिनों की कमी है, उनमें से अधिकांश की पूर्ति ताजे हरे पत्तों से हो सकती है। मैंने अपने भोजन में सरसों, सोया, सलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां लेना शुरू किया है। ये कहने की जरूरत नहीं कि सलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां ही नहीं, उनके कंद भी कच्चे खाए जाते हैं। इनकी पत्तियों या कंदों को आग पर पकाकर खाना उनके सुप्रिय स्वाद को मारना और पैसे का दुर्व्यय करना है। आग पर पकाने से इन भाजियों की विटामिन बिल्कुल या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इन्हें पकाकर खाना इनके स्वाद की हत्या करना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कच्ची भाजियों में एक प्राकृतिक स्वाद होता है जो कि पकाने से नष्ट हो जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा, संकलन एवं वाचन स्वर था अनुराधा सिंह का। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं भेंट वार्ता, बीमार शब्द एक रूप अनेक। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर राजेश कुमार, फिजिशियन पलामू। भेंट करता है संजय कुमार मिश्र।
1: तमाम श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आजकल हर 10 घर में से एक घर में दवाओं का ज्यादा असर आप देखेंगे। घर में कोई ना कोई बीमार आपको देख। आपने कभी विचार किया है कि इसकी क्या वजह है कि लोग बीमार होते जा रहे हैं? वजह जो भी हो लेकिन बीमार तो हैं। अस्पताल में आप जाएंगे तो देखेंगे कि इतनी भीड़ है कि खड़े होने की जगह नहीं है। वजह तो वही है कि लोग बीमार हैं। अगर थोड़ी समझदारी, थोड़ी जानकारी, जागरूकता आपके अंदर हो तो ये बीमार लोगों में कमी लाई जा सकती है। ऐसा कहते हैं हमारे डॉक्टर, हमारे विशेषज्ञ। बीमारियों का बढ़ना और उसे ठीक करना दो बातें हैं। आपको आज इस कार्यक्रम में इसी विषय पर जानकारी दिलवाते हैं कि बीमारियों से कैसे बचें, कौन कौन बीमारियां हमें परेशान करती हैं, बीमार करती। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला अस्पताल में पदस्थापित शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार
2: जी। नमस्कार।
1: आज इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, क्या वजह है इसकी कि हर तरफ लोग

0: बीमार नजर आ रहे हैं।
1: आजकल देख रहे हैं कि बीमारियों का लंबी लाइन लगी रहती है प्राइवेट सेक्टर से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम बीमार क्यों पड़े। हाँ, केवल हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवा लेते हैं, घर आ जाते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते हैं कि हम ये बीमार क्यों पड़े, हमको ये बीमारी क्यों हुई। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, घर से लेके शहर तक, शहर से लेके घर तक। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घर से ही हम शुरुआत करते हैं। जैसे सपोज करें कि आपको मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, तो आप नहीं सोचते हैं कि हमको ये डायरिया कैसे हो गया, मलेरिया कैसे हो गया। तो आप सब कोई सुनते होंगे कि हाँ मलेरिया मच्छर काटने से होता है, फिर मच्छर कैसे पनपता है, साफ सफाई घर के आसपास नहीं रखते हैं, पानी का जमाव लगा रहता है। तो यदि अपने घर के आसपास पानी का जमाव नहीं होने देंगे, उसको साफ सुथरा रखेंगे, तो मच्छर नहीं पनपेंगे, तो एक मलेरिया से बचाव हो जाएगी। उसी तरह से खाने पीने पर भी ध्यान देना जरूरी है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अब सपोज करिए कि खाने पीने से संबंधित बीमारी, जैसे कि आपका डायरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, अब ये सब चीज चाहेंगे कि हमको नहीं हो, ये सब आपके हाथ में है। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, पानी आप होटल से पीते हैं, अभी नहीं जानते कि होटल का पानी जो है कहाँ पे किस कंटेनर में रखा हुआ है, जो पानी दिया आप पी ले, हाँ कितना दूषित है पानी वो हम नहीं देख पाते हैं। उस पर ध्यान दे कि हम जो पी रहे हैं वो पानी शुद्ध है कि नहीं है। यदि आप पानी अशुद्ध पी लीजिएगा तो उससे क्या होगा कि आपको उल्टी पैखाना शुरू हो जाएगा, आपको जॉन्डिस हो सकता है, बहुत तरह का परेशानी और भी पड़ सकती है। उसी तरह से खाने पीने की चीज, जैसे कि बाजार में जाइए तो बहुत लोग सामान ढक कर बेचते हैं, जो अच्छे समझदार दुकानदार हैं सामान को ढकते हैं कि इस पर कोई तरह का कीड़ा मकोड़ा नहीं पड़े और ग्राहक को शुद्ध खाना दें। लेकिन बहुत सारा देखिएगा ठेला खुमचा पे लोग खुलेआम जो है लट्ठा समोसा जिलेबी बेचते हैं, उस पर जो है मक्खी आकर बैठती है। अब सपोज करिए कि हम खखाड़ थूक फेंकते हैं रोड पे, कहीं पर लोग लैट्रिन कर देता है, वहां पे मक्खी बैठती है उस लैट्रिन पे और खखाड़ पे, वो उड़ते हुए जाके समोसे पे जिलेबी पे बैठ जाती है और उसको हम पैसा देकर खरीद के खाते हैं, वो पेट में जाके हमारे को बीमार कर देते हैं।
2: तो हम डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि पैसे देकर के हम बीमारी खरीद रहे हैं, ना कि जिलेबी और समोसा।
1: पैसे देकर हम बीमारी खरीद रहे हैं, तो इस पर ध्यान दें कि जब बाजार में जाएं तो वैसे दुकानदार को सिलेक्ट करें जिसका खाद्य पदार्थ जो भी है ढका हुआ है, मक्खी नहीं बैठ रहा है। तो हम ये कम से कम जॉन्डिस से, टाइफाइड से और डायरिया से बच जाएंगे, क्योंकि अशुद्ध खाना खाने से आपको टाइफाइड, आपको जॉन्डिस और डायरिया हो जाती है। तो ये देखेगा, हम सफाई से मलेरिया से बच गए, डायरिया से बच गए, जॉन्डिस से बच गए, टाइफाइड से बच गए। और खाना पीना पे और चीज पर ध्यान देना जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। बहुत चीज हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो खुद बीमार पड़ रहे हैं। ये भी ध्यान दें कि हम पौष्टिक खाना खाएं। जैसे वो टीबी वाला मरीज को देखिएगा, पतला दुबला रहता है, वो जाएगा बाजार में तो क्या करेगा, चौमिन खा लेगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, लेकिन पौष्टिक चीज नहीं खाता है। टीबी नहीं हो इसके लिए है कि आप प्रोटीन युक्त खाना खाए। प्रोटीन कहाँ से आएगा भाई, तो दाल पीजिए, डेली एक कटोरा दाल पीजिए, कभी कल अंडा ले लीजिए, मछली मीट खाइए। तो प्रोटीन खाने से क्या होगा कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम डेवलप होंगे, रोग से लड़ने की क्षमता होगी। तो कोई भी टीबी वाला मरीज खांसता है तो उसका बैक्टीरिया आपके शरीर में जाके और टीबी पैदा करता है। तो शरीर को मजबूत रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए खाद्य पदार्थ में प्रोटीन युक्त खाना खाएं। प्रोटीन युक्त यदि खाना खाइएगा तो क्या होगा कि आपका इम्यूनिटी ठीक रहेगा, तो आपको टीबी नहीं होगा। तो देखिए, आप खान पान अच्छा खाना खाने लगिएगा तो टीबी नहीं होगा। बाहरी खाना से परहेज करिए। बाहरी खाना आजकल हम सबसे ही बोलते हैं, खासकर जो 40 साल के ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, जो मोटे हैं और खासकर ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं, उनको हम यही सलाह देते हैं, एमआरपी डाइट आप मत खाइए। अब पूछेगा एमआरपी डाइट क्या है। हमारे अनुसार एमआरपी डाइट हो गया मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट। उन्हें मोटे आदमी के लिए बोल रहे हैं जिसका पेट निकल गया है, जो डायबिटीज और शुगर है, आम आदमी के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि आप मीट और मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क का कम से कम सेवन करें। रिफाइंड खाना, आर से हो गया रिफाइन, कोई भी रिफाइन जैसे हो गया मैदा हो गया, आपका कोई भी रिफाइन प्रोडक्ट हो गया, रिफाइन तेल हो गया, ये चीज खाने से आदमी ज्यादा बीमार पड़ते हैं। पीस हो गया पैकेज किया हुआ खाना, पैकेज किया हुआ खाना जैसे सपोज करिए कि पैकेज किया हुआ अचार हो गया, पैकेज किया हुआ दालमूट हो गया, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, उसमें इतने नमक रहते हैं कि यदि बीपी का मरीज खा ले तो उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाएंगे, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लकवा मार देगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जो जिनके पेट निकले हुए हैं, ब्लड प्रेशर शुगर का मरीज है, वो एमआरपी डाइट अवॉइड करें, ठीक है, तो वो अपने स्वस्थ रहेंगे। उसी तरह से हम लोग आजकल बीमार पड़ने का ही तो कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी है। कम्युनिकेबल हो गया कि एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी हो गया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आ गया आपका ब्लड प्रेशर, शुगर के बाद हार्ट का बीमारी। तो ये सब के लिए भी है कि आप खान पान, अपना रहन सहन, इस पर भी ध्यान दीजिए कि हम लोग आजकल रिच डाइट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते पेट निकलते जा रहा है, पेट में चर्बी जमा हो रही है, वो चर्बी जाकर हमारे हार्ट के नस में जमा हो जाते हैं, जिसके चलते हम हार्ट के मरीज हो जाते हैं, एंजाइना का मरीज हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं। तो वैसे चीज हम कैसे कंट्रोल करें, एक तो चर्बी युक्त खाना कम से कम खाएं, सुबह में उठकर हम मॉर्निंग वॉक करें, खूब टहले, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर टहले, ये टहलना बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन आजकल जगह की कमी है, लोग नहीं टहल पाते हैं, तो कोशिश करिए कि सुबह शाम साइकिल से ही तो कम से कम 1-2 किलोमीटर साइकिल चला के एक्सरसाइज करें, तो इससे होगा कि आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, हर तरह का बीमारी कंट्रोल रहेगा। इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप, एक्सरसाइज करके, खाना खा के, बढ़िया जो पौष्टिक खाना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसा चीज कोई भी नहीं खाएं जिससे हम बीमार पड़ जाएं। अब देखिए, कोल्ड ड्रिंक ऐसा चीज है कि 300 ml कोल्ड ड्रिंक पीने से 10 चम्मच चीनी के बराबर उसका ही है जाता है, मतलब 10 चम्मच आप डायरेक्ट चीनी ले लीजिए। यदि आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपका हाथ पैर में झिनझिनी, नस कमजोर होने लगेंगे, सेक्स कमजोर होने लगेंगे, शुगर कंट्रोल नहीं रहने पर आपका हृदय का बीमारी, किडनी का बीमारी, ये सब होने लगेंगे। अब इसमें श्रोतागण पूछते हैं कि हम मधुमेह का मरीज हैं, सर हमको लोग बोलते हैं कि मधुमेह के बीमारी में किडनी खराब हो जाता है, तो हम कैसे जाने कि मेरा किडनी खराब हो रहा है? तो इसके लिए सबसे अहम बात है कि आप रेगुलर साल में एक बार अपना किडनी प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल कराते रहिए, जिसमें ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन का जांच होता है, उसे एक मार्कर है क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया, जिसे पता चल जाए किडनी में हमारा खराबी है कि नहीं है। ये बहुत सारा बीमारी में क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, उसमें एक बीमारी ये शुगर भी है। तो जब भी आपका किडनी में प्रॉब्लम आएगा आप, तो उसका है कि आपका पैर में सूजन होने लगेगा, पेशाब कम होने लगेगा। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आने लगे कि पैर में सूजन हो रहा है, पेशाब कम हो रहा है, तो अपने चिकित्सक से जाकर मिलकर उनसे आप किडनी का जांच कराइए। यदि ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो आप हर बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से मिलकर उस बीमारी को हम लोग आगे बढ़ने से बचा सकते हैं। तो जितने भी ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज हैं, साल में एक बार किडनी का जांच जरूर कराना चाहिए। कॉस्टली जांच होता है, हर महीना तो संभव नहीं है, लेकिन साल में एक बार अपना किडनी प्रोफाइल करा लेना चाहिए। और यदि उसके पहले आपका पैर में सूजन वगैरह हो रहा है तो उसको जल्दी जाकर अपना जांच करा लीजिए।
2: डॉक्टर साहब, एक बात मेरे मन में आ रही है, दो बातें होती हैं, आप लोग कहते हैं कि हेल्दी।
0: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत बीमार एक शब्द एक रूप अनेक, इस विषय पर भेंटवार्ता। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनोसिस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जाँच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे।

0: मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर कुन को सौंप दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है, उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्वारिका में जन्माष्टमी मनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने चीन की हांगकांग टीम के विरुद्ध महिला क्रिकेट एशिया कप के सातवें मैच में 137 रन से बड़ी जीत हासिल की है। इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल में एक जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कार्यक्रम है
2: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 ऑन बोर्ड GSLV-F17 रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश अर्ली दिस मॉर्निंग। After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. This is a state-of-the-art Earth observation satellite and India's first imaging satellite from geosynchronous orbit, enabling advanced imaging across visible, infrared, multispectral and hyperspectral bands. The satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. Government has constituted a 31-member Joint Committee of Parliament on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel. Prominent names from

अब से कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। कलाकार होंगी शारदा सिन्हा। स्वर सरिता कार्यक्रम का समय है 7:45। आज के कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह एवं मिताली सिंह। सुबह के 8 बजे हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 8:45 पर पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। सुबह के 9 बजे आप सुनेंगे जोहार पलामू कार्यक्रम। 9:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1365। सुबह के 10 बजे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार और 10:05 पर हिंदी में समाचार रिले होंगे। 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे।

दिन के 12 बजे विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे यादों की महफिल। दिन के 1 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे और 1:10 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 1:20 पर पुनः मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। दिन के 2 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पुनः मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे, 2:55 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 3 बजे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम

चार बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार और 4:02 पर मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे वृद्धा भारती के कार्यक्रम। पर पुनः हमारे स्टूडियो से होगा कार्यक्रम विवरण। 5:35 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। महिलाएं बच्चों के पोषण का रखे ख्याल और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पौराणिक महत्व पर चर्चा होगी। साथ ही वार्ता होगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के आध्यात्मिक महत्व पर ब्रह्म कुमारी सुनीता से। शाम 6:00 रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 6:02 पर खेतीबाड़ी कार्यक्रम। 6:30 पर ग्रामीण सभा कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 7:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 7:10 पर जिले में आज कल। 7:15 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा एक रंग। 7:45 पर आप सुनेंगे उड़ान कार्यक्रम के तहत रोजगार से जुड़ी बातें। रात्रि 8:00 फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 8:45 पर हिंदी में समाचार और रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। रात्रि 10:00 हमारे स्टूडियो से होगा फिल्म गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 11:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर हम दिल्ली केंद्र से जुड़ेंगे श्री द्वारिकाधीश मंदिर एवं श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के आंखों देखे हाल के प्रसारण के लिए। रात्रि 12:15 पर हमारी सभा की समाप्ति।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। आज की कलाकार थी शारदा सिन्हा। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है स्वर सरिता कार्यक्रम का। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आ जाइए, सुनते हैं भूपेंद्र सिंह एवं मिताली सिंह को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता के तहत अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम समाचारों के लिए जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे और पुनः 8:45 पर हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे।

0: अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram per AIR News Alerts ko follow kare.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से

वन अफसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री

0: भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है, जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F-404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi.com और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है डायमंड से डिफेंस

0: Our correspondent reports that Mathura and Vrindavan in Uttar Pradesh is fully geared to celebrate the birth of Lord Krishna.
1: हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. द स्ट्रीट्स ऑफ मथुरा एंड वृंदावन स्टीप्ड इन डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा आर रिवर्बरेटिंग विद द चैंटिंग्स ऑफ जय श्री कृष्णा. टुडे इज लॉर्ड कृष्णास बर्थडे एंड प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड सेलिब्रेशन आर अंडरवे थ्रू आउट द सिटी. लॉर्ड कृष्णास बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड विद ग्रेट

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा। शहरीकृत जिलों में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनेगा सैटेलाइट टाउनशिप। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद छूटे पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने का दिया निर्देश। पलामू में एसीबी की कार्रवाई। सड़क और कुआं निर्माण योजनाओं में वित्तीय अनियमितता के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। जन्माष्टमी को लेकर रांची में यातायात व्यवस्था में किया गया बदलाव। आज और कल सुबह 6 से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। और 21वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जमशेदपुर के एथलीट हिमांशु कुमार सिंह ने हाई जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बनाया नया मीट रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भूमि संबंधी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के अन्य शहरीकृत जिलों में उपलब्ध भूमि, आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी के आधार पर सैटेलाइट टाउनशिप की संभावनाओं पर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने रांची स्मार्ट सिटी विस्तार और एचईसी से संबंधित विषयों पर वार्ता की। तैयारियों के साथ योजनाओं को समयबद्ध आगे बढ़ाने को कहा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रारूप प्रकाशन के बाद छूटे पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने बीएलए

0: की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अगले दो दिनों में जिला और ईआरओ स्तर पर बैठक करने को कहा। फॉर्म 6, 7 और 8 से जुड़े आवेदन और आपत्तियों की सूचियां राजनीतिक दलों को साप्ताहिक रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध कराई जा रही है।
1: एसीआर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, इसलिए किसी का छुपा छुपा के किसी का नाम कट जाएगी करके एक गलत इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको माध्यम से बताना चाह रहा है। ये एसीआर प्रोसेस ट्रांसफर प्रोसेस है, इसलिए अभी वो सब कितना भी आपको एलिजिबल व्यक्ति है उसका जोड़ने के लिए फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं, किसी के नाम में ऑब्जेक्शन है मतलब फॉर्म 7 दे सकते हैं, किसी का भी करेक्शन का है मतलब फॉर्म 8 दे सकते हैं, वो 17 तारीख तक।
0: पलामू जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छतरपुर, नौडीहा बाजार और चैनपुर थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और ठेकेदारों को पकड़ा गया। मामला करीब 3 दशक पुराने सड़क और कुआं निर्माण योजनाओं में वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 11वें दिन कोल्हान पहुंची। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में यात्रा के दौरान युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग को लेकर कार्यक्रम और प्रदर्शन किए। यात्रा का नेतृत्व कर रहे देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य की लड़ाई है।
2: ये उलगुलान है, ये आंदोलन है। जितना खुशी हम अपने आंदोलन से 45 परीक्षाओं पर कार्रवाई करा के, 22 परीक्षाओं को रद्द करा के, 17 परीक्षाओं को जांच करा के, 6 परीक्षाओं को रोक लगा करके जितना खुश नहीं हुए, उससे ज्यादा खुशी जो हम गांव-गांव जा करके, हम टोला मोहल्ला जा करके, चौक चौराहा जा करके आज जागरूक करके और अपने अधिकार के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, उससे बड़ा खुशी की बात।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज रांची में प्रेस वार्ता करेंगे। मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथि गृह में सुबह 11:30 बजे होने वाली प्रेस वार्ता में उनके झारखंड दौरे के कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से श्री गणेश पूजा रांची महानगर जिला महासमिति के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को गणेश महोत्सव 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया और आयोजनों की तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक एकजुटता, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में H1N1 संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रांची स्थित रिम्स में अब तक 11 मरीजों के संक्रमित पाए जाने की जानकारी है। अस्पताल प्रशासन ने निगरानी और जांच बढ़ा दी है। फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की जांच की जा रही है और संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने टाइगर मोबाइल के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ गश्ती व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। उन्होंने बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप, शिक्षण संस्थानों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन गश्ती, संदिग्धों की सत्यापन और क्यूआर कोड आधारित पेट्रोलिंग के निर्देश दिए। साथ ही फायरिंग अभ्यास और 3 वर्ष से अधिक समय से तैनात कर्मियों के स्थानांतरण का निर्देश दिया। बोकारो में जर्जर भवनों और जल जमाव को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने सभी अधिकारियों और पुराने और जर्जर भवनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है ताकि किसी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। वहीं जल जमाव की समस्या के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
3: मैंने ये जो कहा है बीएसएनएल को रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, वो रेगुलर मेंटेनेंस उनको करना चाहिए और यही करने से ही इसका सोल्यूशन निकल सकता है। सभी अधिकारियों को, सरकारी कार्यालयों के लिए भी ऐसा इश्यू कर रहे हैं कि ताकि वहां इस तरह की चीजें ना, मेंटेनेंस के अभाव में कल ऐसी स्थिति जर्जर ना हो जाए और आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कंसर्न से, अवेयरनेस से लोगों से हमको जानकारी भी प्राप्त हो रही है कि कहां कैसी स्थिति है।
0: धनबाद के बाघमारा क्षेत्र में लगातार हो रहे भूधसान को लेकर लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल की कार्यशैली

0: पर नाराजगी जताई है। इस बीच क्रमिक विकास मंच ने भूदशान की घटनाओं को लेकर कार्रवाई की मांग पर संघर्ष करने की घोषणा की है। मंच के सदस्यों ने प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
1: तोपचाची जलापूर्ति की जो पाइपलाइन है, क्या वो रहेगी या उसमें कहीं रुकावट आएगी? क्या जलापूर्ति होती रहेगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि हमारे कतरास बाजार एक बाजार है, और बाजार तभी तक होता है जब उसका ग्राहक होता है। ग्राहक चारों तरफ से भाग रहा है, भगाया जा रहा है, धसाया जा रहा है, तो इस पर चिंतन करने के लिए ये बैठक थी।
0: राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रांची सहित राज्य भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। रांची में दहीहांडी प्रतियोगिता व झांकी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इसे लेकर यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। रांची में आज और कल सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं कई प्रमुख मार्गों पर छोटे बड़े मालवाहक और सवारी वाहनों का परिचालन दोपहर 3 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यकता के अनुसार वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। जमशेदपुर के गोविंदपुर निवासी युवा एथलीट हिमांशु कुमार सिंह ने झारखंड का मान बढ़ाया है। पंजाब के लुधियाना स्थित गुरु नानक स्टेडियम में आयोजित 21वीं नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप के अंडर 18 बालक वर्ग की हाई जंप स्पर्धा में हिमांशु ने 2.9 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने 2.8 मीटर के पुराने मीट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने जेपीएससी और जेएसएससी में हुई कथित अनियमितता मामले में चल रही सीआईडी जांच की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 5 निजी विश्वविद्यालय के 218 अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट जांच करेगा शिक्षा विभाग। प्रभात खबर लिखता है, जेटेट 11 अक्टूबर को और रिजल्ट दिसंबर में, टाइमलाइन तैयार। हिंदुस्तान ने लिखा है, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, जेपीएससी अध्यक्ष की कब होगी नियुक्ति। और दैनिक जागरण की सुर्खी है, जांच की जद में उत्पाद सिपाही परीक्षा, तमाड़ में पेपर रटवाते पकड़ाया था सालवर गैंग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा। शहरीकृत जिलों में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनेगा सैटेलाइट टाउनशिप। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद छूटे पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने का दिया निर्देश। पलामू में एसीबी की कार्रवाई, सड़क और कुआं निर्माण योजनाओं में वित्तीय अनियमितता के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। जन्माष्टमी को लेकर रांची में यातायात व्यवस्था में किया गया बदलाव, आज और कल सुबह 6 से रात 12 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंधित। और 21वीं नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप में जमशेदपुर के एथलीट हिमांशु कुमार सिंह ने हाई जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बनाया नया मीट रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

समाचारों के बाद स्वागत है आपका आकाशवाणी डाल्टनगंज के कार्यक्रमों में। अब पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। आज इस कार्यक्रम को हमने सजाया है दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी के गीतों से। इनका है आज जन्मदिन। अपने दौर के सबसे लोकप्रिय चॉकलेट बॉय और रोमांटिक हीरो थे ऋषि कपूर साहब। उनका बेबाक अंदाज और शानदार अभिनय हमेशा याद किया जाता है। अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में उन्होंने अपने जीवन से जुड़े कई हैरान करने वाले खुलासे किए थे। चॉकलेट देकर करवाई थी इन्होंने पहली शूटिंग। ऋषि कपूर की पर्दे पर पहली उपस्थिति साल 1955 की फिल्म श्री 420 के मशहूर गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में हुई थी। इस समय उनकी उम्र महज 3 साल की थी। शूटिंग के दौरान जब बारिश का पानी उन पर गिरता तो वे रोने लगते थे, जिसके बाद अभिनेत्री नरगिस उन्हें बहुत सारी चॉकलेट्स का लालच देकर शूटिंग के लिए मनाती थी। तो और भी कई अनसुनी बातें हम बताएंगे ऋषि कपूर साहब से जुड़ी हुई। आइए कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: 4 सितंबर 1952 को जन्मे ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी थी। इसके पहले उन्होंने मेरा नाम जोकर में अपने पिता राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। ऐसा माना जाता है कि राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए बॉबी बनाई थी। इस बात की हकीकत को बताते हुए ऋषि कपूर ने कहा था कि मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद राज कपूर के आर्थिक हालात कुछ बिगड़े थे, जिसकी वजह से वह एक टॉप स्टार को फिल्म के लिए साइन नहीं कर पाए थे। राज कपूर ने एक टीनेज रोमांटिक फिल्म बॉबी प्लान की और इसके लिए उन्होंने ऋषि कपूर को चुना। बॉबी की जबरदस्त सफलता के बाद ऋषि 90 से ज़्यादा फिल्मों में रोमांटिक रोल करते नजर आए। नीता कपूर के साथ ऋषि की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। खास तौर पर युवा इस जोड़ी के दीवाने थे। दोनों ने कई फिल्में की और अधिकांश फिल्में सफल रही, लेकिन फिल्म बॉबी में जो जबरदस्त केमिस्ट्री ऋषि कपूर और डिंपल के बीच देखी गई वह शायद ही किसी फिल्म में दिखी।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

हम भी बिना यह कहे कि फिल्म चांदनी का अगर जिक्र न हो तो ऋषि कपूर का जिक्र पूरा नहीं होता, हम चुप नहीं रह सकते। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म साल 1989 की ब्लॉकबस्टर चांदनी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस फिल्म में ऋषि कपूर, श्रीदेवी और विनोद खन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे और ऋषि कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी को इस फिल्म में बेहद पसंद किया गया था।

0: गीत गुंजन कार्यक्रम में ऋषि कपूर साहब को हम याद कर रहे थे उनके जन्मदिवस के अवसर पर। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है जोहार पलामू कार्यक्रम का।
1: जोहार पलामू।

जोहार प्रणाम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, नमस्कार, जोहार, और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत

और अब आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भारत की असली पहचान उस इंसान से मिलती है जिसके दिल में दूसरों के लिए सम्मान और स्वीकृति हो। यह विचार है राजा राम मोहन राय जी की। और बात करें मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल यानी कि 5 सितंबर को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। कल भी बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलेंगी और आज का भी मौसम बेहद खुशनुमा है। तो मौसम की इस जानकारी के बाद कार्यक्रम का अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद कुछ मुख्य खबरों से हम आपको अवगत कराएंगे।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दस लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और अब कुछ मुख्य खबरों पर आई डालते हैं एक निगाह। जिले में सैटेलाइट टाउनशिप की संभावना तलाशें, यह कहना है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री ने की स्मार्ट सिटी के तहत भूमि संबंधी कार्यों की समीक्षा, भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहरों के विस्तार और आधुनिक शहरी आधारभूत संरचना के विकास पर हुई चर्चा। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी GRDA एवं रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत भूमि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर उच्च स्तरीय चर्चा की। बैठक में राज्य में सुनियोजित शहरी विकास, भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहरों के विस्तार तथा आधुनिक शहरी आधारभूत संरचना के विकास को लेकर व्यापक

विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर राज्य के अन्य शहरीकृत जिलों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं को समग्र अध्ययन किया जाए। इसके लिए संबंधित जिलों में उपलब्ध भूमि, आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी, नागरिक सुविधाओं, रोजगार की संभावनाओं तथा भविष्य की आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। कर्मा वग्रिडीह ओसीपी का पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन। झारखंड में बंद कोयला खदानों का होगा फिर से इस्तेमाल। नई ऊर्जा परियोजनाओं और निवेश की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। राज्य में बंद होने वाली कोयला खदानों को अब सिर्फ खाली छोड़ने की बजाय नए सिरे से इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकार ने ग्रिडी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट और रामगढ़ जिले की कर्मा ओसीपी के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। इस संबंध में रांची में गुरुवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में दोनों खदानों को फिर से इस्तेमाल करने की योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजे जाने पर सहमति बनी है। इस पहल के तहत खदान होने के बाद उसकी जमीन, पानी, पर्यावरण और आधारभूत ढांचे का दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए दोनों खदानों का विस्तृत माइन क्लोजर एंड रिपर्डिंग प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि खदान की जमीन और आसपास के संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से स्थानीय लोगों के रोजगार और आय के नए साधन के रूप में विकसित किया जाए। गुरु गोष्ठी में विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था की समीक्षा। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यू डैस आधार, मध्याह्न भोजन, शौचालय और छात्र शिक्षक उपस्थिति के लिए जानकारी। नौटिया बाजार पलामू से खबर है। प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी परितोष प्रदर्शन ने प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों से विद्यालयवार शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने यू डैस आधार, मध्याह्न भोजन, शौचालय, सावित्री बाई फुले योजना, छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति तथा विद्यालय भवन की स्थिति की बारी बारी से समीक्षा की। तेतराई में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। 16 टीमों के बीच होगी प्रतियोगिता। विजेता को 12 और उप विजेता को 8000 का मिलेगा पुरस्कार। पाकी प्रखंड के तेतराई स्थित डॉक्टर अंबेडकर उच्च विद्यालय के मैदान में गुरुवार शाम नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। तेतराई पंचायत के मुखिया राजेंद्र पांडे और जितेंद्र पांडे ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और किक मारकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला तरहसी प्रखंड के बेदानी खुर्द और सतवरवा की टीम के बीच खेला गया। छात्राओं की शिकायत पर 24 घंटे में सड़क मरम्मत का काम हुआ शुरू। जन समाधान दिवस में बताई थी जर्जर सड़क की समस्या। उपायुक्त के निर्देश पर किसैनी में डस्ट डालकर समतलीकरण शुरू है। जन समाधान दिवस में पाटन प्रखंड के किसैनी गांव की कक्षा 10 की छात्राओं द्वारा जर्जर सड़क की समस्या बताए जाने के महज 24 घंटे के भीतर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्राओं की शिकायत पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को सड़क के आवागमन के योग्य बनाने का निर्देश दिया था। उपायुक्त के निर्देश के बाद गुरुवार को किसैनी गांव की उक्त सड़क पर डस्ट डालने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद जेसीबी मशीन से सड़क के समतलीकरण का कार्य कराया जाएगा। इससे सड़क पर आवागमन सुगम हो जाने के साथ साथ विद्यालय आने जाने वाली छात्राओं को राहत मिलने की उम्मीद है। जन समाधान दिवस के दौरान छात्राओं ने बताया था कि बारिश के कारण सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इससे आवागमन में परेशानी के साथ साथ दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। जरूरतमंद मरीज के लिए वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट ने कराया रक्तदान और इस पहल से बची मरीज की जान। गारू निवासी एक जरूरतमंद मरीज के लिए वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल पर गुरुवार को रक्तदान कराया गया। मरीज का हीमोग्लोबिन स्तर 7 था और उसे तत्काल रक्त की आवश्यकता थी। इस अवसर पर वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट ने पहल करते हुए एक व्यक्ति के द्वारा रक्तदान कराकर उस मरीज की जान बचाई गई। संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती पर कलश वितरण कार्यक्रम। संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर सुतना स्थित शिव शक्ति धाम में कलश वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री ने
कहा कि संत रविदास महान संत और समाज सुधारक थे, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने समाज और हिंदू संस्कृति को दिशा देने का काम किया। उनके विचार सभी के लिए पूजनीय और प्रेरणादायी हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान समेत लंबित मामलों का होगा निपटारा। 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय में लगेगी लोक अदालत, समस्याओं के समाधान के लिए सशक्तिकरण शिविर भी। व्यवहार न्यायालय गढ़वा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसमें लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के साथ ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। लोगों की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए लोक अदालत परिसर में सशक्तिकरण शिविर भी लगाया जाएगा। यह जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पानी, बिजली, उपभोक्ता विवाद समेत विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का सुलह के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। इन मुख्य खबरों के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया की ओर।

और अब बारी है इतिहास के पन्ने पलटने की। और आज के इतिहास में क्या कुछ है खास। आज है 4 सितंबर, कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स शहर की स्थापना आज ही की तारीख को 1781 में की गई थी। 1888 में महात्मा गांधी ने इंग्लैंड जाने के लिए समुद्री यात्रा शुरू की थी आज ही की तारीख को। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तारीख थी 4 सितंबर। 1825 में भारत के महान नेता और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नेहरू जी का जन्म हुआ था। 1952 में भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म हुआ था। 1962 में 4 सितंबर को पूर्व भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे का जन्म हुआ था। और 1997 में आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि और नाटककार धर्मवीर भारती साहब का निधन हुआ था। तो 4 सितंबर की मुख्य घटनाओं को हम इतिहास के जरिए याद कर रहे हैं। 1665 में मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच राजा जय सिंह संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपिता हो ची मिन्ह का देहावसान आज ही की तारीख को हुआ था। श्रीलंका ने मुशर्रफ से सैन्य मदद मांगने का फैसला किया था 2001 में आज ही की तारीख यानी कि 4 सितंबर को। पैरालंपिक खेलों में गिरीश होसंगारा नागराजे गौड़ा ने भारत को पहला पदक 2012 में आज ही की तारीख को दिलाया था। केवी रघुनाथ रेड्डी भारतीय राजनीतिज्ञ थे, 1924 में इनका जन्म हुआ था, तारीख थी 4 सितंबर। भारतीय राजनेता और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह का आज ही के दिन निधन हुआ था। और राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह भी मनाया जा रहा है जो कि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो 4 सितंबर के इतिहास की जानकारी के बाद कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, आज है जन्माष्टमी का त्यौहार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को होती है। कंस के अत्याचार से जुड़ी है कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा में राजा कंस का अत्याचार और अधर्म बहुत बढ़ गया था। अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में देवकी और वासुदेव के पास कारागार में जन्म लिया था। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि रात 12 बजे अज्ञान और अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पुनः आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। और इसके साथ ही आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जोहार
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामो, प्रस्तुति स्वर था शर्मिला वर्मा का, संयोजन प्रशांत गौरव का। और अब समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 1365।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
0: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
0: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
0: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने एआई से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें एआई के

0: फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए।
0: जी
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की।
0: जी
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की।
0: जी
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
0: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
0: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाई, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही, जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई।
0: जी
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
0: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
1: जी श्रोताओं, जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की।
0: जी
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
0: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स।
0: जी
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
0: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए।
0: जी
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
0: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
0: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में।
1: जी देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की।
0: जी
1: तो उन्होंने, यानी सत्यानंद जी ने, अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए।
0: जी
1: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
0: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
0: जी
1: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें, यानी सत्यानंद स्टोक्स को, हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
0: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओ, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी जी?
1: जी हाँ विमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई।
0: जी
1: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
1: जी जरूर।
0: श्रोताओ, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
1: जी शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इसीलिए
0: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
1: जी बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं तो वहां के सेबों से

0: जदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
1: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरिधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरिधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो? अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा? ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है, बिटिया शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का शिंगार नहीं करने दूंगी।
3: भाई बता दूंगा ना बेटी।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
3: बेटी ये शिंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
2: सच पापा, ये है मेरा दूल्हा।
3: सच्ची भाई?
2: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदाबाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: ये विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा, तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा। दासी
6: जी राणा जी महाराज।
5: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
6: जी महाराज।
5: जाओ, जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
6: राणी सा की जय हो।
7: आओ सखी, भीतर आओ।
6: जी, वो
7: क्या हुआ सखी? तनिक चिंतित सी लग रही हो।
6: वो कुछ नहीं।
7: कहो ना सखी, क्या बात है?
6: वो राणी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
7: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
6: पर हमें तनिक शंका होती है।
7: दो हमें, हम अभी पियेंगे।
6: रुकिए राणी सा जरा ठहरिए। राणी सा, क्या मालूम विष हुआ तो?
7: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: आह हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम।
0: जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
6: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
0: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
8: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर?
0: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
0: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से नहीं मिलते।
5: क्या सच गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
6: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
5: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रुई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं, गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती है।

0: मीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मिड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती।

0: बहुत सुंदर।
1: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
2: इतनी मधुर आवाज।
3: हाँ।
2: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
3: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
1: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
2: तो क्या हमारी मीरा बाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
1: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा
3: यार।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी, सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
4: मैं भी
5: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
2: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
6: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
7: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
2: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
8: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
2: सबको बांटते हैं और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
7: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
9: हाँ, ये बात तो ठीक है,
7: हो गई दुगनी।
5: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
2: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
8: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?

0: हाँ 60 किलोग्राम है।
1: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
0: अरे बस किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं, वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
2: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
1: हाँ हाँ 61 किलोग्राम।
3: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो
0: पता है हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
4: 300 किलोग्राम
5: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है।
3: और चींटी की मम्मी उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
1: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा।
0: और अगर डायनासोर।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV...
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की नई खेप

0: है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. ISRO Chairman V. Narayanan said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport.
2: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our country.
1: Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. The Prime Minister said that the growing partnership between ISRO and Indian industry is adding new strength and scale to country's space program and expanding India's capabilities across the entire space ecosystem. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. Meanwhile, Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also lauded the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05. Festival of Janmashtami, which marks the birth of Lord Krishna, is being celebrated across the country today.
3: यशोमति मैया से बोले
1: Devotees thronged to the temples to offer prayers to Lord Krishna. Mathura and Vrindavan in Uttar Pradesh is fully geared to celebrate the birth of Lord Krishna. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of Janmashtami. 38 people were rescued after a ferry developed an engine problem in the Arabian Sea off Mumbai's Gateway of India last night. The ferry carrying 34 passengers and 4 crew members was returning from a sea excursion when it broke down around 8:30 p.m. about 1.5 nautical miles from the coast. After receiving information, police contacted boats operating in the area for assistance. In Nepal, the death toll from devastating flash floods has risen to 1,200.

0: by families of locals still missing. Italian Prime Minister Giorgia Meloni's government has become the longest running in Italy since the Second World War. It has broken record by lasting 1,413 days, surpassing the records set by the late Silvio Berlusconi between 2001 and 2005. Analysts say the record is likely to boost the Prime Minister's image as Italy, which has had almost 70 governments over the past 80 years, gears up for a national vote in 2027. In badminton, India's ace shuttler Kidambi Srikanth will take on Hong Kong's Lee Chiu Kee in men's single quarterfinals. And that is the end of this news bulletin. अच्छा बढ़िया. तो व्यापार भी करते हैं आप?
1: व्यापार नहीं करते अभी.
0: ओके. सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है?
1: जी जी जी
0: जी. बताइए, गानों के शौकीन हैं? गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी जी बिल्कुल.
0: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
1: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं. मोहम्मद रफी है, मुकेश हैं, किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे.
0: जी जी. इन गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा? बताइए फिर, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है जीने की राह.
0: जीने की राह
1: जी. और गाने के बोल हैं, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए.
0: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने. और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना.
1: जी बिल्कुल
0: जी. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फोन किया आपने. सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना.

0: हेलो फरमाइश।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जो सुनता है आकाशवाणी मुंबई वो अपनी किस्मत में नाच करता है।
0: क्या बात है, और आपकी आवाज सुनते ही विविध भारती के लोग नाच करते हैं। बताइए अपना नाम और जगह का नाम, वैसे आवाज तो पहचान चुकी हूँ मैं।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, फालदा नाका इंदौर से, और आपसे बहुत सालों के बाद बात हो रही लग रही है।
0: हमारी आपकी बात हुई थी हेलो सहेली प्रोग्राम में और हेलो फरमाइश में भी। बताइए अपने बारे में और इंदौर के बारे में, क्या कर रही हैं इन दिनों आप?
1: इंदौर तो बारिश थोड़ी कम हो रही है मैडम, मगर अच्छी है, ठीक, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मगर बारिश होना चाहिए।
0: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, फसलें सूख
1: पानी की कमी
0: जाएंगी।
1: अभी इस साल भी बहुत कमी थी पानी की, और अभी तो बारिश हुई नहीं, तो फिर अगले साल क्या पता क्या होगा। नहीं,
0: जी, तो पानी की बचत के लिए आप कुछ करती हैं निजी स्तर पर?
1: मैं तो पानी की बचत इस तरह से करती हूँ, अगर कपड़े धोना रहता तो बाल्टी में पानी निचोड़ के उसको ही इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन भी मांजते तो बर्तन में ये टब में पानी लेके बर्तन मांजते, ज्यादा व्यस्त धुले नहीं, नल के नीचे डायरेक्ट नहीं बर्तन धोते, और नल के नीचे धोना ही पड़ता है, बहुत मद्दा करके धोते हैं, आराम से बर्तन धोते, और कहीं पर भी रास्ते में जाते हैं नल खुला दिखता है तुरंत उसको बंद करते हैं, और घर में
0: जी
1: भी कहीं कोई पानी ढोलता रहता है तो बहुत गुस्साती चिल्ला देते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल, और पानी के एकत्रीकरण के लिए भी मुहिम चलानी चाहिए मिलजुल कर।
1: जी,
0: और आपका काम काज बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा, पर अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही तो जा नहीं रहे मैडम, बुखार आ गया था और आवाज भी ऐसी हो रही, बहुत मुश्किल से निकल रहा।
0: आवाज तो अच्छी खासी आपकी आ रही है, बढ़िया। तो आवाज
1: अच्छा
0: में तो
1: अच्छा
0: कोई समस्या नहीं दिख रही है आपकी, आवाज बढ़िया आ रही है।
1: चलो ठीक है, शुक्रिया,
0: हाँ,
1: बढ़िया आ रही। तो
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनवाए?
1: मैडम फिल्म का नाम है जाने मन, और गाने के बोल हैं आएगी आएगी आएगी किसी को हमारे

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगाफाटा, तालुका कलमदुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी।
0: पांडुरंग जी, बताइए क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक है, हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगा फाटा की। अरे
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते हैं तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी, क्या खासियत है खिचड़ी की?
1: तुम्हार को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे खिचड़ी
0: जी जी जरूर।
1: का। खासियत
0: हाँ तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की? वैसे तो दाल चावल।
1: बोले तो मसूर मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है, गरम मसाला।
0: अच्छा जी,
1: हाँ
0: तो किसी विशेष दिन बनती है
1: हाँ
0: क्या ये खिचड़ी की रोज खाई जाती है?
1: नहीं, विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगा फाटा बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ही ये प्रसिद्ध है।
0: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वादु भोजन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है, तो है ना, कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए। पर
1: हाँ, नाश्ते में खिचड़ी मिलती, खिचड़ी और
0: हाँ,
1: भजिया मिलता है
0: तो
1: और
0: बना भी
1: कढ़ी साथ
0: लेते,
1: में।
0: आप बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन हैं?
1: नहीं, बना लेते नहीं, हम देते हैं ग्राहक को। हाँ
0: अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
1: हाँ होटल है, होटल है वारंगा
0: अच्छा,
1: फाटा में, होटल है।
0: क्या बात है। अब देखिए, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगा फाटा जाने का।
1: तभी
0: वैसे
1: भी मिलेगा खिचड़ी नाश्ता और खुश हो
0: जी
1: जाएंगे
0: जी
1: खाने के बाद।
0: वैसे जिस शहर में जाए, जिस जगह पे, वहां की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
1: हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, एक अकोला या नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है और हर तरफ से गाड़ी आए तो हमारे गांव से ही जाते हैं।
0: अच्छा, क्या बात है भाई, चलिए बड़ा अच्छा लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है इस समय?
1: गाना सुना है, रोटी कपड़ा मकान में का,
0: हाँ,
1: महंगाई मार गई।
0: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

उल्फत तेरी, उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी, उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी एक

0: हेलो फरमाइश।
1: न जाने ये नजर क्यों उदास रहती है, न जाने से किसकी तलाश रहती है, ये जान के भी किस्मत में हमारी के फोन को लगे या ना लगे। मैडम जी हमें फिर भी फोन लगने की आस रहती है।
0: क्या बात है, और हमें भी आस
1: मैडम जी
0: रहती है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ
1: प्लीज
0: से बोल रहे
1: कल्याणी।
0: हैं ये बताइएगा, और हम आपके जो आपने शुरुआत की उसके जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आज तो हमें भी रहती है कि हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाए और हमारी बातचीत हो जाए। कहिए।
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: सतीश गुलियानी
1: जी जी जी
0: जी, तो बताइए
1: जी।
0: वहाँ के बारे में, जलंधर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जलंधर में जानकारी मैडम सबसे बढ़िया, यहाँ देवी तलाब मंदिर है हमारी माता जी का, जिनके सहारे हम जीते हैं। बहुत बढ़िया पुराना मंदिर है ये, बहुत सब सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है।
0: क्या
1: बाकी
0: बात।
1: घूमने फिरने बच्चों के लिए वंडरलैंड है, बहुत बहुत कुछ है मैडम यहाँ देखने को। नान नान खाने को बहुत अच्छे हैं यहाँ,
0: क्या खाने को?
1: छोले छोले पूरी,
0: अच्छा
1: छोले
0: अच्छा
1: भटूरे जो पंजाबी खाते हैं जी।
0: छोले भटूरे तो वैसे भी पंजाब के बहुत मशहूर होते हैं जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ
1: हाँ जी
0: जी,
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बताइए वहाँ के थोड़े कल्चर के बारे में बताइए। पंजाब का जो लोक संगीत है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोक धुनों पर आधारित पंजाबी गाने आजकल फिल्मों में भी शामिल किए जा रहे हैं, और बहुत सारे फिल्मी
1: हाँ
0: गीत
1: जी
0: में
1: हाँ जी
0: पंजाबी
1: बिल्कुल
0: शब्द
1: मैडम,
0: होते हैं।
1: पंजाबी जैसे जैसे ये एक एक लाइन है,
0: हाँ
1: ओ पेके जान वाली है हाय नी किन्ना, ओ होय नी किन्ना, हाय नी किन्ना चीर लाएंगी। ये गाना पंजाबी है जी हमारा,
0: क्या बात है भाई, बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया।
1: बहुत चलता है।
0: हाँ जी, तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, और वहाँ के गायक हैं जो बहुत मशहूर हुए थे, याद है क्या?
1: सारे गायक सारे मशहूर हैं यहाँ पे, हम भी मशहूर हैं मैडम यहाँ पे, ऐसी बात
0: अच्छा,
1: नहीं।
0: आप किस लिए मशहूर है भाई, बताइए, बहुत बड़े अच्छी बात है ये तो।
1: हम रेडियो के लिए मशहूर हैं, जो कि जब प्रोग्राम चलता है ना
0: हाँ,
1: तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं हम।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर
1: हाँ जी
0: प्रोग्राम में लग जाता है। वाह भाई, क्या
1: हाँ
0: बात है।
1: जी जी जी जी
0: और अपने
1: जी
0: बारे में
1: सर,
0: बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है,
0: अच्छा।
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो,
0: जी
1: सैर
0: जी
1: करो,
0: बिल्कुल
1: और सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो।
0: बिल्कुल, तो आप अपने
1: और
0: माता
1: उसके
0: पिता की
1: बाद आ
0: सेवा
1: जा,
0: करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अष्टम बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है
0: अच्छा, ओहो।
1: मैडम। मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए,
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया,
1: हाँ
0: तो
1: जी तो
0: आपकी तो आवाज भी अच्छी
1: बस
0: कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त ने अपन के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है।
0: जी,
1: बिल्कुल मैडम, यहाँ वहां पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: कब किस्मत बदल दे। और देखो मैंने वहां ऐसा देखा है कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में, वापस नहीं जाएंगे हम।
0: जी बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी
1: हाँ
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: संघर्ष किया
1: बिल्कुल,
0: है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं,
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
1: इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी
0: जी।
1: शूटिंग में जाता था, मुझे लाइट उसका काम मिला था, लाइट मैन का।
0: अच्छा, बढ़िया।
1: लेकिन मुझे मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेवर वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
0: अच्छा,
1: तो
0: वाह
1: फिर
0: भाई,
1: मैं मिल गया था जी वीरू देवगन जी के, अजय देवगन जी के पिताजी हैं, वीरू देवगन के पिताजी हैं उनके साथ।
0: अच्छा।
1: तो बात खास सुनी हो गई एक दिन रात को जरा सी बात पे, कि मैं बिना बताए उनके कमरे में चला गया, उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
0: अच्छा,
1: बस बाहर आ गया, मुझे मूड खराब हो गया, मैंने कहा या तो यहाँ पे मेरा होटल था, उस टाइम 10 10 वर्कर काम करते थे, तो मैं इसी घमंड में था कि यहाँ मेरा इतना बड़ा होटल है, 10 वर्कर काम करते।

0: ये माँ मुझे झिड़के मारते हैं, लेकिन वो झिड़के उनकी प्यार वाली थी। अगर सहा जाता तो आज मैं कामयाब होता।
1: इसमें दो बातें हैं, कई बार क्या होता है बड़ों की डांट आपके लिए बहुत मायने रखती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार आपका जब सेल्फ रिस्पेक्ट चोटिल होता है तो आप

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते मैडम जी। मैं
0: नमस्ते जी।
1: 36 गांव कटोला तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन मास्टर महोदय बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी मोहन लाल देवांगन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बहुत ही पुराने श्रोता हैं आप तो।
1: जी हाँ जी हाँ, देखिये मैं विविध भारती का बहुत दीवाना हूँ और मैं बता दूँ कि मेरे परिवार भी वैसे दीवाना है।
0: जी, ये दीवानापन हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामना है और हमारी यही कोशिश भी रहेगी कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बनी रहे ताकि आप सभी का दीवानापन जारी रहे। तो
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: अब
1: बहुत बहुत
0: बताइए
1: धन्यवाद मैडम जी। ऐसा
0: क्या काम काज है आपका, अब हमारे श्रोताओं को
1: हाँ
0: बताइए, जो नए श्रोता हैं वो भी आपके बारे में जाने।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं टेलरिंग शॉप है मेरा करोला रायपुर में मोहन चाय के नाम से, और मेरा बेटा भूपेश देवांगन और तुषार देवांगन ने फैशन डिजाइनर है,
0: अच्छी बात
1: और
0: है, क्या बात है।
1: हम लोग साथ में मिलकर सब ये करते रहते हैं। और उसके बाद जो है कि देखिए मेरा बेटा जो फैशन डिजाइनिंग किया है, एक जो दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है,
0: जी,
1: तो वो सब हम एक साथ सब काम करते रहते हैं। और मेरा एक और दुकान यहाँ पर शोरूम बड़ा बनते जा रहा है, बनने जा रहा है, मतलब बन के लगभग तैयार होने पर है, हो जाएगा इस महीने में।
0: जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, शोरूम भी तैयार हो गया, तो ये आपकी मेहनत का कमाल है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी होगी कि वो मेहनती हैं
1: जी,
0: और उस
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो नए बच्चों को भी गानों से जोड़ रखा है, रेडियो से जोड़ रखा है आपने।
1: वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सुनते हैं मैडम जी। सुबह
0: अच्छा।
1: वो वर्कशॉप में रहते हैं तो रेडियो चलता रहता है, सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और रहते हैं, रात को 11 बजे बंद होता है। टीवी देखते रहते हैं लेकिन रेडियो बंद नहीं होता।
0: ये बात बहुत अच्छी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पुराने गानों से और पुरानी परंपरा से, पुरानी विरासत से जोड़ के रखना जरूरी है। तो अब बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी।
1: देखिए मैडम जी, इस समय देखिए मेरा जन्मदिन होता है मोहनलाल देवांगन के नाम होता है मोहन मुरारी, लेकिन अब ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी है। मैं सभी श्रोताओं को, आप विविध भारती परिवार को सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
0: और कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात चले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण कर्म का संदेश देते थे, लेकिन कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। एक बाल रूप है, उनका सखा रूप है, और एक ऐसा रूप है जो दर्शन सिखाता है। आपको कौन सा वाला रूप
1: जी,
0: पसंद आता है श्री कृष्ण का?
1: मुझे तो उसका बचपना रूप बहुत अच्छा लगता है।

0: बाल रूप
1: बाल रूप बहुत बहुत अच्छा लगता है और उनका जो बाल रूप में हर एक बात में नटखट जो होता है ना
0: नटखट
1: अच्छा लगता है मैडम जी।
0: जी जी उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने, कभी पढ़िए सूर की पद रचना। उन्होंने एक जगह लिखा है, किलकत कान घुटूरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरी बे धावत। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये रचना उन्होंने की है, तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण का बाल रूप सामने आ गया है। कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: मैं गीत चुना हूँ फिल्म खुददार का और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की और उसका बोल है, मत गया सुर सारी नगेरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी जगेरी रे।
2: मच गया शोर

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: फिल्म
0: जी खलील जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम पगला फिल्म है पगला कहीं का, और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ये गाना सुनना चाहेगी।
0: जी अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
1: हम तो रिटायरमेंट है, अभी घर में है फिलहाल।
0: अच्छा, क्या काम काज करते थे?
1: हम तो ईट जुड़ाई का काम करते थे।
0: अच्छा, तो भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, ईंट अगर ना हो तो घर कैसे बने, घर का निर्माण करना है।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश मैम,
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत हिराराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ मैम,
0: आपका शुभ नाम?
1: बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बाबूलाल जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: क्या सैलून की दुकान है मैम?
0: जी, और भोपाल शहर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे?
1: भोपाल अच्छा शहर है मैम जी, तालाब
0: और
1: वगैरह है देखने के लिए, अच्छे है जगह बने हैं, बढ़िया है, कमला
0: जी
1: पार्क है
0: जी
1: जी मैम।
0: और गाना किस तरह का पसंद करते हैं? पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है आपको?
1: पुराने गाने मैम, पुराने गाने
0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैम सुनेंगे हम, दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये बहना
0: बेहतरीन गाना चुना है आपने, अब सुनते हैं
1: है
0: आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: ठीक है।
0: फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा गांव से मोतीराम पिंगले बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मोतीराम जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए जरा, और अपने बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: एक कस्बा है मैडम, उतना कोई खास नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरस्वती माता का एक टेम्पल है। यहाँ
0: हाँ
1: पर काफी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मैडम दर्शन करने के लिए।
0: लोग कैसे हैं वहां के?
1: लोग अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सेफ एरिया है मैडम हमारा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तो
1: हाँ हाँ
0: खास हो
1: मैडम,
0: गया ना
1: हाँ हाँ
0: आपका शहर। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहां पर लोग कोशिश करते हैं, मतलब लड़कियां पढ़ने
1: कोशिश
0: लिखने
1: में
0: जाती।
1: मैडम बहुत आगे है मैडम।
0: क्या बात है ये।
1: यहाँ पर एसएससी या इंटरमीडिएट जब एग्जाम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़कियां पास होती है मैडम। संगम
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का मैडम, मुकेश का गाना, राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया, ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही तेरी मंजिल है मजबूत।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन
1: मैम
0: किया।
1: मैम मैम एक एक एक रिक्वेस्ट है मैडम, क्या मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ मैम?
0: जरूर जरूर सुनाइए।
1: ओ

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनमर्ग से, मैं आपका नेमी श्रोता लतीफ अहमद रैना।
0: सोनमर्ग से बोल रहे हैं? सोनमर्ग तो भाई पर्यटकों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती है।
1: हाँ हाँ यहाँ तो पर्यटक हर लगभग 1500 से ज्यादा ज्यादा एक दिन में आते हैं।
0: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम।
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी है ना, बड़गामा के साइड में दूध
0: जी,
1: पथरी।
0: तो इस समय वहाँ पर मौसम कैसा है? ठंडा है या नॉर्मल है?
1: मैं नहीं उतना गर्मी, नहीं उतना ठंडी,
0: जी,
1: नॉर्मल।
0: तो आपका क्या काम
1: हाँ
0: है?
1: जी, बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ
0: वहाँ पर खेत
1: जी।
0: के लिए जब खेत में काम करते हो तो किस तरह की फसल उपजती है, मतलब वहाँ की पैदावार कैसी है?
1: पैदावार तो बहुत अच्छी, यहाँ इस साल तो यहाँ बारिश की वजह से बहुत कम फसल उगाया है।
0: कौन सी फसल
1: हाँ,
0: उपजती है ज्यादातर?
1: यहाँ पे ज्यादा और धान और मक्का एक ही फसल बनते हैं ना साल में यहाँ पे।
0: अच्छा, बर्फ गिरती है तो
1: यहाँ
0: आप
1: तीन
0: लोगों
1: फुट
0: को बड़ी परेशानी होती होगी, है ना?
1: हाँ बहुत परेशानी है, 3 फुट कभी 4 फुट ऐसा ऐसा बारिश आता है, बर्फ आता है यहाँ पे।
0: जम जाता है बर्फ, और जो बाहर से घूमने जाते हैं उन्हें बर्फ बहुत ही रोमांचित करती है और बर्फ देखने के लिए लोग
1: हाँ,
0: जाते हैं।
1: उनको वो सोनामर्ग में तो लगभग 7-8 महीने तो बर्फ ही रहता है।
0: जी, तो
1: हाँ,
0: बताइए, तो कश्मीर की वादियों में कौन सा गाना आपके लिए भेजा जाए, आपकी पसंद का?
1: फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, इसको दूसरे रिकॉर्ड कोई भी सुनाइए। हाँ
0: तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया इतनी दूर से और कश्मीर के बारे में इतनी सारी जानकारी भी दी, और आपको अब सुनवा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के फोन कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इसमें सहभाग का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल करते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2876-0288, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर एक और है, इसे भी आप नोट कर ले 4002466 2, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें 2867-0288। इसके अलावा एक नंबर और 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग सौरभ घारू का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश, विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: Caramba.
1: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम डूब जाएं श्री कृष्ण की भक्ति, उनके प्रेम और उनकी मधुर लीलाओं के रंग में। आज इस कार्यक्रम में हमने योगेश्वर, मुरलीधर, गिरिधर, नटवर नागर, भगवान श्री कृष्ण के भजन आपके लिए चुने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म अमर प्रेम का ये गीत सुना। गीत आनंद बख्शी का था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

दोस्तों, नटखट कान्हा की मुस्कान, माखन की मिठास और बांसुरी की मधुरता, आज का दिन है प्रेम, भक्ति और उल्लास का। आइए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम रंग जाएं कान्हा के उस प्यारे रंग में। ये आवाज है शोभा गुरटू की, आप सुन रहे हैं मीराबाई का ये भक्ति पथ।

शोभा गुल्टू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे संत मीराबाई का ये भक्ति पद। आइए भगवान श्री कृष्ण के उस पावन रूप की बात करें जिसकी हर लीला, हर मुस्कान और हर बात मधुर है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित मधुराष्टकम दोस्तों वैसे तो सदियों से हमारे दिलों में बसा है, लेकिन जब इस दिव्य स्तोत्र को हम सुनते हैं तो भक्ति का जो रस है वो दोगुना हो जाता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ये सुनते ही मन पूरी तरह से कृष्णमयी हो जाता है ना? तो आइए श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने का एक जरिया और ढूंढ लें, इस मधुरता का हम आनंद लेते हैं। स्वर शंकर महादेवन का है, संगीत केदार पंडित का।

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। अभी आपने श्री कृष्ण मधुराष्टकम ये सुना, श्री वल्लभाचार्य द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण के अंगों और स्वरूप की मधुरता का वर्णन करने वाला एक प्रसिद्ध संस्कृत स्तोत्र। इसे गाया था शंकर महादेवन और साथियों ने। आइए सुनते हैं अगला भक्ति पद। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कृष्ण तो सभी के हैं, वृंदावन की राधा के भी, मीरा की भक्ति के भी और हमारे आपके मन के भी, है ना। राधा ने कृष्ण को प्रेम में पाया, मीरा ने भक्ति में, और हम कृष्ण को अपने विश्वास और अपने भावों में पाते हैं। और शायद कहते हैं यही कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे एक होते हुए भी हर प्रेम करने वाले के अपने हो जाते हैं। जी हाँ, अपने। जब मीराबाई कहती है ना कि सांवरा मारी प्रीत निभाजियो जी, तो इन शब्दों में एक भक्त का समर्पण भी दिखाई देता है और एक प्रेमिका का मधुर आग्रह भी। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में संत मीराबाई का ये भक्ति पद। संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आज का ये कार्यक्रम हमने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया है। आइए एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी रंग वाला मीराबाई का भक्ति पद आपको सुनवाते हैं, श्याम माने चाकर राखू जी। इसमें मीरा कृष्ण से कहती है कि मुझे अपना सेवक बना लो, मैं वृंदावन में रहकर तुम्हारे दर्शन कर सकूं और तुम्हारी लीलाएं गा सकूं। दोस्तों ये पद राजस्थानी रंग वाले अत्यंत मधुर पदों में गिना जाता है। आइए सुनते हैं वाणी जयराम की आवाज में ये भक्ति पद।

ग्यावस्थी मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम में अगला भक्ति पद हमने एमएस सुबुलक्ष्मी की आवाज में आपके लिए चुना है। ये भक्ति पद संत मीराबाई का है।

मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, संत मीराबाई का लिखा भक्ति पद अभी आपने सुना एमएस सुबुलक्ष्मी की आवाज में। दोस्तों, भगवान कृष्ण को हम सभी ने अपनी अपनी नजरों से देखा, चाहे राधा हो, मीराबाई हो, रुक्मणी हो, गोपियां हो, ग्वाले हो, सभी ने कृष्ण को देखा, चाहा, अपनी अपनी नजर से समझा। लेकिन संत सूरदास ने भगवान कृष्ण को कैसे चाहा, कैसे समझा? सूरदास की दृष्टि में कृष्ण का नाम ही वो मधुर संगीत है जिसमें डूबकर भक्त संसार के सारे दुख भूल जाता है। संत सूरदास ने अपने पदों में बाल कृष्ण की नटखट छवियों से लेकर उनके दिव्य और करुणामय स्वरूप तक कृष्ण को प्रेम के हर रंग में देखा है। और संत सूरदास के लिए कृष्ण केवल आराध्य नहीं बल्कि उनके जीवन की आंखें और उनके हृदय की ज्योति थे। तो आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में संत सूरदास का ये भक्त

श्रोताओं, कृष्ण की बांसुरी, हाँ कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, वो एक प्रेम की पुकार थी जो हर हृदय तक पहुंचती थी। और कहते भी है ना कि जब श्याम अधरों पर बांसुरी रखते हैं तो वृंदावन की गलियां भी जो है महक उठती हैं, और ऐसे में सभी का जो मन है वो ठहर सा जाता है ना। शायद इसीलिए आज भी जब कोई स्वर गूंजता है, श्याम तेरी बांसुरी पुकारे राधा नाम, तो लगता है कि प्रेम की वही अनंत पुकार आज भी हमारे मन के वृंदावन में गूंज रही है। तो इसी मधुर बांसुरी की तान के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। इस गीत के साथ, फिल्म का नाम है गीत गाता चल, आवाजें आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

0: रंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग strategic data for our country।
1: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं

0: शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम अभिनेता ऋषि कपूर को और गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी की बोल, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें। फिल्म का नाम है बॉबी।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था कभी कभी। साहिर लुधियानवी के बोल थे, खय्याम साहब का संगीत था। और अब लेते हैं इस कार्यक्रम में एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। गाने वाले कलाकार किशोर कुमार और साथी, फिल्म का नाम कर्ज़।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत रचना संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम का अगला गीत शिव हरि का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और विनोद राठौड़ की आवाजें। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: तो गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंखें। गीत को प्रसून जोशी ने लिखा है और धुन आदेश श्रीवास्तव।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में हम आपको समीर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है राजनीति। आवाजें आदेश श्रीवास्तव, शशि और

ये आवाजें थीं आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की। फिल्म का नाम था राजनीति। गीतकार थे समीर और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेप

0: वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार

0: तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले कोकोन उत्पादन के लिए किया गया जागरूक। भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सरायकेला खरसावां पहुंची भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग। और देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही जन्माष्टमी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है, और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इसरो और भारतीय उद्योग के बीच बढ़ती साझेदारी से देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ताकत और विस्तार मिल रहा है। झारखंड सरकार ने बंद होने वाली कोयला खदानों के वैज्ञानिक पुनर्वास और सतत उपयोग के लिए गिरिडीह ओपन कास्ट प्रोजेक्ट और रामगढ़ जिले की कर्मा ओसीपी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। सीएमएल, सीएमपीडीआई, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन और जीआईजेड के प्रतिनिधियों की बैठक में इन खदानों के लिए फाइनल माइन क्लोजर एंड रिपर्पजिंग प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया। कर्मा ओसीपी के आसपास के प्रभावित गांवों में आजीविका के अवसर विकसित करने के साथ बंद खदानों की भूमि और जल संसाधनों का उपयोग पर्यटन, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और कौशल विकास के लिए किया जाएगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड के केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची द्वारा संचालित मेरा रेशम मेरा अभियान 2.0 अभियान का समापन पायलट प्रोजेक्ट केंद्र पीपीसी बंद गांव में हुआ। इस अभियान का उद्देश्य आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को प्रयोगशाला से सीधे किसानों तक पहुंचाना और उच्च गुणवत्ता वाले कोकोन उत्पादन को बढ़ावा देना है। समापन समारोह में निदेशक डॉक्टर प्रतीक कुमार ने तसर किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और कीट पालन से जुड़ी चुनौतियों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। झारखंड में भर्ती व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर शुरू हुई भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आज सरायकेला खरसावां पहुंची। देवेंद्रनाथ महतो ने सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पेपर लीक तथा भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग की।
3: पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के बाद अभी सरायकेला खरसावां की धरती आए हैं। पूरे झारखंड प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही समस्या है हर एक छात्रों का कि उसका नौकरी बेचा जा रहा है। नौकरी कोई खरीद बिक्री वाली चीज नहीं है आलू प्याज जैसा। नौकरी बिकना मतलब सिर्फ नौकरी बिकना नहीं होता है, सपना बेचना होता है, विश्वास बेचना होता है।
0: झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने धनबाद में जमीन से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए BCCL को ISM धनबाद के समन्वय से जमीन की सैटेलाइट मापी कराने का निर्देश दिया। समिति ने सीजुआ मेला टांड में टाटा द्वारा इस्तेमाल की जा रही सरकारी जमीन और अधिग्रहित रैयती जमीन के राजस्व भुगतान की रिपोर्ट भी मांगी। दामोदर नदी में अतिक्रमण हटाने के लिए BCCL ने 6 महीने में कार्रवाई पूरी करने पर सहमति जताई, जबकि लंबित भूमि मामलों और रैयतों के भुगतान के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। सत्ता पक्ष ने मुख्य सचिव से मिलकर आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वालों को चिन्हित

0: कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि छात्रों को अराजक तत्व बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि छात्रों की आड़ में अराजकता फैलाने का आरोप लगाना उचित नहीं है।
1: बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो इस देश की, इस राज्य का भविष्य है, आने वाले समय की ताकत है, उनको इस प्रकार की भाषा से बोल करके उनको कलंकित करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने जो अपना व्यवहार दिखाया, हम लोगों ने देखा था, कभी नहीं देखा था। हमसे बड़े लोग भी होंगे, उन्होंने देखे होंगे।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य देशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। राजधानी रांची में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर विभिन्न मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुड़ैया स्थित मदन मोहन मंदिर में विशेष सजावट और पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। मंदिर के पुजारी के अनुसार जन्माष्टमी के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
2: आज कृष्ण महामहोत्सव है, प्रातः काल पूजा हुआ, भगवान जी का श्रृंगार पूजा हुआ, संध्या 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। राजपाल जी आएंगे, नेता लोग आएंगे, एसपी डीएसपी सब लोग आएंगे। उसके बाद संध्या 7:30 बजे महाआरती होगी। महाआरती होने के बाद रात्रि में 12 बजे भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
0: कन्या भ्रूण हत्या और अवैध लिंग जांच पर रोक के लिए रांची में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों ने कर्नाटक के सफल मॉडल को झारखंड में लागू करने पर चर्चा की। अवैध लिंग जांच की सटीक सूचना देने वाले मुखबिरों को 1,00,000 रुपए तक तथा मामलों में प्रभावी पैरवी में सहयोग करने वालों को 20,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों की कड़ी निगरानी और PCPNDT एक्ट के 100% अनुपालन को अनिवार्य बताते हुए रांची, धनबाद समेत सभी जिलों में नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 76,704 पर और निफ्टी 69 अंक की तेजी के साथ 23,943 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,48,000 रुपए प्रति किलो है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में CCL के विभिन्न क्षेत्रों और इकाइयों के 189 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनके बीच पुरुष, महिला और वेटरन वर्ग में मुकाबले होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 5 का किया सफल प्रक्षेपण। झारखंड में बंद होने वाली कोयला खदानों के पुनर्वास की पहल गिरिडीह OCP और रामगढ़ की कर्मा OCP पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित। रांची में मेरा रेशम मेरा अभियान 2.0 अभियान का समापन। तेसर किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले कोकोन उत्पादन के लिए किया गया जागरूक। भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सरायकेला खरसावां पहुंची भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग। और देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही जन्माष्टमी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: एक और उज्जवल, पवित्र और आध्यात्मिक रूप हमें मिलता है। यहाँ प्रकाश केवल प्रकाश नहीं है, वो आशा है, चेतना है, मंगल है और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। हाँ, ज्योति कलश है वो। समझ आया कुछ? कवि जब शब्दों से प्रकाश को एक कलश में भर देता है ना, उसे छलकने देता है, तब भाषा साधारण भाषा नहीं रह पाती, वो कविता बन जाती है। और फिर प्रकृति का वही रूप तो एक चित्रकार की कूची से बना हुआ लगता है। क्या चंचल, शीतल, निर्मल और कोमल, समझ गए आप? ये चार शब्द और चारों शब्दों में है पूरा संसार, चंचलता, शीतलता, निर्मलता और कोमलता। और हिंदी कविता की यही विशेषता है कि कभी कभी कुछ विशेषण ही पूरे दृश्य को जीवित कर देते हैं। और

जब ये दृश्य इतना सुंदर हो जाए कि मन स्वयं से प्रश्न करे कि कौन चित्रकार है, तब हम समझते हैं कि प्रकृति को देखने के लिए केवल आंखें नहीं कवि मन चाहिए। और कविता केवल फूल और प्रेम की बात नहीं करती, कविता जीवन को भी देखती है, उसके रास्तों को भी समझती है और मनुष्य को चलते रहने की प्रेरणा भी देती है। क्योंकि जीवन में कभी धूप है, कभी छांव है, कभी साथ है, कभी अकेलापन है। तो कवि कहता है, रुकना नहीं है, चलते रहो, गाते रहो, जीवन के सफर को गीत बनाते रहो। गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल भाई, ये गाते हुए गुनगुनाइए। जैसे कि आज सुरीले सफर में हम गुनगुनाते हुए चल रहे हैं और ये केवल गीत नहीं है बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। और हर यात्रा चूंकि आसान नहीं होती, लेकिन अगर मन में गीत है, साथ में मुस्कान है, तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और हिंदी कविता की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो गूढ़ दर्शन को भी सरल शब्दों में कह देती है। तो भारतीय काव्य परंपरा में प्रकृति केवल दृश्य नहीं परिवार है, धरती केवल मिट्टी नहीं माँ है, आकाश केवल विस्तार नहीं पिता है। जब यही सब भाव उतरते हैं तो क्या होता है, धरती कहीं पुकार के एक खूबसूरत कल्पना जन्म लेती है और यही कविता बन जाती है और कविता बनकर गीतों के रूप में ढलती भी है। जी, तो आज की इबारत तो हमने आपके सामने रख दी है और वो श्रोता जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाते हैं वो इस इबारत को समझ चुके होंगे कि आज की इबारत क्या कहती है। जी हाँ, आज हमने कुछ ऐसे गीतों को चुना है जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है। गीत तो हम बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन जहाँ हिंदी कविता आ जाती है, हिंदी कविता लिखी गई है, कुछ खास गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी कविताएँ लिखी हैं, पंडित भरत व्यास, नीरज, रविंद्र जैन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्मी गीतों में हिंदी कविता को स्थान दिया है। गीतकार योगेश ने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं। तो आज हमारे दो सवाल आपके लिए ये हैं कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं। और हमारा दूसरा सवाल कि हिंदी के किस कवि की पंक्तियां, गीतकार की रचनाएं आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है। केवल दो पंक्तियां आपको बतानी है। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता जो रश्मि रथी है ना, उसमें से ली गई जो पंक्तियां हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी है दुर्योधन को, ध्यान है ना, अंतिम संदेश के रूप में, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है। या कि ये भी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आपको भी ऐसी कुछ पंक्तियां याद होंगी, चाहे वो फिल्मी गानों के रूप में या फिर साहित्य, जो हिंदी साहित्य आपने पढ़ा होगा अगर, या पढ़ने के शौकीन जो हमारे श्रोता हैं उन्हें कुछ पंक्तियां याद होंगी, उनका जिक्र कम से कम शब्दों में आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म भाभी की चूड़ियां का गीत। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीत दिया है सुधीर फड़के ने।

अभी आप सुन रहे थे ये सुंदर सी एक कविता ज्योति कलश छलके, और आपने देखा कि प्रभात और प्रकृति के सौंदर्य को शुद्ध हिंदी कविता के रूप में पंडित नरेंद्र शर्मा ने कितनी खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। उन्होंने उषा, आकाश, बादल, धरती, फूल और प्रकाश को मतलब ऐसे काव्यात्मक बिंबों में पिरोया है कि ये गीत सुनने से अधिक तो लगता है जैसे एक सुंदर सी कविता हमने लिख डाली है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने आपको सुनवाया, और हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार एक साधना है जहां प्रतीक्षा का हर पल विरह के दर्द से अलग होता है। जैसे कोई कवि शब्दों को सहेज कर कविता बुनता है, वैसे ही प्रेमी प्रतीक्षा के हर पल को यादों को सजाता है। जब हवाएं चलती है, नदियां बहती है, फूल खिलते हैं, तो प्रकृति का प्रेम ही है जो व्यक्त हो रहा होता है। बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी में मिलती है तो उठने वाली सौंधी खुशबू प्रकृति के प्रेम का ही संगीत है। प्यार एक ठहराव है, एक सुकून है जो इंसान को खुद से और पूरी से जोड़ देता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश में तो अलग अलग विषयों की रिमझिम रिमझिम बूंदों की बारिश सी कर दी है आपने। अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े सारगर्भित और बेहतरीन गीतों का गुलदस्ता सब बना दिया है। वाकई आपने हमारी इबारत को सही ढंग से समझा है, वरना तो हमारे श्रोता शिकायत ही कर रही है या कुछ हम क्या कहें। आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े जो सारगर्भित और बेहतरीन गीत हैं उनको हमने चुना, और उसी अर्थ में हमने आज की इबारत आपके लिए पेश की थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप बहुत समय बाद आ रही हैं, आज तो बहुत ही लंबा पोस्ट आया है, बहुत समय लगा होगा इसे लिखने में, छुट्टी से जाकर पहले इसे ही पोस्ट करूंगी और इस पर प्रोग्राम करूंगी, ऐसा आपने सोचा होगा, है ना मंदाकिनी जी? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, और हमें पता है आज हमें ये कार्यक्रम पेश करना है, तो हमने कल सोचा आपके लिए इस कार्यक्रम को और आज लेकर उपस्थित हो गए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं कि प्रेम, प्रतीक्षा, विरह, वेदना, खुशी, गम को कविता के रूप में कवि अपनी शैली में पिरोते हैं, प्रकृति से जोड़कर सुंदर शब्दों में विस्तार देता है, जिससे इन भावों को समझकर हम धारा में बहने लगते हैं और हमें संगीत जैसा प्रतीत होता है। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल जैसे जो गीत हैं वो इसी धारणा से लिखे गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का गद्यांश तो बहुत बड़ा है, प्रेम, समर्पण, कविता, प्रतीक्षा, अन्न, सपना आदि शब्दों को पिरोकर सजाया गया है, और आज का सुरीला सफर, मिलते हैं आपसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता का सबसे सुंदर सत्य यही है कि वो प्रेम से शुरू होकर अंततः आत्मा तक पहुंचती है, और श्री कृष्ण इस यात्रा के सबसे सुंदर प्रतीक हैं। कृष्ण

आपको आज भी याद है जैसे हमें रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की जो पंक्तियां हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से चेतावनी दी थी दुर्योधन को अंतिम संदेश के रूप में कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद आती है। और एक और जैसे जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये पंक्तियां आज भी हमारे दिलो दिमाग पर अंकित हैं और ताउम्र रहेंगी। तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें आप नहीं भूल पाए हैं? सुरीला सफर के इस सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चल का ये सुंदर सा काव्यात्मक गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं फिल्मी गीतों के रूप में हमें दी हैं।

जी हाँ, तो रविंद्र जैन का ये जो गीत है प्रकृति और जीवन के प्रति कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है, जिसमें धरती को माँ, आकाश को पिता और पूरी सृष्टि को परिवार मानने का भाव है। यानी कितनी सुंदर कविता एक मनुष्य और प्रकृति के आत्मीय रिश्ते को लेकर रविंद्र जैन साहब ने लिखी। तभी तो इन गीतों को आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, गुनगुनाना पसंद करते हैं, और यूं कहें कि ये गीत अमर से हो गए हैं, है ना? क्योंकि हिंदी कविता जो एक कवितामय गीत लिखे गए, जहां हमें कविता की सुगंध, कविता का रसास्वादन भी होता है। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने बहुत पावन प्रेम इबारत पेश की है। कृष्ण तो प्रेम के साकार रूप हैं, वे पराक्रम के प्रवर्तक भी हैं। उनकी गीता हमारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान बढ़ाती है। जन्माष्टमी पर आपने सभी को बधाई दी है। देखिए, हमने तो 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम में आपके लिए खास

कार्यक्रम भी पेश किया था जो कि श्री कृष्ण को समर्पित किया। हमने उन्हीं के भजन भक्ति पद आपके लिए पेश किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने उस कार्यक्रम को सुना होगा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हमें स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, ये पंक्तियां जो कवि गोपालदास नीरज की हैं वो सबसे ज्यादा पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय इतनी सुंदर है कि उसको आज तक भूल नहीं पाते हैं मंदाकिनी जी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, ये पंक्तियां जो है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, है ना, वो कविता इन्हें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे स्कूल में पढ़ी जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पंक्तियां याद आ रही हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये इन्हें पंक्तियां बेहद पसंद आती है और इन्हें आज भी याद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि तुम गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूँ, कोरा कागज था ये मन मेरा, ये पंक्तियां इन्हें बेहद अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता को चंदन सा वदन, ये पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं फिल्मी गीत के रूप में। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, ये पंक्तियां जो हैं गीत की इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब, यानी प्रश्न जो पहला था उसका जवाब दे रही हैं कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ननी चिट्ठी जब दाना लेके चलती है, ये संदेश इन्हें बेहद पसंद आता है। और हमारे दूसरे सवाल का जवाब देती हैं कि कवि प्रदीप जी, सचिन दा, नीरज जी और भी बहुत से गीतकार हैं जिनके प्रेरणादायक गीत इनको पसंद आते हैं। बहुत सुंदर पसंद है हमारे श्रोताओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म नवरंग का ये सुंदर सा गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोंसले और मन्ना डे का गाया हुआ, पंडित भरत व्यास की बोल हैं। जी हाँ, पंडित भरत व्यास जिन्होंने न जाने कितने गीत हिंदी कविता के रूप में लिखे हैं और इसे संगीत में ढाला है सी रामचंद्र ने।

ये कौन घुंघरू झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का, ये कौन फूल महका, ये कौन पंछी चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी, दिल जो मेरा बहका।

में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू भी कर दिया था और अभी भी लगातार दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी कविता में रुचि रखते हैं, यानी आपके भीतर भी कविता बहती है किसी न किसी रूप में। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, ये तो हमने पढ़ दिया था, आप लिखते हैं कि आज की इबारत अलग अलग मोड़ के गीतों से आपने बुनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गीतकार शैलेंद्र और पंडित प्रदीप जी के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, और पंडित प्रदीप जी की देख तेरे संसार की हालत।

क्या हो गई भगवान, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म कादम्बिनी का वो गाना जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा था आशा भोसले की आवाज में, अंबर की एक पाक सुराही, ये बहुत पसंद है। बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कविता का अंश जो है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं श्रोता एक लिखती है कि मेह बरसने वाला है मेरी खिड़की में आजा तितली, महादेवी वर्मा जी की कविता है और इन कविताओं से ये प्रभावित हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ज्योति कलश छलके का मतलब है ज्योति का प्रकाश कर और बिखरे, अंधेरा गायब हो जाए अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ये पंक्तियां इन्हें प्रभावित करती हैं। वहीं एक श्रोता को अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, गोपाल दास नीरज की पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता को महादेवी जी की कविता मैं चंदा तू चांदनी ये पंक्ति बहुत पसंद है। वहीं पंडित भर व्यास जी के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी कविता के माध्यम से फिल्मी गानों को उन्होंने स्वर्णिम युग दिया है। रामराजे फिल्म का लता जी का गाया एक गाना पंडित भरत व्यास जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर है, सोजा सोजा यानी नींद के समय का ये अद्भुत गीत है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह प्रकृति सौंदर्य का जीवंत सुंदर चित्रण इस गाने में अनुपम है, ज्योति कलश छलके अंतिम अंतरा में ज्योति यशोदा घर की गैया सुनते ही बनता है, भाव विभोर कर देता है ये गाना। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे बस इतना ही। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला, लाल लई देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, ये पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाभी की चूड़ियां का ज्योति कलश छलके ये कविता रूपी जो गीत है वो पसंद करते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि प्रिय विविध भारती परिवार आपका ये कार्यक्रम सुरीला सफर बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे कवि, ये पंक्तियां इन्हें पसंद आती हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज का आपका विषय बहुत ही सुंदर है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विशुद्ध हिंदी शब्दावली गीत से कार्यक्रम का श्री गणेश अति उत्तम शुभारंभ, श्रोतागण हर्षित फुल हो मुग्ध हो गए हैं। अरे वाह। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आपको और समस्त श्रोता मित्रों को हम नमस्कार करते हैं, आज आप बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हैं। हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कविता का आनंद लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल हैं, आवाज मुकेश की, और फिल्म का नाम सत्यम शिवम।

जी बहुत ही मधुर गीत अभी हमने सुना और कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच गए हैं। हमारे श्रोता कुछ श्रोता हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या बात है आप कई दिनों के बाद सुरीला सफर पर आए हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम छुपी हो कहां, हम आपकी आवाज सुनने को तड़प रहे हैं यहां। एक श्रोता लिखते हैं बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके श्रोता समूह वाला, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। हुए ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आप कार्यक्रम में आ गए हो तो और भी अच्छे हो गए हैं हम। अरे वाह क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता की शक्ति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। नहीं नहीं ये आपकी गलतफहमी है, हमने तो आपको कुछ नहीं समझाया बल्कि एक कार्यक्रम लेकर आपके साथ सुरीले सफर पर निकल पड़े हैं बस इतना ही ताकि जीवन में थोड़ा सा हम भी कवितामय हो जाए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हमें आज बेहद पसंद आए हैं क्या बात है। हमारी इबारत को आज श्रोताओं ने निबंध कह दिया है, किसी ने कहा है कि पूरी रात जग कर लिखी है आपने, किसी ने कहा है कि आज पूरा दिन लग जाएगा इस इबारत को पढ़ने और जवाब देने में। चलिए आप जैसा समझे सर, आंखों पर आपकी हर बात आपका हर भाव, बस यही होना चाहिए कि इस तरफ से हमारी जो कोशिश है वो कम नहीं होनी चाहिए और आपकी तरफ से क्या आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए प्रदीप की आवाज, फिल्म का नाम नास्तिक, गीतकार प्रदीप और संगीत सी रामचंद्र का।

दोस्तों, कवि प्रदीप द्वारा कविता की शैली में लिखा गया यह गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मानवता को आईना दिखाने वाली एक मार्मिक कविता के रूप में लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कवि। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग strategic data for our country.
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करूबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर

0: प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार यह अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण

0: करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदाम्बी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। गीत रचना शकील बदायूं ने की और संगीत नौशाद साहेब का।

0: ना पाए
1: हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे बाकरे।
2: शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया फिल्म मदर इंडिया का गीत अभी आपने सुना। ये स्वर है आशा भोसले और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम है नया दौर, शब्द साहिर लुधियानवी के और तर्ज ओपी नैयर की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये है अगली पेशकश। एस डी बर्मन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की बोल, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम है प्यासा।

कार्यक्रम में आप सुनिए हजरत जयपुरी का लिखा गीत और वसंत देसाई का संगीत, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है जनक जनक पायल बाजी।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है 2 आंखें 12 हाथ। शब्दकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार वसंत देसाई हैं।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है अगला गीत। फिल्म का नाम है बसंत बहार। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, बोल शैलेंद्र के हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने राज्य सरकार को युवाओं और उद्योगों के अनुकूल नीतियां बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। श्री अठावले ने कहा कि मोदी सरकार ने सवर्णों को भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर हर वर्ग को न्याय दिया है।
1: संविधान में एससी एसटी के लिए आरक्षण ही जाति के आधार पर मिला था। दलित लोग गांव के बाहर रहे हैं, आदिवासी लोग पहाड़ों में रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रयत्न से और सभी संविधान सभा ने बाद में मान्यता दी और एससी एसटी को आरक्षण मिला। उसके बाद भी ये मांग होती रही थी कि भाई हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी एनडीए की सरकार ने ये निर्णय लिया कि खाली ओबीसी का सेंसस नहीं, हर जाति का सेंसस होगा।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाने और महिला सदस्य को शामिल करने का स्वागत किया है। उन्होंने विपक्ष द्वारा इस नियुक्ति पर सवाल उठाने को दिशाहीन बताया। कोडरमा में उन्होंने जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच की मांग की और छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने पर जोर दिया।

0: कांग्रेस दोहरी नीति अपनाती है। हम सब देखे जब दिल्ली का था तो दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने वो आ गए, धरना पे वो बैठे। लेकिन वही जब झारखंड में बच्चे अनशन पर थे वहां किसी ने झांका नहीं, तो चूंकि वो इसलिए नहीं आए कि यहाँ उनकी सरकार यहाँ समर्थन दी हुई है। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो या अन्य जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसको रद्द करते हुए जिनकी भी इसमें संलिप्तता है वैसे लोगों पर कार्रवाई हो।
1: प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र के खनन बिल के विरोध में आंदोलन का ऐलान किया है। लोहरदगा में पार्टी के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने केंद्र पर राज्यों के खनिज अधिकार छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और मांगे न मानने पर राज्य में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसरो द्वारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भारत के पहले उन्नत इमेजिंग उपग्रह ईओएस 5 के सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। नेताओं ने इसे अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की एक और गौरवपूर्ण छलांग बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इसरो और भारतीय उद्योग का यह सहयोग आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची के मदन मोहन मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में विशेष मंगल आरती और भजन कीर्तन का दौर जारी है। रांची के कांके स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारी की गई है।
2: आज का दिन बहुत विशेष होने वाला है। इस बार हम लोगों ने 1 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया है। गोकुल वृंदावन के थीम पे अलग अलग भगवान की लीलाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है सुंदर झांकियों के माध्यम से, जैसे गोवर्धन लीला, कालिया लीला, पूतना लीला। इन सबको भक्तों को देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहाँ पे भंडारा की व्यवस्था की गई है 1 लाख लोगों के लिए और संध्या 4 बजे से लेकर 12 बजे तक भगवान का सुंदर अभिषेक होगा, कीर्तन होगा, कथा होगा।
1: उधर पाकुड़ जिले में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अत्यंत धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर, राजापाड़ा के मदन मोहन मंदिर और तांतीपाड़ा के राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, मंगल आरती और भजन कीर्तन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण को प्रेम, करुणा, सत्य और कर्मयोग का महान प्रतीक बताया। उन्होंने कामना की कि भगवान श्रीकृष्ण के आदर्श सभी को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सिमडेगा के अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 21वीं मेजर ध्यानचंद जिला हॉकी चैंपियनशिप जारी है। महिला वर्ग के लीग राउंड में सभी 32 मैच पूरे होने के बाद 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इनमें सीओई सिमडेगा और सेंट जेवियर्स बरवाडी जैसी टीमें शामिल हैं। वहीं पुरुष वर्ग में अब तक 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: सखियों सहेलियों नमस्कार, हम आ गए आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर। हेलो सहेली, मैं हूँ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: हम नीता मिश्रा बोल रहे हैं
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी हम रहते थे लखीमपुर खीरी में, लेकिन इस समय अपने भाई के यहाँ आए हैं, शाहजहानपुर पास में ही है।
0: भाई के यहाँ आए हैं, रक्षाबंधन मनाने आए हैं आप?
1: जी जी
0: जी। बताइए नीता जी, अपने बारे में बताइए।
1: हमारे 6 भाई हैं, तो भाई बात सभी भाई तो पहुँच नहीं सकते हमारे घर, इसलिए हम यहाँ पर आया था कि सारे भाइयों की राखी बन जाती है, रिचना हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हम ही आते हैं यहाँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे हैं। आपके जीवन में अभी खुशियों के दिन आ रहे हैं, जब हम भाई के घर जाके रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज आपका पहला फोन कॉल भी लग गया है, तो इसमें यानी सोने पे सुहागा हो गया है ना। अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी।
1: मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ससुर हैं हम
0: जी,
1: और मेरी ननद है, उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल हम 3 लोग रहते हैं घर पे।
0: जी, और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का गाना है, मेरे भैया मेरी चंदा मेरे अनमोल रतन।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बड़ौदा से शारदा बेन नागरेचा ने।
0: बड़ौदा से शारदा बेन बात कर रही है। बताइए
1: हाँ,
0: शारदा बेन, आप क्या करती हैं?
1: बहुत सारी एक्टिविटी करती हूँ, गाना गाती हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, रसोई का, और एक्टिविटी में फ्लावर बनाती हूँ, तेज
0: अरे वाह वाह।
1: पत्ते में से, पिस्ता में से, और जो
0: यानी
1: आचार के गुंदे आते हैं ना, गुंदा आता ना, वो भी ईसा वाला त्रोफान, लीला नारियल आता है ना, लीला नारियल ऊपर वाला ईसा,
0: जी
1: उसका फ्लावर बनाता है, उसमें कलर पुरते हैं।
0: वाह वाह वाह। यानी जो हम लोग जो इस्तेमाल करके जो बची हुई चीजें होती है जिसे हम फेंकते हैं, उन्हें आप
1: हाँ
0: फेंकती नहीं है, उन चीजों से सुंदर सुंदर आप फ्लावर पॉट बनाती हैं, फूल बनाती हैं, है ना?
1: और होलसेल मैडम राखी आते हैं, राखी के सब सामान में रख देती हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि
1: हाँ
0: जिन
1: हाँ
0: चीजों से हम कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: गाना गाना भजन कीर्तन सब आता है मैडम।
0: जी, तो कुछ गाकर सुनाइए।

0: की खोरे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी आवाज है और इतनी सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और आप जो क्रिएटिव काम करती है ना, वो भी करती रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए बताइए,
0: हाँ,
1: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हाँ,
1: बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया है।
0: और बताइए आप क्या करती हैं?
1: होम गृहिणी हूँ, घर पर ही रहती हूँ
0: जी।
1: तीन बच्चे हैं मेरे, दो बेटी है एक बेटा है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है, जरा बताइए ना।
1: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा, नाश्ते में और जूस वगैरह।
0: ये आप बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: पोषण को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
1: जी मैं मैडम, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, खास करके मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, अपने पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ जी। मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ जी।
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी,
1: जी।
0: ऐसा होता है ना कि सावन भादों का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं। त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
1: जी हम लोग के यहाँ ये घर में ही ठकुरबाड़ी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में,
0: जी।
1: तो उसमें हम लोग का 56 भोग लगता है। उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन।

0: में, तो उस दिन भी हम लोग के यहाँ बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
1: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करती हैं कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
0: जी जी हम लोग के हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है, चीनी कम गुड़, और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है
1: जी।
0: जी, जो गन्ने का रस जब निकलता है ना तो पहले मीठा बनता है,
1: ओहो
0: उसके बाद गुड़ गुड़ बनता है, तो वो जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा।
1: जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात
0: जी
1: करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: जी छोटी बहू फिल्म का गाना है, कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
1: जी सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से।
0: जी रुचि जी, नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: बताइए अपने बारे में बताइए।
1: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी।

0: की मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ
1: जी, यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान पान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
0: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खान पान में स्वाद है
1: जी। और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप कितना महत्व देती हैं?
0: मेरी समझ से पोषण, मेरे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से।
1: जी, मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए, कि जैसे जवार का आटा है, फिर बाजरा है, यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई, तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
0: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे तो हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है, और हम कर सकते हैं, शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
1: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ना लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
0: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे, और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं।
1: जी, यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं फेंकना है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने
1: जी। बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैं कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आ जा,
1: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

देखो

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुचित्रा पंडित हूँ, उज्जैन से बात कर रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश।
0: जी सुचित्रा जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं संगीत की कक्षाएं भी लेती हूँ, जॉब भी किया हुआ है। अभी मेरी उम्र 69 है और बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: मेरे यहाँ रोज दिन भर रेडियो चलता रहता है।
0: क्या बात है। और आपने जैसे
1: जी
0: बताया कि आपकी उम्र 69 साल की है, पर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल की युवती हमसे बात कर रही है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए मैडम।
0: नहीं, और आपने कहा है कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो कुछ
1: जी
0: सुनाइए
1: मैम,
0: आप।
1: 13

0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर
1: सडनली
0: बहुत
1: तो याद आ गया, वो गा दिया मैडम, कोई पहले से तैयारी नहीं थी
0: नहीं, बहुत सुंदर आपकी
1: जी
0: आवाज भी है और बहुत सुर में गाती हैं आप। और जैसे
1: जी
0: आपने कहा कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो
1: जी जी
0: किस उम्र के बच्चे आपसे शिक्षा लेते हैं, ने कुछ ग्रहण?
1: मैं प्रायः जो दूसरी पास हो ऐसे बच्चों से शुरू करती हूँ, ताकि वो थोड़ा कम, जिनको अक्षर ज्ञान हो तब से शुरू करती हूँ। अक्सर बचपन से ऐसा लगता है लोगों को कि छोटेपन से एकदम से बहुत बड़े कुछ गायक बन जाए, वो संभव नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं, पहले उनका अपने को रुचि किस चीज में है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। आजकल क्या हो गया, ये रियलिटी शोज के कारण ना हर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा एकदम स्टेज पे जाके और गाने लगे। कुछ चीजें तो जैसे बोलते हैं ना, इनहेरेंट होती हैं, आपके अंदर वो ताल और सुर होना चाहिए, तभी वो उभर के बाहर आ सकता है
0: और आप रियाज के
1: ऐसा।
0: माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को तराशते हैं।
1: जी।
0: ये आपने बहुत सही बात कही है, ये एक संदेश है। और संगीत को
1: हाँ
0: लेकर आप छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: हाँ यही देना चाहूंगी मैं कि पहले ना उनकी रुचि किस चीज में है वो देखिए पहले आप। जबरदस्ती अगर किसी को ड्राइंग में रुचि है तो उसे ड्राइंग करवाइए, उसे अगर किसी संगीत में रुचि है तो कराइए, या उसे स्पोर्ट्स में कोई रुचि है तो वो स्पोर्ट्स उसे करवाना चाहिए। मतलब आपकी इच्छा है कि वो अच्छा गायक बन जाए तो वो संभव नहीं है, उसमें वो चीज अंदर होनी भी चाहिए ना, ईश्वर प्रदत्त भी कुछ चीजें होती हैं।
0: पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं बच्चों पर लादना नहीं चाहिए।
1: हाँ थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर सकता है। तो दौड़ में हम ना दौड़े, वास्तव में अगर कलाकार बनाना है तो उसके साथ धैर्य, साधना, ईश्वर कृपा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और
1: जी
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी का, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, अभी सावन भी है
0: जी,
1: और बहुत ही प्यारा, आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है वो गीत, वो बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन लग गया है। और चलिए बताइए, अपनी रुचियां क्या हैं आपकी, कौन से शौक हैं आपके? जी
1: का बहुत अच्छा लगता है गाने
0: जी
1: सुनने का,
0: जी
1: और सितारे के सितारे, आज के मेहमान, ये सब इंटरव्यू वाले प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: एक रिश्ता फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, तुझे प्यार से अपना साला, एक दिल ही तो है। और दीदी मुझे पूजा दीदी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, और
0: जी
1: सलमा दीदी की आवाज भी।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम।
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: साइबर रानी ने फोन लगाया मैम।
0: जी साइबा रानी, कहाँ से फोन लगाया है आपने?
1: सहारनपुर से फोन लगाया
0: जी साइबा रानी जी, अपने बारे में बताइए।
1: जी मैम। मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ,
0: क्या पढ़ रही हैं आप?
1: बीए कर रही हूँ।
0: तो आपके कुछ भविष्य के कुछ प्लान्स हैं कि बीए के बाद में क्या करना चाहती हैं?
1: अपने खुद के लिए टीचर बनना सोचती हूँ
0: टीचर बनना चाहती हैं?
1: जी मैम।
0: जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हर किसी का सपना होता है और आपका सपना है टीचर बनना। तो आप यानी टीचर क्यों बनना चाहती है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा?
1: जी मैम, मेरे को अच्छा लगता है। जी
0: जी हाँ, देखिए आप टीचर बनना चाहती हैं तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कॉल के माध्यम से?
1: बच्चों का मैं कहना चाहूंगी, जिसके भी बच्चे हैं अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाइए, आगे आने वाले भविष्य में उनकी जिंदगी अच्छी बने।
0: जी, तो चलिए बताइए
1: जी
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: सिस्टम फिल्म मूवी का पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: उज्जैन से अनिता जोशी ने।
0: अनिता जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया, महाकाल का बाबा कृपा है।
0: जी बताइए, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी, और आज जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आप जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाती हैं?
1: हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, झूला झुलाते हैं, उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं
0: जी, अच्छा
1: सब
0: अपने
1: लोग
0: शहर
1: का।
0: के बारे में बताइए।
1: जी, हमारे शहर में कृष्ण भगवान, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी यहाँ पे। सांदीपनि आश्रम है उनका, महाकाल
0: जी, उज्जैन।
1: का मंदिर भी है, 12 ज्योतिर्लिंग माता है वो।
0: बताइए,
1: संजोग
0: कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का, यशोदा का नंदलाला।
0: जी, संजोग फिल्म का गीत आपको सुनवाते
1: जी
0: हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुवाना बानो बात कर रही हूँ, गुजरात अहमदाबाद से। बेटा
0: जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं घर भी देना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला है तो सिलाई विलाई कर लेती हूँ, कपड़े में सिलती हूँ। मैडम
0: जी, यानी सिलाई करने का आपको शौक है।
1: मुझे आपके कार्यक्रम भी सुनना बहुत पसंद है।
0: कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: मैडम मुझे हिलो फरमाइश आता है, वो भी बहुत पसंद है, और आज के कंचा और बम्बे टॉकीज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैडम हमको दीवाना कर गए का डायरेक्टर।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी

0: हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 28670288 यानी 28670288। और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

रामदास अठावले ने आज रांची में वर्ल्ड बुद्धा फाउंडेशन की प्रस्तावित बौद्ध महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने इसे विश्व का अनोखा संस्थान बताया, जहां 3 से 8 वर्ष की बच्चियों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाने और महिला सदस्य को शामिल करने का स्वागत किया है। उन्होंने विपक्ष द्वारा इस नियुक्ति पर सवाल उठाने को दिशाहीन बताया। कोडरमा में उन्होंने जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच की मांग की और छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने पर जोर दिया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कम राजस्व संग्रह पर अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि निर्धारित 41% लक्ष्य के मुकाबले राज्य केवल 34% राजस्व ही जुटा पाया है। उन्होंने कर चोरी रोकने और अगली बैठक तक प्रदर्शन सुधारने की सख्त हिदायत दी। सिमडेगा जिले के कुरडेग थाना क्षेत्र अंतर्गत खिंडा खपरा टोली के पास आज सुबह एक अनियंत्रित चेचिस ट्रक पेड़ और बिजली पोल को तोड़ते हुए एक कच्चे मकान में जा घुसा। हादसे में मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। राज्य में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी रांची के मदन मोहन, राधाकृष्ण और इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बधाई देते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रेम, करुणा और कर्म योग का महान प्रतीक बताया। और मौसम विभाग के अनुसार आज से 7 सितंबर तक राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और वज्रपात की संभावना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: साथियों, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से 4:02 हुए हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम।
2: यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता, फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

तो जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवल पढ़ती रहती और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ, कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बम्बई से।

अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने, किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहां सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था, क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड़ प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुखमुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही, माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पांव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और 2 घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया, शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था, वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी, घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते, वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा। ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया, और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी न कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको या भैया से लड़ाई हो गई? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती, और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते, पर हर जगह कोई न कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती, स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

0: बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश-खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली, अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूं।
1: मेरे

उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें, और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा, और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई, मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सिंहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी जब नई नई इस घर में आई थी, सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है पर हवा दिखाई नहीं देती, हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं, क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई। आंखें

वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी। कह देगी, रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है। चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है। वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक, आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं, तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया, और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया। गुनगुना उठी।

आखिर कब तक, रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: मेरा सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज रांची में वर्ल्ड बुद्धा फाउंडेशन के अनूठे बौद्ध महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए प्रयासरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उद्योगों की स्थापना के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी। प्रदेश भाजपा ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद अब सभी 24 जिलों में 4 दिनों तक उपायुक्त और एसपी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। लोहरदगा में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत महिलाओं के स्वावलंबन को देखने अमेरिका का लाइवलीहुड इंपैक्ट फंड प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। चिरी गांव में सामंथा कार्टर और क्रिस्टीना ने लाभुकों से संवाद किया। महिलाओं ने बताया कि ब्याज मुक्त ऋण से उन्होंने शराब का धंधा छोड़ किराना और नाश्ते की दुकान जैसी सम्मानजनक आजीविका अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रांची पुलिस ने आज बरियातू स्थित जैप वन ग्राउंड में पुलिस पदाधिकारियों और टाइगर मोबाइल के जवानों के लिए छोटे हथियारों का फायरिंग अभ्यास कराया। कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित इस नियमित प्रशिक्षण में आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई और सटीक निशानेबाजी पर विशेष जोर दिया गया। और राज्य में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अलौकिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची के मदन मोहन मंदिर और इस्कॉन देवालय सहित राज्य भर के मंदिरों में विशेष विद्युत सज्जा की गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आज तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

मोहब्बत का इजहार तो कर दूं, मगर डर लगता है कहीं तुम खफा तो ना हो जाओगे। चलो इकरार कर भी दिया अगर, तो डर लगता है कहीं नखरे तो ना दिखाओगे। नखरों को तुम्हारे मैं सह भी जाऊं, पर डर लगता है दिल चुरा के मेरा कहीं तुम बदल तो ना जाओगे।

ना जाने उन्हें हमारी सूरत पसंद आई या सीरत, ना जाने हमारे बोलने का अंदाज पसंद आया या लफ्ज। बेवजह तारीफ करना आदत सी लगती है उनकी। कहते हैं हर धड़कन पर नाम है तुम्हारा,

विराम के बाद छाया गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यार जब परवान चढ़ जाए तो फिर क्या सुबह क्या शाम, दिल गुनगुनाता है सिर्फ अपने दिलबर का ही नाम। निकाले चाहे कोई लाख बुराई, करे कितना ही बदनाम, हंसते हंसते सह जाते हैं आशिक हर खुशी हर गम का जाम।

अचानक जब तुम यूं मेरी नजर के सामने आ जाते हो, दिल की धड़कन कुछ इस कदर बढ़ जाती है मानो सारी जिंदगी एक पल में सिमट गई हो। तुम्हारे साथ बिताए चंद पलों को याद करती हूं तो लगता है मानो ये जिंदगी उन चंद पलों में ही थम गई हो।

मिलने की कसक ने इस कदर बेताब किया कि भीगी भीगी रातों में भी जलने लगा मेरा जिया। अब अगर तुम आ जाओ तो चैन आ जाए, मेरा दिलदार आ जाए तो करार आ जाए।

सुना रही हूं प्यार की कहानी, प्यार से सुन लो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम भी मुझे चुन लो। ना सुनने की हालत में अब नहीं रहा ये दिल मेरा, मैंने राह चुन ली है तुम्हारी, तुम भी मेरी राह चुन लो।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

0: कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz।

सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों एवं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बारी। चर्चा होगी समन्वित मछली पालन पर। साथ ही चर्चा में सुनिएगा नवजात बछड़ों की देखभाल। भेंटवार्ता आप सुनेंगे एक सफल किसान से। भेंटवार्ताकार हैं कपिल देव ठाकुर तुकबेरा पलामू से। भेंट करता है संतोष कुमार। ग्रामीण सभा कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 से। शाम 7:00 प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग का आनंद आप लेंगे। शाम 7:45 पर कार्यक्रम होगा उड़ान। रोजगार से जुड़ी बातें में आज बातें होंगी मेडिकल के क्षेत्र में कैसे बनाएं अपना करियर। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का है। शाम 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम प्रस्तुत करेंगे। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती के प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 11:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम श्री द्वारिकाधीश मंदिर एवं श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आंखों देखा हाल का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम इसे प्रसारित करेंगे। इसके पश्चात हम अपने सभा का समापन करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन सुनने वाली तमाम महिला बहनों को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागिनी कुमारी का भी प्यार भरा नमस्कार
0: और जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भगवान श्री कृष्ण के महोत्सव जन्मोत्सव का दिन है। यह पर्व हमें प्रेम, भक्ति, सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। साथ ही यह महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद दिलाता है जिन्होंने श्री कृष्ण के जीवन को संस्कारों और स्नेह से समृद्ध बनाया। बहनों, श्री कृष्ण के जीवन में माता देवकी का त्याग, माता यशोदा का वात्सल्य और राधा जी का प्रेम आज भी हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है।
1: बहनों, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को केवल लाड प्यार ही नहीं दिया बल्कि अच्छे संस्कार भी दिए। यही संदेश हर माँ के लिए प्रेरणादायक है कि बच्चों को शिक्षा, संस्कार और अच्छे आचरण की सीख देना सबसे बड़ा उपहार है। बहनों, जन्माष्टमी केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं बल्कि परिवार को एकजुट करने का अवसर भी है। घर में मिलकर झांकी सजाना, भजन कीर्तन करना, बच्चों को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनाना और उन्हें सत्य, ईमानदारी और सेवा का महत्व समझाना हमारी सुंदर परंपरा है।
0: यदि आप व्रत रख रही हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्रत करें और पौष्टिक फल, दूध और सूखे मेवे का भोजन सेवन करें। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अपने स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। बहनों, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। परिवार में प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। महिलाएं अपने व्यवहार और संस्कारों से पूरे परिवार को सकारात्मक दिशा दे सकती हैं। आइए, जन्माष्टमी पर हम यह संकल्प लें कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, परिवार में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाएंगे और समाज में सद्भाव और सेवा की भावना को आगे बढ़ाएंगे।

आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन और शुभ बधाई। भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री कृष्ण नाम लेते ही हमारे सामने अपने हाथों में अथवा होठों पर मुरली धारण किए हुए मोर मुकुटधारी दिव्य मूर्ति की छवि दिखाई देती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माताएं श्री कृष्ण को झूले में झुलाती हैं तथा श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों की झांकी सजाई जाती है। श्री कृष्ण के चरित्रों की गाथाएं तो हमने अनेकानेक रूप से सुनी हैं, परंतु उन सभी चरित्रों का आध्यात्मिक रहस्य जाने बिना हमारा जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना भी तभी सार्थक होता है जब उसके कर्तव्यों को हम व्यवहारिक रूप से उसका अर्थ समझकर अपने जीवन में उसका अनुसरण करें। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। यह भी दिखाया जाता है कि कृष्ण ने मटकी फोड़ी। वास्तव में यह कोई सामान्य मिट्टी की मटकी फोड़ने की क्रिया नहीं है, परंतु मानव के अंदर जो ईगो है, अहंकार है, उससे हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क, ये हमारा जो सर हम ऊंचा करते रहते हैं, इस मिथ्या अभिमान को तोड़ना ही मटकी फोड़ने का तात्पर्य है। इसी प्रकार यह भी दिखाया जाता है कि कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया और उसका संहार किया। यह भी हमारे भीतर छिपे हुए बुराइयों और विकारों को भस्म करने का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जीवन अनुराग और वैराग्य, धर्म और कर्म, व्यवहार और परमार्थ में संतुलन का एक अद्वितीय उदाहरण है। शिशुपाल जब भरी सभा में गालियां दे रहा था, उस समय भी श्री कृष्ण अविचलित खड़े थे। इससे बड़ा सहनशीलता का उदाहरण और क्या हो सकता है। श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में हमें महिलाओं को सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। दिखाया जाता है कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने 16,000 महिलाओं को बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर उन्हें मुक्त किया तथा अपनी पटरानी का दर्जा दिया और सम्मान दिया। हमारी भारतीय संस्कृति में भी नारी को देवी का स्वरूप कहा गया है। श्री कृष्ण की महिमा में हम देखते हैं कि उसे 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। तो इन सब योग्यताओं को धारण करने के लिए क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया, ऐसी कौन सी कला सीखी थी। श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है। योग के द्वारा ही परमात्म शक्तियों को अपने जीवन में धारण किया, जिससे ही श्रेष्ठ पुरुषोत्तम नर से नारायण पद को प्राप्त किया। वास्तव में इस धरती पर सर्वोत्तम समय वही होता है जब स्वर्गिक दुनिया में श्री कृष्ण और श्री राधे का राज्य होता है। जिस भारत देश की हम महिमा भी गाते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। श्री कृष्ण के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब लगता है कि वे किसी धर्म संकट में फंस गए हैं, परंतु अपनी विवेक चातुर्य और युक्ति से वे स्वयं उस संकट से निकल आते हैं और दूसरों को भी निकाल लेते हैं। अतः जीवन में कर्म कुशलता के साथ जीवन जीने की कला हमें श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से मिलती है। कई बार ऐसा भी हुआ जब देश और समाज में शांति के लिए श्री कृष्ण ने कई तरह के समझौते का प्रयास किया, अपने ऊपर कलंक भी लगने दिया, परंतु विपरीत परिस्थितियों में भी वे शांत और स्थिर रहे। श्री कृष्ण की हम अनेक नामों से महिमा गाते हैं। कभी हम उसे गोपाल कहते हैं, कभी कृष्ण कन्हैया कहते हैं, वासुदेव कहते हैं। कृष्ण के जो अनेक नाम हैं जो हम उनकी महिमा गाते हैं, ये सभी नाम कर्तव्यवाचक हैं। कर्तव्य के आधार पर ही उसकी आत्मा की सुंदरता निर्भर करती है, इसलिए उसे श्याम सुंदर भी कहते हैं, मदन मोहन कहते हैं, जो सबके मन को मोहने वाले हैं। उस नंदलाल के सुंदर स्वरूप को हम भी अपने भीतर स्थापित करें, उसे हम अपने जीवन में आत्मसात करें।
तभी हम भी श्री कृष्ण जैसा सुंदर गुण संपन्न और चरित्रवान बन सकते हैं। श्री कृष्ण की 5 चीज़ें जो हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखाती हैं, आइए हम देखते हैं कैसे श्री कृष्ण की ये जो 5 अलंकार हैं जो हमें जिंदगी जीने का तरीका, जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं। पहला है मोर का पंख। मोर का पंख हमें समझाता है कि जीवन में सभी तरह के रंग होते हैं, यानी कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सफलता है, कभी असफलता है, लेकिन सब में हम एक समान रहें, सब में हमारे रिश्तों की मर्यादा बनी रहे, तभी हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। दूसरा है बांसुरी। बांसुरी में 8 छिद्र होते हैं, छिद्र अर्थात कमियां। कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो जीवन हम मधुरता से जी सकते हैं, अपनी कमियों को भी हम विशेषताओं में बदल सकते हैं। तीसरा है स्वदर्शन चक्र, जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। इंसान के लिए उसका सुंदर व्यक्तित्व ही सुदर्शन चक्र है, व्यवहार से ही व्यक्तित्व का दर्शन होता है। चौथा है माखन और मिश्री। कृष्ण को हमेशा हम माखन मिश्री खाते हुए देखते हैं। मक्खन नर्म होता है, मिश्री सख्त होती है। मक्खन में घुलकर मिश्री मिठास देती है। यह सिखाता है कि हमारा स्वभाव मक्खन की तरह नर्म और व्यवहार मिश्री की तरह होना चाहिए, घुलने वाला होना चाहिए। पांचवा है वैजयंती माला। कमल के फूल के बीज से बनी माला को वैजयंती माला कहा जाता है। यह बीज बहुत सख्त होते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं। यह हमें सिखाता है कि इंसान को हर परिस्थिति में खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, जीत अवश्य मिलती है। अतः आइए आज हम भी श्री कृष्ण के चरित्रों की महिमा करने के साथ ही उसे अपने जीवन का आदर्श बनाएं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यह प्रेरणा दें, संदेश दें, जिससे वह भी श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर श्रेष्ठ कर्म कर चरित्रवान बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जन्माष्टमी के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अभी बने ब्रह्म कुमारी सुनीता की वार्ता सुन रही थी। विषय था श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व। और इस वार्ता के बाद आइए चर्चा करते हैं महिलाएं बच्चों के पोषण का रखे ख्याल इस विषय पर।
1: जी हाँ बहनों, परिवार के सदस्यों बच्चों का स्वस्थ विकास सही पोषण पर निर्भर करता है। बच्चों को रोजाना संतुलित आहार दें बहनों, जिसमें दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल, अंडा या अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल हो। साफ पानी पिलाएं और जंक फूड से बचाएं। 6 महीने तक के माँ का दूध और उसके बाद पौष्टिक पूरक आहार देना बहुत आवश्यक है। समय समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच भी कराती रहें।
0: बहनों, बच्चे देश का भविष्य हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही पोषण पर निर्भर करता है। जीवन के शुरुआती वर्षों में यदि बच्चों को संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो वे स्वस्थ, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी बनते हैं। बच्चों के भोजन में अनाज, दालें, दूध और दूध से बने पदार्थ, मौसमी फल और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जरूर देना चाहिए। घर का ताज़ा और संतुलित भोजन बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है। अधिक तेल, नमक और चीनी वाले पैकेटबंद खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए।
1: नवजात शिशु के लिए जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध सबसे उत्तम आहार है। माताओं के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के भोजन स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समय पर टीकाकरण, हाथ धोने की आदत, साफ पानी का उपयोग और नियमित स्वास्थ्य जांच बच्चों को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। यदि बच्चे का वजन या लंबाई उम्र के अनुसार नहीं बढ़ रही है या बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सलाह लें। सरकार द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अवश्य उठाएं। वहां बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बहनों, इस चर्चा के बाद आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बनो इसी गीत के साथ कार्यक्रम घर आंगन से। अब दीजिए रागिनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाने और महिला सदस्य को शामिल करने का स्वागत किया है। कोडरमा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष द्वारा इस नियुक्ति पर सवाल उठाने को दिशाहीन बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले

0: और इस्कॉन देवालय सहित राज्यभर के मंदिरों में विशेष विद्युत सज्जा की गई है। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सिमडेगा में 21वीं मेजर ध्यानचंद जिला हॉकी चैंपियनशिप जारी है। महिला वर्ग के लीग राउंड के सभी 32 मैच पूरे होने के बाद 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष वर्ग में अब तक 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम ग्रामीण भाइयों को रागनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
1: सबसे पहले बातें समन्वित मछली पालन की। तो आज खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय के नए साधन अपनाना समय की आवश्यकता है ग्रामीण भाइयों, और समन्वित मछली पालन ऐसा ही एक आधुनिक और लाभकारी तरीका है। इसमें मछली पालन को खेती, पशुपालन, बत्तख पालन या मुर्गी पालन जैसी अन्य गतिविधियों के साथ जोड़ा जाता है। इस पद्धति में एक ही खेत या तालाब का बेहतर उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, यदि तालाब के किनारे सब्जियां उगाई जाएं, तालाब का पानी सिंचाई काम आता है। इसी प्रकार बत्तख या मुर्गी पालन से मिलने वाला जैविक अपशिष्ट तालाब के लिए प्राकृतिक खाद का काम करता है, जिससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन तैयार होता है।
0: ग्रामीण भाइयों, समन्वित मछली पालन के बहुत सारे लाभ हैं। इससे उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और किसानों की आय के कई स्रोत बन जाते हैं। साथ ही परिवार को पौष्टिक भोजन भी मिलता है। सफल मछली पालन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक है, जैसे तालाब साफ और पर्याप्त गहरा होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के मत्स्य बीज का चयन करें, समय समय पर तालाब के पानी की गुणवत्ता की जांच करें और आवश्यकता के अनुसार पूरक आहार दें। रोगों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। सरकार और मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और कई योजनाओं के माध्यम से सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। और किसान भाई इन योजनाओं की जानकारी अपने नज़दीकी मत्स्य विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, यदि आप खेती के साथ अतिरिक्त आय का साधन अपनाना चाहते हैं तो समन्वित मछली पालन आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सही योजना, वैज्ञानिक तरीके और नियमित देखभाल से बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मछली पालन केवल तालाब में मछली छोड़ देने तक सीमित नहीं है। यदि हम इसे खेती, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, डेयरी या बागवानी के साथ जोड़ा जाए तो इसे समन्वित मछली पालन कहा जाता है। इससे एक ही संसाधन से कई प्रकार की आय प्राप्त हो सकती है। ये तालाब के साथ मछली पालन शुरू करने के पहले तालाब की अच्छी तरह सफाई कर लें, आवश्यकता अनुसार चूना और जैविक खाद का प्रयोग करें, अच्छी गुणवत्ता के स्वस्थ मत्स्य बीज डालें। विभिन्न प्रजातियों की मछलियाँ जैसे कतला, रोहू और मृगल वैज्ञानिक सलाह के अनुसार एक साथ पाली जा सकती है। समय समय पर मछलियों को संतुलित पूरक आहार दें। तालाब में पानी का स्तर बनाए रखें और यदि मछलियां पानी की सतह पर बार बार आने लगें तो पानी की गुणवत्ता की जांच कराएं। तो सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के मत्स्य विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क जरूर करें। याद रखें कि समन्वित मछली पालन केवल आय बढ़ाने का माध्यम ही नहीं बल्कि इन साधनों के बेहतर उपयोग और टिकाऊ कृषि की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसके बाद आइए आप कुछ सफल किसान से ली गई भेंटवार्ता सुनाते हैं। भेंटवार्ताकार हैं तुकबेरा पलामू के कपिल देव ठाकुर, बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के नवा बाजार प्रखंड के तुगबेरा गाँव के एक सफल किसान कपिल देव ठाकुर, जिनसे हम आज बातें करेंगे जैविक विधि से खेती की, इससे क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, इन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है जैविक विधि से खेती करके। उसके साथ ही ये बाजरा की खेती कर रखे हैं, मोटे अनाजों की खेती कर रहे हैं, इस संदर्भ में हम इनसे बातें करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि अभी मोटे अनाजों में किसकी खेती हो रही है?
1: मोटे अनाज में मड़ुआ हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, जिनोरा जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं, जिनोरा का भी होता है, मकई हुआ, कुल्थी हुआ, तो इस सब का खेती जो है से हो रहा है। और तेलहन के इसमें जो है से ये नाइजर हुआ, नाइजर का भी यह है, तीसी हुआ, इसका भी खेती हो रहा है। मतलब सरकार के तरफ से भी इसमें है कि अधिक से अधिक मोटे अनाज की खेती करना है। इस पर हमारे जो अधिकारी लोग कृषि से संबंधित हैं, वो सबों का सुझाव आ रहा है कि मोटे अनाज की खेती किया जाए।
0: तो मोटे अनाज में अभी आपने क्या लगा रखा है?
1: मकई लगाए थे, बाजरा लगाए हुए हैं, कुल्थी लगा हुआ है, और इसको लगाना है अभी उड़द वगैरह जो है,
0: वो तो दलहन में हो गया। हाँ, ना तो अब मोटे अनाज में बाजरा, बाजरा की देख रेख कैसे कर रहे हैं आप कपिल ठाकुर जी?
1: जी, बाजरा तो मतलब ऐसे जमीन में लगाना है जहाँ पर पानी का जमाव नहीं हो। तो ऐसे ही हम लोगों का क्षेत्र तो सूखा क्षेत्र है, और इस वर्ष प्रकृति का मार जो है से किसानों के ऊपर मैंने समझिए कि कहर बन के बरप रहा है। तो इस मौसम में इस बार जो है से बाजरे के लिए बहुत सुनहरा रहा है।
0: ये क्या प्रतिकूल, इसके लिए क्या अनुकूल वातावरण होना चाहिए?
1: कम बारिश में ये होने वाला फसल है।
0: अच्छा।
1: जहाँ पानी का जमाव नहीं हो पाता है, टड़ियन जहाँ खेत है, तीन नंबर का खेत है, उस खेत में जो है से बाजरे की खेती किया जा सकता है, जिनोरा का खेती किया जा सकता है।
0: अच्छा।
1: और वैसे ही खेत में हम लोग लगाए हुए हैं।
0: जी, क्या क्या सावधानियां बरतते हैं इसमें?
1: इसमें जब उसकी बुआई होता है तो उस समय देखना है कि अगर हल्का फुल्का बारिश हो गया, खेत में अगर पानी के जमाव हो रहा है, तो उसको देख करके पानी को निकाल देना है।
0: अच्छा।
1: किसी तरह से पानी जमने नहीं देना है, नहीं तो उसका अंकुरण जो है से खराब हो जाता है, सड़ जाएगा।
0: अच्छा।
1: दूसरी बात है, बुआई के समय सावधानी बरतना है कि बहुत ज्यादा सघन नहीं लगाएं।
0: अच्छा।
1: कम बीज डाले खेत में,
0: जैसे
1: कि एक एकड़ में मान के चलिए कि 2.5 से 3 केजी, अधिक से अधिक बहुत ज्यादा खेत खराब है तो 5 केजी तक, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ये जो है से उसका बीज का जो है से बुआई करें और उसको लाइन में करें। लाइन में अगर बुआई करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा पैदावार मिलेगा, इसलिए कि उसका पौधा जो है ना से मोटा होता है, बड़ा होता है। अगर ज्यादा सघन कर दीजिएगा तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं हो पाता।
0: हाँ,
1: है
0: मतलब कि
1: पतला विकास नहीं हो पाएगा, पतला पतला रह जाएगा, और जब पतला रह जाएगा तो बालियां कमजोर हो जाएगी उसमें। और फिर उसमें सावधानी क्या बरतना है, ध्यान देना इस बात के है कि जब उसमें बालियां आती है तो उस समय पक्षी बहुत परेशान करते हैं, तो उसकी रखवाली करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि किसान भाई अगर उसमें चाहें तो प्लास्टिक या जो घर में पड़ा हुआ है मिसयूज कपड़ा है, पुराना फटा चिटा, तो उसका थैली नुमा बना करके और उसमें जब दाना आ गया है
0: तो
1: उसमें उड़ा दें, ढक दें, या फटा टूटा मच्छरदानी वगैरह है तो उसको कर दें। इससे क्या है कि पक्षियों से बचाव किया जा सकता है।
0: तो इसका मतलब बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा?
1: नहीं, उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उसका परागण जब हो जाता है ना, तो उस समय की बात है, जैसे फूल है तो फूल तो पक्षी नहीं बर्बाद करेंगे, जब उसमें दाना आ जाता है ना, दाना जब भरा होने लगता है उसका, हम लोग ऐसे देहात में बोलते हैं कि गदरा रहा है, तो उस समय जो है से

0: पक्षी बहुत तबाह करते हैं, खास करके जो सुगा का जो पक्षी प्रजाति है तो सुगा बहुत परेशान करते हैं।
1: अच्छा,
0: तो उससे बचाव करना चाहिए। और उससे बचाव का ऐसे तो मान लीजिए रखवाली करने के किसान के पास तो बहुत काम है, तो फटा टूटा घर में जो मिसयूज हो रहा है मच्छरदानी उसका उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक है तो उसको ढक सकते हैं उससे
1: जी।
0: और उसका उपज जो है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज के परिवेश में जो बीमारियां हो रही है फास्ट फूड खाने से, इस तरह का जो जितना एडवांस फूड जो हम लोग ले रहे हैं, खासकर किसान के पास तो नहीं लेकिन जो शहर में लोग रह रहे हैं उनके पास बहुत तरह की बीमारियां हो रही है, तो भोजन जो विषाक्त रूप में ले रहे हैं तो इसका मुख्य कारण है। तो ये सब जो मोटे अनाज को अगर लेते हैं तो उसमें जो है से बीमारियां होने का कम संभावना है। और खासकर बाजरा जो है, जिनोरा जो है, ये शुगर फ्री है।
1: अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कीड़े वगैरह क्या लगते हैं, रोग वगैरह?
0: देखिए, बाजरे की खेती में बीमारी बहुत ही कम ना के बराबर होता है।
1: अच्छा,
0: लेकिन अगर मान लीजिए प्रकृति में कुछ ऐसा आ ही गया तो उसके लक्षण को देख करके किस तरह का कीट आ रहा है और उसका उपचार किया जा सकता है।
1: अच्छा,
0: ऐसे अभी तक तो हमारे खेत में किसी तरह का कोई बीमारी नहीं लगा।
1: सिंचाई कैसे करते हैं आप इसको? कभी इसको तो सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती हो?
0: अभी इस सीजन में जब इसका खेती किया जा रहा है तो सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं है।
1: अच्छा,
0: ये जो है इसका हम केवल बाजरे की भी खेती कर सकते हैं, मिश्रित खेती कर सकते हैं अरहर के साथ में।
1: अच्छा,

0: अभी जो भी खेती आप कर रहे हैं, अपने मोटे अनाजों की भी खेती कर रखी है, दलहनी फसलों की भी खेती कर रखी है,
1: जी
0: अनाज फसलों में संक्षिप्त में हमको सिर्फ बताएंगे, आपकी धान
1: जी
0: की खेती की है?
1: हाँ, धान का खेती की हुई है।
0: अच्छा, कैसी है पानी की स्थिति, कैसी है?
1: पानी का स्थिति तो जो प्रकृति के साथ है तो हम भी उसी में हैं, लेकिन हमारे पास पानी का अभी तक जो जल स्रोत है वो अभी तक बरकरार है। और खुशी की बात यह है कि इस पलामू के धरती पर नवा बाजार प्रखंड में पहला किसान मैं हूँ जो ब्लैक राइस का खेती किए हुए हूँ, जो शुगर फ्री है, काला चावल का खेती किए हुए हूँ, 3 एकड़ में लगाया हूँ और बहुत ही अच्छा है। अब प्रोडक्शन कितना मिलता है, यील्ड इसका क्या होता है, अभी कुछ हम बता नहीं सकते हैं, हालांकि फसल जो है से बहुत अच्छा है और पूर्णतः ऑर्गेनिक है
0: जी।
1: अब जैविक खेती इसको जैविक किए हुए हैं, लेकिन हम किए हैं इस वर्ष, लेकिन खेत मेरा पहले से रसायन यूज किया हुआ है तो वो पूर्णतः अभी ऑर्गेनिक नहीं रहेगा, लेकिन इसको मैं अभी बंद कर दिया हूँ, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हूँ और धान का फसल अच्छा है।
0: अच्छा, ये जैविक खेती की बात चुकी आ रही है सामने
1: जी,
0: जैविक खेती को कैसा मानते हैं आप?
1: जैविक खेती कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन मिल जाता है जैविक खेती में। इसमें जो है से जैविक उर्वरक हम घर में बना लेते हैं और उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं, और किसान भाई को हम ये सलाह देंगे कि खेती के साथ साथ पशुपालन करें, तो पशुपालन करेंगे तो उनका जो मलमूत्र है उससे अपने खेत के लिए वो जैविक उर्वरक तैयार कर सकते हैं और उससे जैविक कीटनाशी भी तैयार कर सकते हैं, उससे दोनों हो जाएगा। और जो खेत में जो फसल का अवशेष बच जाता है उसको भी किसान भाई जलाए नहीं, उसको खेत में ही जो है से जोत दें, उसको दबा दें ताकि वो भी एक उर्वरक तैयार हो जाएगा
0: जी। बहुत बार ऐसा होता है कि अवशेष को हमारे किसान भाई लोग इकट्ठित करके जला देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए।
1: नहीं चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, इससे जो है से पर्यावरण भी प्रदूषित होगा और आपका उर्वरक भी बर्बाद हो रहा है, यानी दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के सोच से अब दूर निकलने की जरूरत है। किसान भाई को मैं सलाह देता हूँ कि फसल का अवशेष जो रहता है अगर उस तरह का है, हरा कुछ है, तो पशु को खिला दें, उससे भी आपको मान तीन गुना फायदा हो गया तीसरे चरण का। जैसे आपके पशु के चारा की जरूरत है तो उसका मेंटेन हो गया।
0: अच्छा, ये बाजरा वाला तो चारा बहुत अच्छा हो जाता होगा पशु के लिए ना?
1: हाँ, हो जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है उसमें, जब बाजरे की आप उसका ग्रेन दाना को जब आप उत्पादन में ले रहे हैं तो उसका चारा नहीं हो पाता है। उसका चारा पहले ही बाजरा को फूटने से पहले अगर हम काट देते हैं तो पशु चारा के लिए हो जाता है, उपयुक्त हो जाता है।
0: और अब हम ये आपसे जानेंगे कि मोटे अनाज की खेती में क्या संभावना पाते हैं आप?
1: मोटे अनाज देखिए, पलामू क्षेत्र के लिए मोटे अनाज के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। हमारे यहाँ आज मान लीजिए कि देखा देखी धान गेहूं की खेती हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जिस तरह का यहाँ क्लाइमेट है उस तरह से किसान मेहनत कर रहे हैं, धान गेहूं खेती तो कर ही ले रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा संभावना है मोटे अनाज की खेती करके और अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इसलिए कि कोई भी मोटा अनाज जो है आपका जो चलेबुल जो महीन अनाज है हमारे यहाँ उससे किसी का कीमत कम नहीं है और उत्पादन भी कम नहीं होता है। मकई का भी उत्पादन कम नहीं होता है, बाजरे का उत्पादन कम नहीं होता है, ज्वार का उत्पादन कम नहीं होता है, कुल्थी का उत्पादन कम नहीं होता है। जितना हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो मेहनत कम, लागत कम और उत्पादन उससे बढ़िया मिलता है।
0: बिल्कुल, मतलब कम संसाधन में बेहतर खेती की जा सकती है। चलिए, आप थे पलामू जिला के नवा बाजार प्रखंड के तुकबेरा गांव के एक सफल किसान कपिल देव ठाकुर जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े इसलिए आपको धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे एक सफल किसान कपिल देव ठाकुर जो तुकवेरा पलामू के थे, इनसे ली गई भेंट करता थे संतोष कुमार। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आइए इस गीत के बाद बात करते हैं नवजात बछड़ों की देखभाल की। पशुपालन में नवजात बछड़ों की सही देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ बछड़ा ही आगे चलकर अच्छा दुधारू पशु या मजबूत बैल बनता है, इसलिए जन्म के पहले कुछ घंटे और शुरुआती कुछ सप्ताह बेहद अहम होते हैं।
1: ग्रामीण भाइयों, बछड़े के जन्म के तुरंत बाद उसके शरीर को साफ और सूखे कपड़े या बोरी से पोंछ दें। यदि माँ पशु बछड़े को चाटती है तो यह भी उसके शरीर को सुखाने और रक्त संचार बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद बछड़े की नाक और मुंह को साफ करें ताकि वह आसानी से सांस ले सके। नाभि की डोरी को स्वच्छ तरीके से काटकर पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार कीटाणुनाशक घोल जैसे आयोडीन से साफ करें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। जन्म के 1 से 2 घंटे के भीतर बछड़े को माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे खीस कोलोस्ट्रम कहा जाता है, अवश्य पिलाएं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नवजात को संक्रमण से बचाने में भी मदद करता है। बछड़े को हमेशा साफ सूखे और हवादार स्थान पर रखें। ठंड के मौसम में उसे ठंडी हवा और नमी से बचाएं। पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध कराएं और उम्र बढ़ने के साथ पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार संतुलित आहार देना शुरू करें।
0: यदि बछड़ा दूध ना पी रहा हो तो सुस्त दिखाई दे रहा है, दस्त हो जाए या सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। समय पर इलाज से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, नवजात बछड़ों की थोड़ी सी अधिक देखभाल भविष्य में बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ का आधार बनती है।

0: पशुओं का स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और प्रजनन क्षमता उनके आहार पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए दुधारू पशुओं का केवल चारा ही नहीं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार देना बहुत आवश्यक है। पशुओं के आहार में हरा चारा, सूखा चारा और दाना अधिक मात्रा में शामिल करें। हरे चारे से विटामिन और खनिज मिलते हैं, जबकि सूखा चारा पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दाने में ऊर्जा और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है, दूध उत्पादन के लिए जरूरी है। दुधारू पशु को दूध की मात्रा, शरीर के वजन और उसकी अवस्था के अनुसार दाना दें। अचानक आहार में बदलाव ना करें क्योंकि इससे पशु का पाचन बिगड़ सकता है। आहार में बदलाव धीरे धीरे करें और पशु चिकित्सक या पशु पोषण विशेषज्ञ की सलाह लें। पशुओं को हर समय साफ और ताजा पानी उपलब्ध कराएं। दूध देने वाले पशु को पर्याप्त पानी न मिलने पर दूध उत्पादन कम हो सकता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। खनिज मिश्रण और नमक की उचित मात्रा भी पशुओं के आहार में शामिल करें। इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं, प्रजनन क्षमता बेहतर होती है और शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। चारे और दाने को साफ, सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखें। फफूंद लगा, सड़ा हुआ या गंदा चारा पशुओं को ना खिलाएं क्योंकि इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यदि पशु का दूध अचानक कम हो जाए, वह खाना छोड़ दे, कमजोर दिखाई दे या उसका पाचन बिगड़ जाए, तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। समय पर सलाह और उपचार से पशु को स्वस्थ रखा जा सकता है। किसान भाइयों, संतुलित आहार, स्वच्छ पानी और नियमित देखभाल से पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे आपकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलती है।
1: तो ग्रामीण भाइयों, इसी चर्चा के बाद अब हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज बस यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागनी कुमारी और प्रतिमा।

श्रोताओं, अभी आप ग्रामीणों और कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड की 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कृषि उत्पाद और ग्रामीण विकास पर आधारित कार्यक्रम।

0: ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा वर्मा का नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: ग्रामीण सभा खास तौर पर हमारे ग्रामीण भाई बहनों के लिए कार्यक्रम है, तो सबसे पहले बात करते हैं आज स्प्रिंकलर सिंचाई से लाभ की। और ये स्प्रिंकलर सिंचाई हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी ही लाभदायक है और ये सिंचाई आधुनिक सिंचाई प्रणाली में एक प्रभावी और जल संरक्षण वाली तकनीक है। इसमें पानी फवारे के रूप में खेत में समान रूप से फैलता है, जिससे फसलों को आवश्यक मात्रा में नमी मिलती है।
1: ग्रामीण भाइयों, स्प्रिंकलर सिंचाई जो है फव्वारा विधि, इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे पानी की 30-50% तक बचत हो सकती है, खेत में पानी का समान वितरण होता है, जिससे फसल का विकास बेहतर होता है। ऊबर खाबड़ और हल्की ढाल वाली भूमि में भी इसका प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी का कटाव कम होता है और जल भराव की समस्या नहीं होती है। श्रम, समय और सिंचाई की लागत में कमी आती है। सब्जियों, दलहनी, तिलहनी, चारा और बागवानी फसलों में यह प्रणाली विशेष रूप से उपयोगी है। उर्वरकों को पानी के साथ नियंत्रित मात्रा में देने से सुविधा मिलती है और उपयुक्त उपकरण भी उपलब्ध हो, फसल की बढ़वार अच्छी होने से उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार की संभावना बढ़ती है। स्प्रिंकलर जो सिंचाई है उसके सावधानियां भी हैं। स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग करते समय नोजल की नियमित सफाई करें, पाइपों में रिसाव न होने दें और सिंचाई का समय मौसम और फसल की आवश्यकता अनुसार आप निर्धारित करें। तेज हवा चलने पर स्प्रिंकलर से सिंचाई करने से पानी का वितरण भी असमान हो सकता है, इसलिए ऐसे समय सिंचाई से बचना

0: ग्रामीण भाइयों, स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने से पहले अपने खेत की मिट्टी, फसल और पानी की उपलब्धता का आकलन अवश्य करें। सही क्षमता वाले पंप, उपयुक्त नोजल और अच्छी गुणवत्ता के पाइपों का चयन करें ताकि पूरी प्रणाली प्रभावी ढंग से काम करे। सिंचाई सुबह या शाम के समय करना अधिक लाभदायक होता है। इससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है और फसल को पर्याप्त नमी भी मिलती है। सिंचाई के दौरान समय समय पर यह देखते भी रहना है कि सभी स्प्रिंकलर समान रूप से पानी का छिड़काव कर रहे हैं या नहीं। यदि किसी नोजल में रुकावट है तो आप तुरंत साफ करें और फसल की आवश्यकता के अनुसार ही आप पानी दें। आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से पानी की बर्बादी होती है और फसल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि आपके क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पर सरकारी अनुदान या प्रशिक्षण उपलब्ध हो तो कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी लेकर आप उसका लाभ उठाएं। याद रखें ग्रामीण भाइयों कि पानी की हर बूंद की बचत न केवल आपकी लागत कम करती है बल्कि भविष्य की खेती को भी सुरक्षित बनाती है। तो ये हुई बातें स्प्रिंकलर सिंचाई से लाभ की।
1: किसान भाइयों, आइए इसके बाद आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता। एक महिला किसान प्रेमा कंडोलना से ली गई भेंट, जो नौडिहा रामगढ़ पलामू की रहने वाली है। बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
2: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, हम मोटे अनाजों की खेती से संबंधित आज आपसे बात करेंगे और विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के रामगढ़ प्रखंड के नवाडी गांव की एक सफल महिला किसान प्रेमा कंडुलना जी, जो मोटे अनाजों की खेती कर रही हैं, विशेषकर ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, सांवा, कोदो वगैरह। और इनकी खेती आज ये नए ढंग से नहीं कर रहे हैं बल्कि ये बहुत पुराने वर्षों से यहाँ पे आपका नावाडी गांव में मोटे अनाजों की खेती यहाँ पर हमारे किसान भाई लोग करते आ रहे हैं, जिससे ये जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: अभी आप क्या लगाई हैं खेतों में?
3: अभी धान लगाए हैं, उड़द लगाए हैं, अरहर लगाए हैं और मकई लगाए हैं।
2: और मोटे अनाज?
3: मोटे अनाजों में बाजरा हुआ और ज्वार लगाए हैं, ये सब मड़ुआ सब लगाए हैं।
2: अच्छा अच्छा,
3: ये सब लगाए हैं हम लोग।
2: अच्छा, मड़ुआ की खेती की इधर क्या संभावना है? मतलब लगता है कि इस बार मड़ुआ हम अधिक से अधिक उत्पादन ले लेंगे?
3: जी हाँ, क्योंकि हल्का बारिश होना चाहिए उनके लिए, मड़ुआ के लिए, इसलिए उनके उसके लिए माने अच्छा बारिश है। मकई के लिए, धान बजरा सब के लिए, माने धान को छोड़कर मकई के लिए और उड़द के लिए, अरहर के लिए, तिल के लिए, सब के लिए ठीक बारिश है। कोई दिक्कत नहीं है, केवल दिक्कत है धान के लिए।
2: और सवा कोदो की अगर बात करें?
3: हाँ जी, सवा कोदो भी इसी पानी में, हल्का पानी में हो जाता है तैयार,
2: है ना?
3: हाँ जी।
2: उसमें क्या क्या परेशानी आती है? कुछ तो परेशानी जरूर आती है।
3: किसमें?
2: सवा कोदो में।
3: सवा कोदो में क्या परेशानी है? कुछ परेशानी नहीं है, उसको देखभाल करना है।
2: मैंने क्या क्या देखभाल करती है? जैसे
3: क्योंकि जैसे हो गया कि अभी उसमें ज्यादा घास हुआ तो उसको कुछ माने निकासी करने के लिए,
2: खरपतवार माने समय समय पर निकालिए,
3: समय समय पर निकालिए और उसको देखभाल कीजिए, बस इतना ही है। और तैयार होने के बाद अपना काट लीजिए,
2: है ना? और ज्वार में?
3: ज्वार में हुई, उसको भी माने देखना है, चिड़िया सब खा लेती है तो उसको कुदाना है।
2: अच्छा, उसको बस वही। हाँ जी,
3: तो तैयार हो जाने के बाद अपना काट के अपना अंदर,
2: उसको भी खरपतवार नियंत्रण करना है। खरपतवार को आपको सभी फसलों में नियंत्रण करना है, जो कि खरपतवार उगना ही है और ये उग जाते हैं तो फसलों के विकास में बाधक बन जाते हैं। इसलिए इसको ससमय निकालते रहना है, निराई गुड़ाई निकोनी वगैरह करते रहना है। और यहाँ पर सिंचाई की हम बात करेंगे, सिंचाई की क्या व्यवस्था है?
3: सिंचाई के लिए हमको अभी जून जुलाई में हमको थोड़ा दिक्कत लगेगा, उसके बाद मेरा घर के चारों कोना तरफ नदी है।
2: अच्छा,
3: बीच में है।
2: अच्छा
3: जी हाँ, तो हम पानी ले सकते हैं नदी से भी।
2: ओ, तो आप नदी से लेती हैं पानी?
3: हाँ जी, ले लेते हैं।
2: वाह, बहुत सुंदर। तो अभी नदी में पानी आया?
3: जो अभी नदी में पानी आया है और थोड़ा बहुत माने क्यारी में पानी भी नहीं होने से हम लोग डीजल से लेके हम लोग लगा लेते हैं।
2: अच्छा, डीजल से पटवन कर लेते हैं, है ना?
3: जी हाँ।
2: अच्छा, तो धान भी लगाई होंगी?
3: जी हाँ।
2: कितना धान लगाई है?
3: अभी तो लगाए हैं, क्या बोलेंगे, 4-5 कट्ठा में अभी तो लगाए हैं हम लोग
2: धान,
3: धीरे धीरे। हाँ जी।
2: और सब्जियां की बात अगर हम,
3: सब्जियां लगाए हैं घर में खाने तक, बैंगन लगाए हैं, मिर्चा और बूंदी लगाए हैं, टमाटर लगाए और करेली सब लगाए हैं।
2: अच्छा,
3: कद्दू।
2: अच्छा।
3: सब
2: मड़ुआ कितने में लगाए हैं?
3: मड़ुआ 4 कट्ठा 5 कट्ठा में लगाए हैं।
2: अच्छा,
3: कोदो कम लगाए हैं, 2-3 कट्ठा में लगाए हैं कोदो।
2: अच्छा, कितने में लगाई हैं मड़ुआ?
3: 4-5 कट्ठा में लगाए।
2: और ज्वार?
3: ज्वार भी कम लगाए हैं मड़ुआ से,
2: कम ही।
3: हाँ, 2-3 कट्ठा।
2: और बाजरा?
3: बाजरा भी
2: वही हाल है। ये सामा कोदो ये तो ज्यादा लगा?
3: हाँ, नहीं इतना ही लगा है, सबसे ज्यादा हम मड़ुआ लगाए हैं।
2: सबसे ज्यादा मड़ुआ?
3: जी हाँ।
2: और सिंचाई की? वही सिंचाई के,
3: सिंचाई
2: तो आपको
3: के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।
2: सिंचाई अच्छी तरह से आप कर ले रहे हैं। आपका ये कौन सा ये टोला होगा?
3: गोरे मंजरही खाड़।
2: अच्छा, मंजरही खाड़। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि सिंचाई की बेहतर सुविधा है और यहाँ पर हमारे किसान भाई लोग अच्छी तरह से मतलब की सब चीज उपजा ले रहे हैं, है ना? अच्छा, यहाँ की बाजार व्यवस्था क्या है? बिक्री के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग?
3: बिक्री के लिए हम लोग नवाडी जाते हैं और बेड़मा जाते हैं। 2 बाजार है, 2 बाजार में जाते हैं।
2: वहीं से बिक्री वगैरह?
3: जी हाँ, वहीं से हो जाता।
2: और आप कंपोस्ट खाद वगैरह इस्तेमाल करती हैं कि रासायनिक खाद?
3: हम लोग अभी कृषि विज्ञान से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों का खाद उधर से मिलता है तो वही वाला हम लोग करते हैं।
2: कृषि विज्ञान केंद्र से क्या क्या लाभ लेती हैं?
3: कृषि विज्ञान से ही लाभ लेते हैं क्योंकि कीड़ा लगने वाला वो दवाई ले लेते हैं, फिर खाद ले लेते हैं और प्लस में फिर बीज सब भी ले लेते हैं और वही वाला हम लोग अभी कर रहे हैं।
2: मैंने जो भी वितरण अगर यदि कृषि विज्ञान केंद्र से होता है तो उस वितरण में आप लोग सहभागी बनती हैं?
3: हाँ।
2: आप लोग को बुलाया भी जाता होगा?
3: जी हाँ, बुलाया जाता है।
2: और उसके बाद फिर वितरित किया जाता है बीज वगैरह, खाद वगैरह, जो हाँ, कुछ भी है जो भी आता है कृषि विज्ञान केंद्र में, तो उसका लाभ आप लोग लेते हैं?
3: जी हम लोग ले लेते हैं।
2: और कीड़ा वगैरह ये सब लगता है तो फिर उसके लिए क्या करती हैं? कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ती हैं?
3: जी हाँ, उसे जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं और लोग बता देते हैं हम लोग को, फिर हम लोग जैसे बताते हैं ना वैसे हम लोग प्रयोग कर लेते हैं घर में।
2: जी, आप लोग देखिए वर्षों से मोटे अनाजों की खेती करते आ रही हैं, ठीक ना? आप मोटे अनाजों की खेती से क्या लाभ है जरा हमारे किसान भाइयों को आप बताएं।
3: अभी मड़ुआ हम लोग तो दवा के रूप में खाते हैं। अभी मान लिया डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको यही बताएंगे कि आपको मड़ुआ का रोटी करना खाना है या तो मड़ुआ का हलवा बना के खाइए, तो हम लोग वही सब इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, मड़ुआ का रोटी ही खाते हैं। जी हाँ, और मक्की का अभी जैसे अभी लगाए हैं तो उसको भी हम लोग माने कूट कर हम लोग खा सकते हैं खाना।
2: अब हम पशुपालन की ओर थोड़ी सी बातें करते हैं। पशुपालन क्या क्या पाली?
3: पशुपालन है, बैल है और बकरी था, लेकिन बकरी अभी नहीं है, और मुर्गी सब।
2: मुर्गी सब?
3: जी हाँ।
2: वही देसी मुर्गियाँ?
3: जी हाँ, देसी मुर्गी।
2: तो देसी मुर्गियाँ बेचती भी?
3: बेचते भी हैं और कभी मन किया तो खा भी लेते हैं।
2: अच्छा, यहाँ पर मतलब हमारे अधिकतर किसान भाई जो हैं वो पारंपरिक खेती से जुड़े हुए हैं, है ना? और सिंचाई की सुविधा विशेषकर आपके टोला में है जिससे सभी फसलों का उत्पादन आप लोग कर रहे हैं। सब्जियां में क्या क्या लगाई हुई है?
3: सब्जी में अभी लगाए हैं भिंडी और बैंगन और बूंदी सब लगाए हैं, करेला सब, कद्दू सब, कोहड़ा सब, सब लगाए हैं।
2: तो कैके थान होगा कद्दू वगैरह? कितने
3: कद्दू है? मैंने लाइन लाइन में अभी बता नहीं पाएंगे क्योंकि अपना अनुभव से तो हम ढेरे लगाए हैं। अच्छा, लगाने अच्छा, के लिए तो
2: जी, जी।
3: खाने तक लगाए हैं, खाने से उभर हो जाता है तो बाजार ले जाते हैं। जी हाँ, इतना खाना होता है।
2: परिवार में कितने सदस्य होंगे?
3: हम लोग 6 हैं
2: और सब खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं।
3: जी हाँ,
2: और यही कृषि ही मुख्य आधार है।
3: जी हाँ,
2: बच्चे पढ़ते होंगे?
3: बच्चे पढ़ते हैं
2: और परिवार का भरण पोषण सब कुछ हमारा कृषि ही है।
3: जी हाँ।
2: प्रभा कुंडना जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी। आप थी पलामू जिला के रामगढ़ प्रखंड के नवाडी के मंझरही टोला की एक सफल महिला किसान जो मोटे अनाजों की खेती कर रही हैं, साथ में सब्जियां वगैरह उगा रही हैं और इसे बाजारों में बिक्री भी करती हैं, बेहतर लाभ कमाती हैं। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: इस भेंटवार्ता के बाद आपको एक और भेंटवार्ता सुनवाते हैं, अमरूद फसल की सघन बागवानी। दिल कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता, ये बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
2: ग्रामीण भाइयों, आज हम बातें करेंगे फल उद्यान की और विशेषकर पलामू जिला में या फिर गढ़वा लातेहार में अमरूद की खेती हमारे ग्रामीण बंधु आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि हम अमरूद की सघन बागवानी कैसे करें। इस संबंध में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
4: नमस्कार आपको और श्रोता बंधुओं को।
2: सर्वप्रथम तो बताया जाए हमारे ग्रामीण भाइयों को कि अमरूद की खेती के लिए जो चुनाव वो करते हैं वो कैसा है?
4: देखिए संतोष जी, पहले क्या होता था कि लोग शौकिया तौर पर अमरूद की फसल लगाते थे और यह ट्रेडिशनल फल था, लेकिन आज के समय में अमरूद एक व्यापारिक फल है।
2: जी।
4: व्यापारिक फल मेरा कहने का मतलब है, फल का मतलब है, ऐसे फसल से है जिसपे दिन प्रतिदिन इसको जब हम मार्केट में लाए तो ये तुरंत का तुरंत बिक जाए।
2: जी
4: अमृत के केस में सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज के समय में डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा फल है, रफेज जिसमें बहुत ज्यादा होता है, तो विभिन्न तरीका के रोगों में जो फल वर्जित है वहां पे अमृत को आसानी

0: से लोग लेते हैं, डॉक्टर भी सलाह देते हैं, विटामिन सी की प्रचुरता है। इसके साथ ही साथ इसकी खेती सालों भर हो सकती है और सालों भर मार्केट में इसका डिमांड होता है। इसका कभी भी प्राइस आपको 30 रुपये 40 रुपये से नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा। तो आज के समय में यह एक व्यापारिक फसल बन चुका है। और जहाँ तक हम लोग इसकी खेती के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में बोलेंगे, तो बहुत पहले से 17वीं शताब्दी से इसका, चूंकि ये बाहर से आया हुआ फल है, लेकिन यहाँ इंडिया में इस तरीका से रच बस गया है कि लगता है जैसे यहाँ का ही ये ओरिजिन
1: और
0: हो।
1: हाँ इस तरह
0: और ढेर सारी वैरायटी है
1: जी।
0: जो कि यहाँ पे है, जैसे इलाहाबाद सफेदा, सरदार, ललित, इसी तरीका से ढेर सारा वैरायटी है जो कि रच बस गया है और लगता है कि ये इंडिया का ही फसल है।
1: फसल है जी। ऐसे ये मूलतः है कहाँ का?
0: मूलतः यह अमेरिका का है,
1: अच्छा
0: अमेरिका महादेश का फसल है और 17वीं शताब्दी में जैसे पपीता या सबके साथ पुर्तगालियों के द्वारा ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका हुआ है।
1: और ऐसे भी हमारे ग्रण भाई बहन एक ना एक पौधा अपने घरों में, जो नहीं भी शौक रखते हैं उनका लगा हुआ रहता है अमरूद का पौधा। और हम समझते हैं कि अगर इसकी खेती की जाए तो निश्चित रूप से व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी आमदनी हमारे ग्रामीण भाई बहन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी खेती की शुरुआत कैसे करेंगे?
0: आज हम लोग इसकी सघन बागवानी पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सघन बागवानी का मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पहले हम लोग 1 एकड़ में बहुत कम पौधे लगा पाते थे, मुश्किल से 100 150 पौधे लग पाते थे, आज के समय में वो 2000 तक हम पौधे लगाने में सक्षम हैं।
1: अच्छा
0: दूसरा चीज़ क्या है कि पहले जो नॉर्मल हम लोग प्लांटेशन करते थे उसमें फल आपका 2 से 2.5 मीटर ऊपर पौधा जाने के बाद होता था, लेकिन आज जो सघन बागवानी में हम करते हैं उसमें पौधे की ऊंचाई मुश्किल से 1 मीटर जाती है।
1: अच्छा
0: तो जो ग्रामीण महिलाओं का कृषि में जो हम लोग इन्वॉल्वमेंट कहते हैं तो ज़्यादा बढ़ेगा और महिलाएं ज़्यादा पैसा भी खेती के माध्यम से अपने आप को संबल बनाती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और दिन रात इसमें आराम से मेहनत करना भी आसान हो जाता है,
1: जी
0: चूंकि हाइट कम है, नीचे मुड़ बैठ करके काम करना है। तो सघन बागवानी में इन चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है और सालों भर इसका फल बाजार तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है।
1: जी जी तो कौन कौन से प्रभेद का चुनाव करें हमारे किसान भाई, खेतों की तैयारी कैसे करें?
0: खेत, जब हम लोग इसके सघन बागवानी की बात करते हैं तो जहाँ पहले हम लोग इसको 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर बाय 5 मीटर पे लगाते थे, आज इसकी दूरी को कम करके हम लोग लाइन से लाइन 2 मीटर और पौधा से पौधा 1 मीटर रखने की स्थिति में आ गए हैं।
1: अच्छा
0: तो इसमें क्या है कि पहले गड्ढा करने में भी या गड्ढा भरने में भी समय ज़्यादा लगता था, आज यदि हमको कहीं पे भी अमरुद की बागवानी करनी है तो जमीन देखिए कभी भी ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि कैसा जमीन है।
1: जी जी
0: उस जमीन को कम से कम 2 बार 3 बार आप जुताई कर दें, 1 बार 2 बार गहरी जुताई कर दें और उसको यदि हम प्लेन कर दें और इसके बाद जैसे मेड़ ऊंचा करके और 2 2 मीटर के बाद हम लोग 50 सेंटीमीटर चौड़ाई में इसका ऊंचा कर दें और पौधा को 1 1 मीटर की दूरी पर लगा दें, बीच में फिर आप आने जाने जैसा रास्ता छोड़ दें
1: जी
0: और 2 मीटर के बाद फिर पौधा लगा दें, तो पौधा लगाने के लिए आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है।
1: अच्छा
0: सबसे पहले हम लोग को दिमाग में बात डालना है कि चूंकि पौधा बच्चा है और इसका क्या है, हमको ज़्यादा ऊंचा तक लेकर जाना नहीं है, तो ज़्यादा ऊंचा लेकर नहीं जाना है तो इसमें ज़्यादा हमको खाद पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है।
1: नहीं जी
0: लेकिन फिर भी हम लोग को जहाँ पे अमरुद लगाना है इसका यदि हम लोग लाइनिंग तैयार कर लेते हैं तो हर एक जहाँ पे पौधा लगाना है उस जगह पे मात्र 1.5 से 2 kg हर एक गड्ढा के अनुसार आप पूरा सड़ा हुआ गोबर खाद प्रारंभ में और 90 ग्राम यूरिया, 45 ग्राम पोटास मिला करके गड्ढा में हम लोग रखते चले जाएंगे।
1: अच्छा
0: और जो गड्ढा हम बनाए इसका हमको ये कोशिश करना है कि जैसे बरसात आ गया, लेआउट हम लोग अभी कर लिए, लेकिन बरसात आ गया जुलाई, हम लोग जुलाई में घास जैसे उस खेत के एरिया को उस जहाँ पे रखना है घास मुक्त हो कम से कम।
1: अच्छा अच्छा
0: तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कि लास्ट अगस्त में पौधा लगाए।
1: अच्छा,
0: चूंकि जो भी पौधा हम लगा रहे हैं, चूंकि थोड़ा कॉस्टली पौधा है, जैसे इसके लिए हम लोग चुनाव करते हैं थाई पिंक या VNR की है ये प्रजाति, जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी से इम्प्रूव किया हुआ टिश्यू कल्चर वाला पौधा है।
1: अच्छा।
0: तो उस पौधे का यदि व्यवसायिक खेती हम कर रहे हैं तो उसका चुनाव कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा जो हमारा ट्रेडिशनल है जैसे इलाहाबाद सफेदा, ललित, उसका भी हम इसमें लगा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो इम्प्रूव वेराइटी जैसे थाईपिंग की मैं बात किया, VNR की मैं बात किया, उसके उसके फलन में, और जो हमारा ट्रेडिशनल है प्रभेद, उसमें फलन में देखिए जो प्रोडक्शन होगा थोड़ा अंतर पड़ता है।
1: अच्छा।
0: अंतर पड़ता है जैसे कि उसमें एक साल के बाद जहां आप 1 kg लेंगे, ट्रेडिशनल हम जो अपना लगाते हैं उसमें 700 से 800 ग्राम।
1: अच्छा।
0: मतलब 25% का आपको कमी देखने को मिला है अभी रिसर्च के माध्यम से।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और लॉन्ग ड्यूरेशन में और फिर एक गैप हो जाता है।
1: अच्छा।
0: जैसे एक पौधा में उसमें 20 kg तक हम लेंगे, ये हमारा 12-14 kg तक प्रत्येक पौधा में रह जाता है।
1: अच्छा,
0: 5 साल के बाद।
1: अच्छा।
0: लेकिन इनिशियल इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो टिश्यू कल्चर पौधा है, यदि आप लॉट में ज़्यादा मंगाते हैं तो इसका मूल्य कम पड़ता है, 90-100 रुपये तक पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: हो सकता है ज़्यादा लॉट में मंगाए, या हमारा हम लोग जो किसान भाई ज़्यादा समूह में इकट्ठा होकर के पौधा का डिमांड करें, जैसे ये आंध्रा के से पौधा जनरली आती है, तो वो कम पड़ेगा 40-50 तक। तो इनिशियल कॉस्ट इसमें पौधा में ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हमको 2000 पौधा लगाना है
1: जी,
0: तो इनिशियल कॉस्ट उसमें लग जाता है ज़्यादा, खाद में ज़्यादा खर्च नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है।
1: अच्छा, तो प्रति वर्ष वो फल देगा?
0: इसमें क्या है कि 7 महीने के बाद जैसे आप पौधा आज लगा, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पौधा बढ़ना शुरू हुआ तो हम लोग उसके वेजिटेटिव ग्रोथ को, जैसे पत्ती वगैरह निकलता है, उसको तुरंत चेक करेंगे।
1: अच्छा।
0: 4 महीने के बाद उसको काट देंगे, प्रूनिंग कर देंगे, तो प्रूनिंग करने से क्या होगा कि वो वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाएगा।
1: अच्छा।
0: रिप्रोडक्टिव फेज मेरा कहने का मतलब फलन में चला जाएगा। लेकिन जब हम रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तो किसान भाइयों को, खासकर पलामू के किसान को मेरा ये सलाह रहेगा कि जो 7 महीने के बाद जो फूल वगैरह आता है उसको हटा देने का मैं सुझाव दूंगा, कम से कम 1.5 साल का पौधा हो तब उन्हें फल लेने का मैं सुझाव दूंगा।
1: अच्छा।
0: इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ ज़मीन जो है थोड़ा कम उपजाऊ है, और हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें गड्ढा खोद करके ज़्यादा पौधा देने रहे, तो यदि हम ज़्यादा उसमें लगाते हैं तो उसके भार को सहेगा नहीं, जहाँ तहाँ क्रैकिंग होने लगेगा, तो उसके स्ट्रक्चर को, चूँकि हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल में 70-80 सेंटीमीटर जाने के बाद हम लोग छटनी करते थे, यहाँ क्या करते हैं कि जैसे ही पौधा सीधा 30-40 सेंटीमीटर को हुआ तो 40 सेंटीमीटर के बाद ऊपर से हम पौधा को कट कर देते हैं।
2: आइए आपको आज के मौसम की जानकारी दे दें। आज पलामू झारखंड में अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। आज जिले में बादल छाए रहने के साथ एक दो स्थानों पर गरज चमक और बारिश की संभावना है। यदि आप खेती से जुड़े कार्य या सिंचाई की योजना बना रहे हैं तो स्थानीय मौसम की स्थिति पर नजर रखना उपयोगी रहेगा।
3: ग्रामीण भाइयों, सितंबर का महीना किसानों के लिए फसलों की बुआई, खासकर सितंबर माह के कृषि कार्य और रबी की तैयारियों के लिहाज से बहुत अहम होता है। इस समय हल्की बारिश और बदलते मौसम के कारण सब्जियों और मुख्य फसलों की देखभाल सही तरीके से करनी चाहिए। बात करते हैं धान की फसल की, तो इसमें संकर धान की फसल में फूल आने, दूध भरने और दाने पकने की अवस्था में है, इसलिए खेत में नमी बनाए रखें। और दलहन और तिलहन की बात करते हैं तो इस महीने राई, सरसों, तीसी, अलसी और मटर की बुआई की तैयारी या अगेती बुआई की जाती है। गेहूं की अगेती किस्मों के लिए खेत की तैयारी और आलू की रोपाई का काम भी सितंबर के अंत में शुरू होता है। सितंबर माह में उगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं उसमें पत्तेदार सब्जियां में पालक और मेथी की बुआई की जा सकती है। मेथी को अंतराल पर बोएं ताकि बाजार में लगातार आपूर्ति बनी रहे।

0: और जड़ वाली सब्जियां में मूली, गाजर और चुकंदर की बुआई के लिए भी अनुकूल समय है।
1: कुछ अन्य सब्जियों की बात कर लें तो मटर, अगेती, फ्रेंच बीन्स, टमाटर, मिर्च, खीरा, बैंगन और कद्दू की रोपाई या बुआई की योजना बना सकते हैं। जल निकासी जरूरी है। सितंबर में बारिश के दौरान खेतों में पानी ना रुकने दें। पानी रुकने से पौधों में जड़ सलन और फंगस की समस्या बढ़ सकती है। कुछ उन्नत तकनीक की बात कर लेते हैं। सब्जियों की बेहतर पैदावार के लिए उठी हुई क्यारियां और मल्चिंग विधि का प्रयोग करें किसान भाइयों।
0: तो ग्रामीण भाइयों, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा से अब दीजिए राजनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।
1: और बाजार में हम हमेशा

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास न जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति मामले पर विपक्ष को घेरा। प्रधानमंत्री के फैसलों में कमी निकालने का लगाया आरोप। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रांची में बौद्ध महिला विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। राज्य में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। छात्रों पर दर्ज केस के खिलाफ भाजपा ने किया चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। सभी 24 जिलों में 4 दिनों तक होगा डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव। लोहरदगा के चिरी गांव पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत शराब का धंधा छोड़ आत्मनिर्भर बनी महिलाओं के स्वावलंबन को सराहा। और राज्य में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। रांची के मदन मोहन मंदिर और इस्कॉन देवालय समेत प्रदेश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को सीईओ बनाने और महिला सदस्य को शामिल करने का स्वागत किया है। कोडरमा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष द्वारा इस नियुक्ति पर सवाल उठाने को दिशाहीन बताया।
1: बरसों बाद 500 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद मंदिर बना है और उसको कैसे सुव्यवस्थित तरीके से जो हमारी सरकार है निश्चित रूप से ये प्रयास कर रही है कि बेहतर ढंग से इससे और आगे कैसे संचालित हो सके व्यवस्थित तरीके से कि इस मंदिर ट्रस्ट का निर्माण कराते हुए कि ये चले, इसके लिए नियुक्ति भी हुई है एयर मार्शल की और उसके साथ महिला सदस्य भी है तो निश्चित तौर पर ये जो सुविधाएं मिल रही थी उसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज रांची में वर्ल्ड बुद्धा फाउंडेशन के प्रस्तावित बौद्ध महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने इसे विश्व का अनोखा संस्थान बताया जहां 3 से 8 वर्ष की बच्चियों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। रांची में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उद्योगों की स्थापना के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी। श्री अठावले ने राज्य में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की।
2: जहाँ रिक्रूटमेंट हुई है पारदर्शिता से नहीं हुई है और इसीलिए उसको रद्द किया जाए, इसी तरह की मांग स्टूडेंट की थी, उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। इस आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, जो लोग अभी इतने साल से काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी अन्याय होना ठीक नहीं है। स्टूडेंट के मांग को ध्यान में रखते हुए इसीलिए राज्य सरकार ने नई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता

0: है।
1: प्रदेश भाजपा ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद अब सभी 24 जिलों में 4 दिनों तक उपायुक्त और एसपी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा।
2: छात्रों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उनको बंद करने के लिए 8 सितंबर को रांची, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, गढ़वा, 9 सितंबर को कोडरमा, साहेबगंज, बोकारो, पलामू, सिमडेगा, चाईबासा, 10 तारीख को सरायकेला, पाकुड़, धनबाद, गुमला, लातेहार, चतरा और 11 तारीख को रामगढ़, देवघर, लोहरदगा, खुट्टी, गोड्डा और जामताड़ा 2400 जिलों में 4 दिन तक लगातार हमारे कार्यकर्ता छात्रों पर जो गलत तरीके से एफआईआर दर्ज किए गए उसको वापस करने के लिए डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम।
1: प्रदेश भाजपा ने आज 6 प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों की आधिकारिक घोषणा की है। जारी सूची के अनुसार मनोज वाजपेयी महतो को ओबीसी मोर्चा, अर्जुन सिंह को किसान मोर्चा, रंजय भारती को अनुसूचित जाति और सन्नी टोप्पो को अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कमान सौंपी गई है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉ सीमा सिंह और अल्पसंख्यक मोर्चा के ताजदार आलम होंगे। लोहरदगा में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत महिलाओं के स्वावलंबन को देखने अमेरिका का लाइवलीहुड इंपैक्ट फंड प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। चिरी गांव में प्रतिनिधिमंडल की समांथा कार्टर और क्रिस्टीना ने लाभुकों से संवाद किया। महिलाओं ने बताया कि ब्याज मुक्त ऋण से उन्होंने शराब का धंधा छोड़ किराना और नाश्ते की दुकान जैसी सम्मानजनक आजीविका अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कम राजस्व संग्रह पर अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि निर्धारित 41% लक्ष्य के मुकाबले राज्य केवल 34% राजस्व ही जुटा पाया है। उन्होंने कर चोरी रोकने और अगली बैठक तक प्रदर्शन सुधारने की सख्त हिदायत दी है।
3: जहाँ 41% कलेक्शन होना चाहिए था वो लगभग 36 के आसपास है, तो मैंने सबको निर्देश दिया है कि जो कैलेंडर टारगेट हर 3 महीने में कितना खर्च करना है ये टारगेट आपको पूरा करना चाहिए। और दूसरा मैंने उनको ये कहा है कि भारत सरकार की नीतियों के कारण जो MMDR एक्ट में संशोधन किया है उससे लगभग 14,000 करोड़ रुपया कुल मिलाकर के 22,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
1: वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रांची पुलिस ने आज बरियातू स्थित जैप 1 ग्राउंड में पुलिस पदाधिकारियों और टाइगर मोबाइल के जवानों के लिए छोटे हथियारों का फायरिंग अभ्यास कराया। कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित इस नियमित प्रशिक्षण में आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई और सटीक निशानेबाजी पर विशेष जोर दिया गया। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड अंतर्गत छोटकी बैरगी जंगल में करीब 25 हाथियों के झुंड की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने 7 पंचायतों के लोगों को रात में बाहर न निकलने और सतर्क रहने की सलाह दी है। एलिफेंट ड्राइव टीम हाथियों पर लगातार नजर रख रही है। आस्था, अनुराग और कर्मयोग के साक्षात विग्रह भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव आज समूचे राज्य में अलौकिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रात 12 बजे होने वाले मुख्य जन्मोत्सव को लेकर राज्य भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: संध्या ढलते ही राज्य की धरा जय कन्हैया लाल की के भक्ति में जय घोष और भजनों के सुरों में सराबोर हो उठी है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और इस्कॉन देवालय को ताजे पुष्पों और सतरंगी विद्युत सज्जा से अलंकृत किया गया है, जहां श्रद्धालुओं की अनुपम छटा देखने को मिल रही है। बाबा नगरी देवघर, कोयलांचल धनबाद और संताल परगना के मंदिरों में भी उत्सव का उल्लास चरम पर है। रात ठीक 12 बजे कान्हा के

0: 18वें जन्म के शंखनाद के साथ ही महाआरती होगी और महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इधर रांची के मोरहाबादी और अल्बर्ट एक्का चौक पर मटकी फोड़ की पारंपरिक उमंग और रासलीला की सांस्कृतिक आभा देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राजवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मौसम विभाग के अनुसार राज्य में भारी बारिश से फिलहाल राहत है, लेकिन एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। आज से 7 सितंबर तक राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और वज्रपात की संभावना है। वहीं 8 सितंबर को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सिमडेगा के अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 21वीं मेजर ध्यानचंद जिला हॉकी चैंपियनशिप जारी है। महिला वर्ग के लीग राउंड के सभी 32 मैच पूरे होने के बाद 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इनमें सीओई सिमडेगा और सेंट जेवियर्स बरवाडी जैसी टीमें शामिल हैं। वहीं पुरुष वर्ग में अब तक 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति मामले पर विपक्ष को घेरा। प्रधानमंत्री के फैसलों में कमी निकालने का लगाया आरोप। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रांची में बौद्ध महिला विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। राज्य में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। छात्रों पर दर्ज केस के खिलाफ भाजपा ने किया चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। सभी 24 जिलों में 4 दिनों तक होगा डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव। लोहरदगा के चिरी गांव पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत शराब का धंधा छोड़ आत्मनिर्भर बनी महिलाओं के स्वावलंबन को सराहा। राज्य में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम। रांची के मदन मोहन मंदिर और इस्कॉन देवालय समेत प्रदेश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव अच्छी प्रकार संपन्न हो गया। इस वर्ष सावन में लगभग 47 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बासुकीनाथ का जलार्पण किया। करीब 20% यानी 1,07,000 श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शनम के माध्यम से बाबा के दर्शन किए। भक्तों ने मेले की प्रशासनिक व्यवस्था की भी सराहना की। भागलपुर से आए भक्त द्वारिका पांडे ने कहा,
2: झारखंड सरकार की व्यवस्था जो है बहुत बड़ी, जो ऐसा व्यवस्था इस साल पहला बार देखे रहे, जो पूरा चटाई बिछाया हुआ है।
1: बासुकीनाथ श्रावणी मेला धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक मेला भी सिद्ध हुआ। मेले में संताल परगना और झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों की भी सांस्कृतिक विरासतों और परंपराओं को एक माह तक प्रदर्शित किया। इनमें ओडिशा की सैंड आर्ट को भी प्रदर्शित किया। वहां की प्रसिद्ध युवा कलाकार विश्वनाथ जेना ने हर दिन बालू के ढेर पर शिव कथा पर आधारित देव पात्रों और प्रसंगों के विभिन्न स्वरूपों को उकेरा। जीना ने बताया कि
3: बनाने में हमको मिनिमम 6 से 7 घंटा लगता है। मैं शिव जी के ऊपर जितना रिलेटेड होते हैं, काली जी, दुर्गा मैया, गौरधनारीश्वर के ऊपर मैं बना चुका हूँ। नंदी जी महाराज, बासुकीनाथ देव का मंदिर भी बनाया था एक दिन। और यहाँ का जितना टूरिस्ट आते हैं, जितना भक्त आते हैं, ये सब काम देख के बहुत खुश होते हैं।
1: सैंड आर्ट और उसमें देव कथाओं पर उकेरे गए प्रसंगों को देखकर भक्त भी खूब आनंदित हुए। रांची से आए कामेश्वर साहू ने कहा कि
4: प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बाला का जो बना हुआ है शिव जी का प्रतिमा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है और हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देखकर।
1: मेले में संताल परगना के हस्तशिल्पों, महिलाओं द्वारा उत्पादित खाद्यान्न और अन्य उपयोगी वस्तुओं की बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाए गए। सरिता देवी कहती हैं कि

0: कारोबारी हैं। प्रभात कुमार बताते हैं कि
1: आज मेरा बिजनेस सही स्थिति पर है और सही तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं और आगे भी बैंक के द्वारा हमको हमेशा सपोर्ट मिलता है और नरेंद्र मोदी जी की जो अपना जो योजना है उसके तहत बहुत सारे फायदा मिले हैं।
0: दुमका जिले में संताली के लिए एक भाषा एक लिपि की अवधारणा को अपनाने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत केजी से पीजी तक संताली भाषा की पढ़ाई ओलची की लिपि में कराने की मांग की जा रही है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
2: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोहम्मद फखरुल हसन का प्यार भरा नमस्कार, साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है बहुत बहुत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम सुनवा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष फिल्मी गीत।

ब्लफ मास्टर फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, संगीत से सवारा था कल्याण जी आनंद जी ने।

सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से भी आपने गीत सुना। आवाज़ लता मंगेशकर की थी, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आप सुन रहे हैं भक्ति भाव से विभोर कुछ भक्ति गीत कार्यक्रम एक रंग के अंतर्गत। अगला गीत भी आई सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से। आवाजें मन्ना डे और साथियों की, शब्द रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की है और इसकी तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। आवाज़ें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की, शब्द रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की थी और इसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और यह है एक रंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म राधा का संगम से। आवाज़ अनुराधा पौडवाल की है, हसरत जयपुरी पुरी की शब्द रचना है और अनु मलिक का संगीत है।

भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव सभी पे बनी रहे, सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, कामयाब रहें। इसी कामना के साथ अब एक रंग कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम उड़ान। रोजगार से जुड़ी बातें में आज शीर्षक है मेडिकल के क्षेत्र में कैसे बनाएं कैरियर। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का है।
1: कार्यक्रम उड़ान में स्वागत है आप तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम आपसे बातें करेंगे मेडिकल क्षेत्र में कैसे बनाएं अपना करियर, इस विषय पर। श्रोताओं, हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं पास की है और जिनका उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है, तो वो सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है श्रोताओं कि उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन मंजिलें और भी हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहते हैं तो MBBS के अलावे बहुत से ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको करके आप इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो युवा छात्र हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र को बेहतरीन पेशा माना जाता है और डॉक्टर्स को प्रसिद्धि की नज़र से तो देखा ही जाता है। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ छात्र को मन चाही सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम आपको बता दें श्रोताओं कि नीट की परीक्षा ही डॉक्टर बनने का एकमात्र तरीका नहीं है। उससे भी अलग मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न तरह के कोर्स मौजूद हैं जिसे करके आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं।

अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन कोर्स कर उच्च शिक्षा के लिए परास्नातक डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोलॉजी, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियक, बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के कोर्स करके आप रोजगार के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है। इन कोर्सेज को करने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और समय समय पर सरकार की ओर से भी नौकरियां निकाली जाती हैं जिनमें भाग लेकर सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद की संस्था या दवा कंपनी भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनती होना होगा, साथ ही साथ आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। कुछ कॉलेज NEET के स्कोर के माध्यम से BSc नर्सिंग और दूसरे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश आयोजित करते हैं और कई अन्य पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हैं जिनमें छात्र प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, पैरामेडिकल विज्ञान पाठ्यक्रम नैदानिक प्रयोगशालाओं में नैदानिक उपकरणों, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और परीक्षणों की सहायता से विभिन्न चिकित्सा स्थितियों और बीमारियों के आपातकालीन चिकित्सा, उपचार, निदान और उपचार को प्रबंधित करने और संभालने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा से संबंध रखते हैं। भारत में पैरामेडिक्स की कमी हर समय देखी जाती है और ये शाखा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाली शाखाओं में से एक बनती है। भारत में MBBS के अलावा उच्च वेतन वाले करियर विकल्पों में से ये एक है। इसके अलावा अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम को अपनाकर रोजगार के अवसर ढूंढे जा सकते हैं। BSc नर्सिंग जैसा कार्यक्रम जो 4 साल का है, चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कोई भी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स या हेल्थ केयर में MBA जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपना करियर संवार सकता है। इन पाठ्यक्रमों में से स्नातक उपचार में योगदान नहीं देते हैं, लेकिन बड़े चिकित्सा संगठनों और अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया की देखरेख और प्रबंधन से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। वे आमतौर पर अस्पतालों में विभिन्न विभागों में संचार में बेहतर समन्वय और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा दूसरे चिकित्सा विज्ञान के कार्यक्रम हैं जैसे कि B Pharma यानी कि बैचलर इन फार्मेसी। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है जो कई तरह की बीमारियों के उपचार और इलाज के लिए दवाओं और दवाओं के अनुसंधान और विकास पर जोर देता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग इन दिनों तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और इनमें कोई भी आकर्षक करियर बना सकता है। B Pharma स्नातक एक विशेष स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए M Pharma कर सकते हैं। इसके अलावा 6 साल का Pharm D पाठ्यक्रम अब पेश किया जाता है और इसे एक पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा कोई मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री का विकल्प भी चुन सकता है और

0: पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग तकनीकों के कार्यान्वयन और अनुप्रयोग के साथ निदान और चिकित्सा के लिए जैविक और चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए उपकरण डिजाइन करने की अवधारणाओं पर आधारित है। पारंपरिक बीए, एमए, बीएससी, एमएससी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अपने स्नातक या परास्नातक में मनोविज्ञान को भी प्रमुख विषय के रूप में चुन सकते हैं। योग्यता प्राप्त करके नैदानिक मनोविज्ञान में 2 वर्षीय एमफिल एक योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मांग हर दिन बढ़ रही है, तो एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे पाठ्यक्रम और करियर विकल्प हैं जिन्हें छात्र चुन सकते हैं। इन दिनों कॉरपोरेट क्षेत्र, स्कूलों और संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यकता है। जीवन शैली प्रबंधन, खेल प्रबंधन, वृद्धावस्था देखभाल और स्कूलों में बच्चे और कल्याण प्रबंधन जैसे विकल्प कुछ उत्कृष्ट करियर विकल्प हैं। स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपचार और दवाओं, अनुसंधान और नई चिकित्सा तकनीक का विकास संबंध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सबसे दिलचस्प करियर विकल्प हैं। साथ ही इसमें चुनौतियां भी हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार एमबीबीएस नहीं करने के इच्छुक हैं या योग्य नहीं हैं, उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं जिन्हें विस्तार से सूचीबद्ध कर उचित मार्गदर्शन और समर्पण के साथ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा कई मेडिकल पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि संबंध चिकित्सा विज्ञान, पैरा मेडिकल विज्ञान और पसंद जो भी शाखाएं पसंद हैं उनमें कुछ अच्छे विकल्प हैं जिन्हें 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ इच्छुक उम्मीदवार चुन सकते हैं। इसके अलावा BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS और BVSC और AH पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है नीट के माध्यम से, और इन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश लिया जा सकता है। कुछ कॉलेज नीट के स्कोर के माध्यम से प्रवेश ले लेते हैं, और कुछ ऐसे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी हैं जिनमें प्रवेश नीट के माध्यम से नहीं, एडमिशन नहीं होता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की जानकारी आप लेते रहें और इसमें अपनी योग्यता दर्शाएं, और इन पाठ्यक्रमों में अगर आपको प्रवेश मिल जाता है तो आपका मेडिकल का जो करियर है, मेडिकल क्षेत्र में जो रोजगार करने की इच्छा है, उत्कंठा है, आकांक्षा है, इन कोर्सेज को करने के बाद आपकी अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो श्रोताओं, कई तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें प्रवेश लेकर आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हमने आपसे बातें की एमबीबीएस के अलावे मेडिकल के क्षेत्र में करियर के कई अवसर उपलब्ध हैं जिनमें प्रवेश लेकर छात्र अपना रोजगार, अपना करियर बना सकते हैं इस विषय पर। और इसके साथ ही हमें दीजिए कार्यक्रम उड़ान से इजाजत। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उड़ान, शीर्षक था मेडिकल के क्षेत्र में कैसे बनाएं करियर। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का था।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में।

राधा का संगम फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार और साथियों की। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सवारा था अन्नू मलिक ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की अगली पेशकश है संघर्ष फिल्म से, आवाज़ सोनू निगम की है। गीतकार हैं समीर और संगीतकार जतिन ललित।

खून भरी मांग फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी आशा भोसले और साथियों की, शब्द रचना इंदिवर की थी और तर्ज राजेश रोशन की। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आइए सुनते हैं साजन फिल्म से। आवाज़ एसपी बालासुब्रमण्यम की है, गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

साजन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ SP बाला सुब्रमण्यम की थी। गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। इसी नगमे के साथ ही अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है।

आकाशवाणी के ये डाल्टनगंज केंद्र FM 103 MHz पर पेश खिदमत है कव्वाली का प्रोग्राम महफिल। आज के फनकार हैं नुसरत फ़तेह अली खां, मुजाहिद मुबारक अली खां और हमनवा। कलाम शायर हैं अनवर फरुखाबादी।

0: ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
6: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
7: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
6: And recovery efforts in the country.
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
9: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए।

0: एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
2: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
3: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, CCTV सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
4: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 9 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यूर से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय, वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द

0: बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। रियासत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाई जारी है। मुल्क भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का 3 रोजा फोरम नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में ब्रिक्स रुकन ममालिक और शराकतदार मुल्कों के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सरबराहान और सीनियर अदालती हुक्काम शरीक हैं। फोरम के तहत भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, मुत्तहदा अरब इमारात, जुनूबी अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान समेत कई मुल्कों के अदालती वफूद के सरबराहान के साथ दो तरफा मीटिंगें की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: फोरम के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान अदालती तआवुन को मजबूत बनाने, अदालतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तेज रफ्तार अदालती अमल के जरिए अवाम के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम करने और मुख्तलिफ ममालिक के बेहतरीन कानूनी तरीकों पर बातचीत की गई। 3 रोजा इस फोरम ने मुख्तलिफ ममालिक की अदलिया को इंसाफ की फराहमी, बैनुल अक्वामी तनाज़ात के हल, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की से मुतालिक मौजूदा मसाइल पर तबादला ख्याल का मौका फराहम किया। इसके अलावा इस फोरम के जरिए मुख्तलिफ ममालिक के अदलिया के सरबराहान ने अपने अपने ख्यालात और तजुर्बात का भी एक दूसरे से इश्तराक किया। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी हुकूमत के इटली की तारीख में सबसे तवील अरसे तक कायम रहने वाली हुकूमत बनने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा मेलोनी ने एतमाद जाहिर किया कि भारत और इटली बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे और भारत मशरिक़ वुस्ता यूरोपीय इक़्तिसादी कॉरिडोर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मोहतरमा मेलोनी का यह रद्द अमल वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से उन्हें इटली की दूसरी जंग अजीम के बाद की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाली वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद देने के बाद सामने आया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि यह कामयाबी इतालवी अवाम के उनकी क़्यादत पर एतमाद और भरोसे को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा मेलोनी की दोस्ती ने भारत और इटली के दरमियान खसूसी स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने में भी अहम रोल अदा किया है। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के अवाम की खातिर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए करीबी तआवुन जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की और आने वाले बरसों में मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी की मुसलसल कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजारत खारजा ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में आए अचानक सैलाब के बाद से अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं।
2: 275 भारतीय नागरिक लापता हैं। इसमें 275 में 49 वो लोग हैं जो चीन में भी उनके लिस्ट पे मिसिंग है, जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पर, तो कुल मिलाकर 275 है उसमें, लेकिन 49 लोग हैं जो चीन की तरफ भी इसी में है।
0: उन्होंने कहा कि भारत नेपाली हुकूमत के करीबी राबते में है और भारत इस बारे में नेपाली हुक्काम की कोशिशों को कद्र की निगाह से देखता है। तर्जमान ने मजीद कहा कि वजारत खारजा बचाए गए भारतीय शहरियों के नाम लगातार जारी कर रही है। जनाब जायसवाल ने बताया कि 1907 भारतीय शहरी बहिफाजत नेपाल से चीन पहुंच गए हैं। जनाब जायसवाल के मुताबिक चीन के तिब्बती खुद मुख्तार खित्ते में कोई भारतीय सैयाह फंसा हुआ नहीं है। सैलाब से मुतासरा नेपाल को भारत की इमदाद के बारे में बोलते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत जरूरत के मुताबिक नेपाल की हुकूमत को इमदाद फराहम करता रहेगा। नेपाल के वजीर खारजा के बयान पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली सभी के लिए चैलेंज है और इस बारे में कार्रवाई मुश्तरका जिम्मेदारियों और मुतालिका सलाहियतों के नजरिए पर मबनी होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर के यूक्रेन दौरे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तर्जमान ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने कीव का दौरा किया और यूक्रेन के अपने हम मनसब आंद्रेई सिबिहा और सदर विलोदमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बातचीत के दौरान वज़ीर ख़ारिजा ने लगातार भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि यह जंग का दौर नहीं है और मैदान जंग से मसले का हल नहीं निकलेगा। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें चितवन

0: में हुई हैं, जहां 359 अफराद की मौत हो गई है, जबकि मशरकी नवलपरासी जिले में 218 अमवात हुई हैं। इस दौरान मजीद 2 अफराद की मौत कठमंडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान हो गई। भारत ने सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी इमदादी और बचाव कार्रवाइयों में मदद के लिए नेपाल को मजीद 2 तैयारों के जरिए इमदादी सामान भेजा है। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों C-130 तैयारे मजमुई तौर पर 21.5 टन इमदादी सामान लेकर कठमंडू पहुँच गए हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल तश्वीशनाक बनी हुई है। तमाम बड़ी नदियां जिसमें गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी में तुगयानी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: पटना, भोजपुर, भागलपुर और मगरबी चंपारण समेत शुमाली, वस्ती और जुनूबी बिहार के 16 जिले सैलाब की जद में हैं। साहिली और नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल होने से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुतासिरा इलाकों में कुदरती आफात से निपटने की अथॉरिटी की जानिब से जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए NDRF की 9 और SDRF की 27 टीमें तैनात की गयी है। मुतासिरा खानदानों में राशन भी तकसीम किया जा रहा है, जबकि महकमे सेहत की टीमें मुतासिरा इलाकों में सरगर्म हैं। इस दौरान वजीर आला सम्राट चौधरी और नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी, जो कि आबी वसायल के भी वजीर हैं, ने आज सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया। वजीर आला ने पटना में हुक्काम के साथ एक आला सतह की जायजा मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सैलाब से बचाव के तरीके के साथ साथ राहत और इमदादी कामों में तेजी लाने की हिदायत दी गई। पटना से सविता पारीक की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले सैलाब का इताब झेल रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी समेत रियासत के 26 जिले सैलाब से मुतासिर हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर सैलाब से मुतासिर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक 3.5 लाख से ज्यादा की आबादी के सैलाब से मुतासिर होने के बावजूद राहत और बचाव निजाम के सरगर्म अमल होने की बदौलत सभी मुतासिर अफराद में राहती किट्स और खुराक के पैकेट्स तकसीम किए गए। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा अफराद को सैलाब से बचाव के लिए बनाए गए मकामात समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के कई मकामात पर कल शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: भगवान कृष्ण की यौम पैदाइश जन्माष्टमी आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जन्माष्टमी के दिन अकीदतमंद व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। कृष्ण से जुड़ी मिठाइयां और खाने पीने की दूसरी चीजें भी भगवान कृष्ण को पेश की जाती हैं। इस मौके पर दिन भर और देर रात तक मजहबी गीत बजाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशोखरोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल और गणपतियार मंदिर से लाल चौक तक जुलूस निकाला। मर्दों, खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल अकीदतमंदों ने मजहबी नारे लगाते हुए और भजन गाते हुए तकरीबात में शिरकत की। बेल्जियम के वजीर आजम बाटीवेयर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ बहरी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए इकदाम करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल फरवरी में समंदर और बंदरगाहों के शोबे से वाबस्ता बेल्जियम के एक आला सतही वफद को भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। इस शोबे में ठोस कार्रवाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वो आज भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती समझौते पर मुंबई में मनदा भारत बेल्जियम आला सतही मुजाकरात से खिताब कर रहे थे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज बेल्जियम के वजीर आजम बाटीवेयर से मुलाकात की और शहरी हवाबाजी के शोबे में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने रास्त फिजाई कनेक्टिविटी, आला कदर वाले फार्मास्यूटिकल शोबे के लिए फजाई कार्गो और एडवांस्ड एयर मोबिलिटी जैसे शोबों में इश्तराक पर भी बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेटेलाइट EOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F-17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाब लॉन्च से भारत के खलाई शोबे की शानदार कारकर्दगी, इख्तिरा और बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म ने इसे इसरो की गिरां कदर कामयाबी और मुल्क के लिए काबिल

वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुल्क के आला तालीमी इदारों में एक मुमताज़ नाम है और कॉमर्स, माशियात और मैनेजमेंट के शोबों में तालीम और तहकीक का अहम मरकज़ है। अर्जियाती साइंसेज के मरकजी वजीर मुमलिका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत तलबा पर मरकूज प्रोग्रामों के जरिए नौजवानों को बाख्तियार बनाने, उनमें बुनियादी साइंसी सोच पैदा करने और नौजवान जहनों को अर्थ सिस्टम साइंसेज मुताला कराने की तरगीब देने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रियासतों को अदालती अफसरान की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल को अपने मुतल्लिका सर्विस कवानीन में तरमीम करके रिटायरमेंट की उम्र बाज़ाबता तौर पर 62 साल करने की हिदायत दी है। अदालत आलिया ने यह भी वाजे किया है कि 60 साल की उम्र को पहुंचने वाले अदालती अफसरान को 62 साल तक खिदमात जारी रखने की इजाज़त देने से पहले मुतल्लिका हाईकोर्ट की जानिब से उनकी कारकर्दगी और मजूनियत का जायजा लिया जाएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान के जियारत और सराब जिलों में पाकिस्तानी हिफाजती फोर्सेज पर हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हमलों में 25 फौजी अहलकार मारे गए और दीगर कई जख्मी हुए। BLA के दावे ऐसे वक्त सामने आए हैं जब पूरे बलूचिस्तान में मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से हमलों में फिलहाल इजाफा हो गया है। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में मुल्क गिर कार्रवाई की और ऑपरेशन चक्र 6 के तहत 3 अफराद को हिरासत में लिया। मुल्क में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में मुसलसल इजाफे के मसले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए CBI ने मुल्क की 20 रियासतों में 89 मकामात पर तलाशी कार्रवाई शुरू की। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के अशदार गली इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। श्रीनगर में वाकई चिनार कॉर्प्स के एक तर्जमान ने बताया कि भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दका खुफिया इत्तला की बुनियाद पर यह कार्रवाई शुरू की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की मर्दों की डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने डेनमार्क के किम स्ट्रप और एंडर्स स्क्रिपियो रामोसेसन को 21-13, 16-21 और 21-18 से हराकर मुसलसल 4थी मरतबा चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यह मुकाबला आज शाम शेंजेन में हुआ। इससे कबल भारतीय जोड़ी ने गुज़िश्ता शब फ्रांस के ट्रोमा जूनियर पपाओ और क्रिस्टो पपाओ को 21-17, 22-24 और 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की थी। इससे एक रोज कबल भारत की खवातीन के सिंगल्स में भी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई थी जब तन्वी शर्मा को जापान की टोमोका मियाज़की ने 21-17, 18, 21 और 21-16 से हरा दिया था। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का 3 रोजा फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में इंसाफ की फराहमी और मौजूदा दौर के अहम मसाइल से मुतअल्लिक मामलात पर गौरखोज किया जा रहा है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल में आने वाले सैलाब में अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है, ताहम 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। रियासत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुल्क भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज एक ऐसा कलाकार जिसने कई फिल्मों में बैकग्राउंड संगीत दिया, कई फिल्मों में गाया और बहुत सी फिल्मों के संगीतकार रहे। 1990 और 2000 के दशक के एक लोकप्रिय कलाकार का जिक्र है आज। आइए सबसे पहले रूना लैला के साथ इनका गाया फिल्म अग्निपथ का ये गीत आपको सुनवाएं।

इस कलाकार ने फिल्म सैलाब में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। आइए इस गीत को भी सुन लें।

आज हम बात करने जा रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हिंदी फिल्म संगीत का जाना पहचाना नाम आदेश श्रीवास्तव की।

शाहरुख खान रानी मुखर्जी अभिनीत 2003 की चलते चलते फिल्म में संगीत जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव का था। फिल्म संसार में कटनी मध्य प्रदेश से आए आदेश का जन्म 4 सितंबर 1964 को हुआ था। आदेश ने शुरुआत में आरडी बर्मन, राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ एक ड्रमर की हैसियत से काम किया, फिर एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। राजनीति फिल्म का उनका संगीतबद्ध ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज में ये गाना।

एक सफल संगीतकार रहे हैं आदेश श्रीवास्तव। अपने संगीत के करियर में आपने 100 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया है। फिल्म मेजर साहब का है ये गाना।

आदेश श्रीवास्तव का विवाह जतिन ललित और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की अभिनेत्री बहन विजयता पंडित से हुआ। बात 1993 की है, जब आदेश श्रीवास्तव को एक बड़ा ब्रेक फिल्म कन्यादान के लिए मिला। लता मंगेशकर ने इनका संगीतबद्ध गीत उदित नारायण के साथ गाया था, जो लोकप्रिय हुआ, पर यह फिल्म और इसके बाकी के नगमे उतने नहीं चले। फिलहाल ओ सजना दिलबर कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि कन्यादान फिल्म के गीत बाकी के नहीं चले या उतने लोकप्रिय नहीं हुए, ऐसा ही फिल्म जाने तमन्ना के साथ भी हुआ। इसके गीत भी उस तरह से नहीं लोकप्रिय हुए जैसा उनको होना था, जैसी उम्मीद आदेश को थी। लेकिन आदेश ने इन असफलताओं से हार नहीं मानी। बाउंस बैक करते हुए इन्होंने जिस फिल्म में अपनी पुनः वापसी की उसकी चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 2004 की फिल्म दीवार के गीत के साथ आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।

1994 की बात है। फिल्म आई आओ प्यार करें। आदेश श्रीवास्तव अपने श्रोता दर्शकों के बीच मधुर कर्णप्रिय संगीत के साथ पहुंच

सलमा पे दिल आ गया। ये फिल्म और शस्त्र के गीत ने दर्शकों को आकर्षित तो किया, लेकिन शस्त्र के इस गीत ने विशेष ध्यान खींचा। क्या अदा, क्या जलवे तेरे।

आदेश श्रीवास्तव ने कई हिट गाने गाए, जैसे सोना सोना, शावा शावा, गुस्ताखियां, फिर कुंवारा के गीतों के माध्यम से फिर एक बार सफलतापूर्वक पहुंचा आदेश का संगीत, जिसे दर्शकों ने सराहा। ये गाना है फिल्म आंखें का, आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाज में।

0: जैसा कि हम जानते हैं, एक गायक संगीतकार के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी आदेश श्रीवास्तव ने अपनी पहचान बनाई। 1992 की अंगार में इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था और 1991 की फिल्म प्रहार में आपने एक रोल अदा किया था, छोटा सा वायलिन वादक बने थे आप। सन 2016 की मराठी फिल्म फैमिली कथा में भी आपने काम किया। वैसे तो इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार का अपने साथियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रहा ही होगा, पर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ आदेश श्रीवास्तव के संबंध काफी अच्छे रहे। आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का ये गाना।
1: जी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ।

आदि श्रीवास्तव की आखिरी फिल्म थी जिसमें आपने म्यूजिक स्कोर किया था वेलकम बैक, जो इनके जन्मदिन 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी और 5 सितंबर को कैंसर ने आदेश श्रीवास्तव को संगीत प्रेमियों से यकायक छीन लिया। ये क्षति अपूर्णीय है, लेकिन उनका संगीत और उनकी शख्सियत श्रोता, दर्शकों और करीबियों के बीच एक याद बनकर हमेशा रहेगी।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई
5: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार। साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

मुगले आज़म फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और साथियों की, संगीत से सवारा था नौशाद ने। अगला गीत आइए सुनते हैं, अमर प्रेम फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज आर डी वर्मन की।

अमर प्रेम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ लता मंगेशकर की थी, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और इसकी धुन बनाई थी आर डी वर्मन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कर्मा फिल्म से भी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह की। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। अगला गीत आइए सुनते हैं परदेसी बाबू फिल्म से। आवाज़ उदित नारायण की है, गीत और संगीत आनंद राज आनंद का है।

क्रांति फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों की। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की अगली पेशकश है देश परदेश फिल्म से। आवाज़ किशोर कुमार की है, अमित खन्ना के बोल हैं और राजेश रोशन का संगीत।

मेरा साया फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ लता मंगेशकर की थी, नगमा निगार थे राजा मेहंदी अली ख़ान और मौसीकार मदन मोहन। अगला गीत आइए सुनते हैं कर्ज फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत।

आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म बॉर्डर से। आवाज़ रूप कुमार राठौड़ की है, शब्द रचना जावेद।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में

सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल। श्री कृष्ण जन्म स्थान से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं श्री युत श्री कृष्ण और श्री देश दीपक मिश्रा। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। आइए सजीव प्रसारण के लिए मथुरा चलते हैं।
1: वंदे वंदे
2: कृष्ण की लीला स्थली ब्रज धरा धाम को शत शत नमन वंदन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पावन पवित्र मोक्षदायिनी मथुरा नगरी के जगत विख्यात श्री द्वारिकाधीश मंदिर से मैं डॉक्टर मीनू खरे अपने साथी कमेंटेटर्स डॉक्टर नृत्य गोपाल और कृष्ण जन्म स्थान से श्रीयुत श्री कृष्ण व देश दीपक मिश्रा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, अशेष मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। तीनों लोकों से न्यारी मथुरापुरी में आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्म उत्सव। इस अवसर पर मथुरा नगरी कुछ यूं सजी है मानो कोई नववधु अपने प्रियतम का स्वागत करने जा रही हो। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर करती हुई ये वही नगरी है जिसके स्थापना भगवान राम के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न ने आततायी लवणासुर के वध के पश्चात किया था और कालांतर में द्वापर युग में इसी नगरी को चुना। भगवान श्री कृष्ण ने आततायी कंस के नाश और सत्य मूल्यों की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज के दिन सभी को प्रतीक्षा आगत के स्वागत की अजन्मे के जन्म की। कृष्ण का जन्म इस संसार का सुंदरतम क्षण है। मेरो मन आनंद भयो ब्रज राज ही याचन आयो अपने अपने मन की मतो कही सब परिवार पठायो। अधर्म के नाश हेतु साक्षात परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप वासुदेव जनार्दन रसेश्वर सर्वेश्वर ब्रिजेश्वर योगेश्वर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण से इस धरा को धन्य किया। आज उसी दिव्य और अलौकिक घटना की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति के साक्षी बनने को उत्सुक आज यहाँ उपस्थित हर जन हर भक्तगण कण कण से प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। यशोदा नंदन नंद दुलारे कन्हैया के आवन की कड़ी जो है महोत्सव चारों ओर है। परमानंद आज यहाँ साक्षात बरसता हुआ उल्लास और उमंग में सराबोर श्रद्धा का सागर आज भक्तों के मन में उमड़ता हुआ। सभी कंठों से राधे कृष्ण की वाणी गुंजायमान होती हुई आज की रात याद दिलाती है द्वापर युग की उस विलक्षण और अलौकिक घटना की जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र सूर्य नारायण सिंह राशि में और चंद्र वृष राशि में अवस्थित थे तभी कान्हा ने जन्म लेकर इस धरा को धन्य किया। यूं तो आज श्री द्वारिकाधीश मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं ऋतुराज के दर्शन के लिए, परंतु हर किसी की प्रतीक्षा मध्य रात्रि की जब कान्हा प्रतीकात्मक रूप से एक बार पुनः प्रकट होंगे, एक बार पुनः ब्रज की धरा धन्य होगी कन्हैया के अवतरण से। कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन। श्री यमुना महारानी के विश्राम घाट और अस्कुंडा घाट के बीच बसे श्री द्वारिकाधीश मंदिर में आयोजित कान्हा के जन्म का ये उत्सव अद्भुत विलक्षण और अलौकिक प्रतीत होता है। रंगीन प्रकाश में नहाया हुआ ये प्रांगण मानो किसी और दुनिया में ले जाता प्रतीत होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर मथुरा नगरी ही मात्र ऐसा स्थान है जहां ब्रह्म और शक्ति एक साथ प्रकट हुए। गीता के पुरोधा लीलाधारी कृष्ण और अष्टभुजा मां योग माया की प्राकट्य भूमि होने के कारण आज इसका महत्व वैकुंठ से भी अधिक है। ब्रज की महिमा को कहे को बरनई ब्रज धाम, जहां बसत हर सांस में श्री राधे घनश्याम। और अब आगे का हाल आंखों देखा हाल सुनाने के लिए डॉक्टर नृत्य गोपाल।
3: धन्यवाद डॉक्टर मीनू खरे। नमस्कार, मैं नृत्य गोपाल राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर में।

0: विग्रह स्थल के पट बंद हैं और बहुत सुंदर सा पीत वर्णीय ये जो पर्दा आया हुआ है जिसमें झिलमिल सितारे लगे यहाँ पर वांछनीय है वही इसमें भीतर है। सेवायतजन अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ठीक यहाँ पर इतने सुंदर हल्दी के थापे रखे गए हैं और सेवायतजन जिस तरीके से जैसे इधर उधर अपने कार्यों में तल्लीन हैं, वह अद्भुत है, देखने योग्य है। और पुष्टि मार्ग में एक विशेष जो परंपरा है जिस परंपरा को अपरस सेवा कहा जाता है, इसके तहत वे सभी किसी बाहर के व्यक्ति से स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं और अंदर श्री विग्रह और श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा में एक एक पल को लगा देना चाहते हैं। और आज हमने देखा कि द्वारकाधीश मंदिर के
1: जगह जगह उन्हें कृष्ण की लीलाएं दिखती हैं, कटआउट लगे हैं, झांकियां सजी हैं, ध्वनि और संगीत के प्रभाव से वो उन्हें आकर्षित ही नहीं कर रही हैं, मोह रही हैं। माखन चोरी है, रासलीला, नाग नथैया, कृष्ण गोचारण जैसे तमाम प्रसंग हैं जो कि वहां पर अंकित हैं। और ये सब कुछ दिव्य है। 11 बजे से यहां पर पूजन जो विशेष पूजन है वो चल चुका है। 1008 सहस्त्रार्चन से करते हैं, पुष्प कमलों को चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद नवग्रह का पूजन हुआ और सहस्त्रार्चन चल रहा है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं सहस्त्रार्चन के साथ साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह भी अनवरत हमारे बाईं तरफ से निकलता है और दाहिनी तरफ से चला जा रहा है। ये जो दिव्य शोभा है, ये जो अद्भुत वातावरण है, इसे शब्दों में व्यक्त करना नितांत असंभव, लेकिन फिर भी मैं श्रीयुक्त श्री कृष्ण जी को ये माइक्रोफोन देता हूँ आगे का विवरण देने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद देशदेव दीपक जी। एक बार पुनः श्री कृष्ण स्थान से स्वीकार कीजिए श्री कृष्ण का सादर प्रणाम और आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज इस समय यहाँ भागवत भवन में जहाँ ठाकुर जी अपनी आलादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और इस समय भक्तों का आने का सिलसिला एकदम अचानक से बढ़ गया है। बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उल्लास से, उमंग के साथ राधे राधे का जय घोष करते हुए भागवत भवन की ओर बढ़ते चले आ रहे और यहाँ पर उनकी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि देश के सुदूर प्रांतों से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। और वर्ष पर्यंत उनके मन में बस एक ही भावना रहती है कि कब वो अद्भुत पलाएं, जब वो भगवान के प्राकट्य उत्सव का अपनी लाला के आगमन की प्रतीक्षा के लिए उनके यहाँ पर भागवत भवन में अपने प्रभु के दर्शन करने आए। जब अजन्मे का जन्म होता है, पालनहार प्रकट होते हैं, उस समय भागवत भवन में रहना अपने आप किसी पुण्यों के संचित लाभ से प्राप्त करने से कभी भी कम नहीं होता है। और इस समय जो भक्त आ रहे हैं, जैसे ही भगवान के सामने आते हैं, हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री राधे का जय घोष करते हैं। और यहाँ पर भगवान जैसा नाम है कृष्ण, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार जो उनकी ओर देख लेता है, बस उनका होकर रह जाता है, पांव ठिठक जाते हैं, आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। लेकिन जो सेवायत है, सुरक्षा प्रहरी है, बड़े ही अनुनय विनय के साथ, विनम्रता के साथ उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है, उन्हें अपने स्थान पर रुकने भी नहीं देता है। और न केवल भागवत भवन, अगर मैं बात करूं श्री का जन्म स्थान में, यहाँ पर मुख्यतः 3 मंदिर और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ठाकुर केशव जी का मंदिर है भागवत भवन के अलावा, और वो गर्भगृह क्रूर कंस के कारागार का वह भाग जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। और उस कारागार को आज इतना सुंदर ढंग से सजाया गया है, बिल्कुल कारागार का दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। और कारागार के प्रवेश द्वार के पास योग माया मंदिर है, जहाँ पर आज योग माया ने एक विशेष स्वर्ण और रत्नों जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है। और उस कारागार में जहाँ पर भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, धन कंस का कारागार, हर ने लिया जहाँ अवतार, ये बंदी वसुदेव देव की स्तुत करते उन देव देव की। और यहाँ पर आज भागवत भवन में इस समय भजन गाया जा रहा है, तमाम श्रद्धालु तालियां बजा बजा कर मंजीरे की धुन में, शंख के साथ में, जान मंजीरे के साथ में भजन गा रहे हैं। और यहाँ आज बड़े सवेरे मंगल आरती हुई शहनाई नगाड़ों के साथ, और उसके बाद सुबह 8 बजे से पंचामृत अभिषेक किया गया ठाकुर जी का और पवित्र श्लोकों का पाठ किया गया। और करीब 8 बजे के आसपास पुष्पार्चन हुआ और इस बार पुष्पार्चन में गौ रक्षा के साथ देश रक्षा का संकल्प दिया गया। इसके बाद मंगल

0: दर्शन वेद मंत्रों के मध्य युगल सरकार के शिष्यों में पुष्पांजलि यहाँ पर की गई। उसके आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर गणेश पूजन और नवग्रह पूजन के साथ यह पूरा जन्मोत्सव कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ है। और भागवत भवन के ठीक सामने जो यहाँ पर एक लीला मंच बना हुआ, आज वहाँ पर प्रयोजन लीला आयोजित की जा रही है कि भगवान ने किस कारण से यहाँ पर अवतार लिया था, उसका यहाँ पर आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित है। और जो सामान्य दिनों में यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है जहाँ पर भगवान कृष्ण सारथी की भूमिका में अर्जुन व गीता को उपदेश दे रहे हैं, आज वहाँ से निकासी है। और जो सामान्यता जो दूसरा दरवाजा होता है प्रवेश द्वार, वहाँ से प्रवेश ले रहे हैं। और साथ साथ इस पूरे मथुरा नगरी को बहुत ही आकर्षक ढंग से रंग बिरंगी विद्युत झालों से, रंग बिरंगी पताकाओं से, और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कहीं माखन चोरी की लीला है, कहीं गाल ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी कर रहे हैं, उनसे जगह जगह सजाया गया है और अनेक सांस्कृतिक मंच बनाए गए। उन सांस्कृतिक मंचों में यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और जैसे द्वापर में जब भागवत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो स्थितियां बनी थी, आज वही स्थिति यहाँ बन रही है। आज बारिश भी हुई है, यहाँ पर बिजली भी चमकी है, काली अंधेरी रात भी है, लेकिन उस समय गहन अंधकार था, आज मथुरा नगरी का कण कण प्रकाशवान है। ऐसा प्रदृश्य, शायद अद्भुत दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है और पूरी मथुरा नगरी पे एक बड़े मेले जैसा आयोजन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और जो कान्हा की नगरी है तो कोई भी श्रद्धालु भूखा कैसे रखता है। जगह जगह पर यहाँ पर भंडारे लगाए गए हैं जहाँ पर विभिन्न तरह के पकवान बड़े अनुनय विनय के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे हैं। उनसे विनती की जा रही है, हे लाला प्रसाद को ले लो। और जैसे ही यहाँ पर लोग भागवत भवन की ओर प्रवेश करते हैं, वे मंदिरों की ओर जाते हैं, तो देखते हैं कि हर मंदिर, हर मठ, हर घर में आज कान्हा की विशेष झांकी सजाई गई है। आज कान्हा का जन्म होगा और उस जन्म में पूरा ब्रजमंडल ही नहीं, जहाँ जहाँ भी यहाँ पर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे सभी अपने लाला के प्राकट्योत्सव पर बड़े आनंद से, बड़े उत्साह के साथ लाला का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस समय श्री द्वारकाधीश मंदिर में क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है, आइए और दृश्यों के लिए चलते हैं डॉक्टर मीनू खरे के पास।
1: आप सभी को एक बार पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाइयां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये रात्रि मोह रात्रि कही जाती है। कान्हा के रूप ने मोह लिया इस ब्रह्मांड में, दीप मालाएं ऐसे जगाती है। और देखिए राजा धीराज की जय बोली जा रही है, क्योंकि द्वारिकाधीश का ये मंदिर, इसका नाम श्री द्वारिकाधीश मंदिर यूं पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका के स्वामी हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इस मंदिर के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल था, जिसे हरिग्रह कहा जाता था। और आज इसी हरिग्रह में हरि के चरणों में बैठकर आंखों देखा हाल जन्मोत्सव का आप तक पहुंचाने का ये सौभाग्य आकाशवाणी की तरंगों का और उसकी पूरी टीम का। ब्रज की रज जाको मिल गई, बाकी चाह न शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा की गुंजार होते हुए ध्वनि एक मंत्र जैसा सभी भक्ति भावना में लीन। चारों ओर भक्तजन अब उत्सुकता बढ़ती हुई। श्री यमुना जी के तट पर बसे द्वारिकाधीश मंदिर का सौंदर्य आज अनुपम छटा बिखेर रहा है। असंख्य रंग बिरंगे पुष्पों तोरणों, रंग बिरंगी झालरों, कुमकुमों, बंधन वारों से सजे स्तंभ द्वार और झरोके मानो पुष्प बगिया के स्वर्गिक द्वार हो। इस क्षण का सौंदर्य शब्दों से परे है, मानो शब्द भी प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए हो। तीतर पाखी बादलों की झूमती हुई छटा और बयार की इटलाती लहरियां, और आज झूमती हुई लहराती हुई बादलों की ये घटाएं और बारिश अनायास ही याद दिला देता है वो लोकगीत। और देखिए एक बार पुनः राजाधिराज की जय। भादो मास रैन अंधियारी, जन्मे कृष्ण मुरारी ना। आज प्रकृति स्वयं बाहें फैलाकर मानो कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। वातावरण में आध्यात्मिकता है, दिव्यता है। उस अलौकिक पल की आहट आज हर बीतते पल में मानो उत्तेजना, उत्सुकता और अधीरता उत्पन्न करती प्रतीत होती है। अजन्मा आज जन्म लेगा, अनंत अपरिमेय आज समा जाएगा माँ की गोद में। जग के अश्रु पोंछने वाले का शिशु क्रंदन सुनकर आज हर श्रद्धालु की आंखों में होंगे अपरिमित आनंद के अश्रु। जग का पालनहार आज स्वयं पालने में होगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई कछु गावे। मध्य रात्रि का घना अंधकार है, लेकिन गोकुल में उजियारा फूटने ही वाला है। श्री यमुना महारानी भी अपनी लहरों में नेह के मोती बरसाती प्रतीत होती हैं। चारों ओर उल्लास, आनंद और भक्ति का अद्भुत समागम आज यहाँ चारों ओर व्याप्त दिखता है। यमुना महारानी अपने अद्भुत श्रृंगार में सजी हैं। उनकी लहरों पर चांदनी का रेशमी आभूषण मानो झिलमिला रहा है। लहरों की तरंगे वीणा की झंकार जैसी प्रतीत होती है। आज वे स्वयं को सजा कर खड़ी है, क्योंकि ब्रज का नन्हा नंदलाल स्वयं नटनागर उनकी गोद से पार होकर गोकुल जाने वाला है। यमुना महारानी आज केवल नदी नहीं है, उनकी व्यग्रता उपन कर शिशु कृष्ण के चरण छू लेने की है। देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, चरणों को छू भर लिया हुई सांवरी देह। और अब अगली आवाज डॉक्टर नृत्य गोपाल की।
0: डॉक्टर मीनू खरे, आप इस समय देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ हम जिधर देख रहे हैं, चारों ओर श्रद्धालु अपार जन समूह इस समय श्रद्धावनत होकर के अजन्मे के जन्मोत्सव की पावन घड़ी का पल पल बाट जो रहा है और हम देख रहे प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे कन्हैया के प्राकट्य की घड़ी पास आती हुई, वैसे वैसे जय घोष से गूंजों से मंदिर परिसर ऐसे गुंजायमान हो रहा है जैसे कि गगन भेदी ये स्वर यहाँ पर सबको आह्लादित उमंगित कर देता है। इस उल्लास के वर्णन करना हम इन शब्दों में जैसे जैसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर का यह आंगन, द्वारकाधीश की जय, वसुदेव नंदन की जय, देव की नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन के जयकारों के साथ गूंज रहा है। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फरचंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस कन्हैया लाल की जयकारे के साथ ये माखन चोर कृष्ण आज जब इस मथुरा भूमि पर यहाँ पर पधार रहा है, तो यहाँ पर भक्तों का ही जो समूह है इनका नृत्य देखने लायक है। और बहुत सुंदर देखने लायक यह भी है कि देश विदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं कैसे कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये जो सामने से एक टोली जा रही है लग रहा है कहीं विदेश से आए हुए हैं, और इन्होंने कितने सुंदर मोर पंख धारण किए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए, वो कभी बांसुरी को देखते हैं कभी मोर पंख को देखते हैं, और कैसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और क्या है, कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा, क्रीड़ा स्थली गोकुल, लीला स्थली नंदगाम बरसाना, दिव्य महाराज की पावन धरा वृंदावन की छवि आज अलौकिक है। और जनमानस भावातिरेक में बार बार यही गाए जा रहा है, बड़ो भाग नंद रानी तेने पायो, तेरो पुत्र जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो। आस्था और संस्कृति के इस जीवंत आज के इस अवसर पर जहाँ पर सदियों पुरानी परंपराओं का जिस तरीके से निर्वाह और उसको लोक में उतारने का अद्भुत जो एक क्रम द्वारकाधीश मंदिर से, और यहाँ के सेवायत धन्य है, देख रहे हैं जैसे जैसे समय पास आ रहा है कुछ कुछ यहाँ पर हलचल होने लगी है। कुछ सेवायत इस समय थालों में भर करके बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री ला रहे हैं। और आज हमने प्रातः काल यहाँ के सेवायतों से बात की, एक विशेष भोग यहाँ पर आता है, धनिये की पंजीरी के साथ सौंठ के लड्डू ये यहाँ का, और सीरा जो कि ब्रिज का अपना ही प्रसाद है, उस सीरा का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। और देख रहे हैं कि धीरे धीरे कितने सुंदर सजे हुए हमारे ये जो यहाँ के सेवायत हैं, यहाँ इनको मुखिया जी कहा जाता है, और बड़ा बड़ा सुंदर क्रम यहाँ पर सेवायतों का, लेकिन सुंदर सुंदर वस्त्रों में थाल लिए हुए यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि संभवतः इसमें दधि दूध मक्खन घृत शर्करा ये सब अभिषेक के लिए लाया जा रहा है। और प्रातः काल भी यहाँ पर अभिषेक हुआ, श्री कृष्ण की जन्मपत्री का वाचन हुआ, और अब इस समय

0: माता के जन्म की घड़ी पास आ रही है, तो जैसे जैसे ये जैसे पर्दा हिलता है तो भीतर हम देख रहे हैं कि इस प्रांगण में हमारे श्रद्धालुओं में ऐसा उत्साह आ जाता है, उन्हें लगता है कि पर्दा खुलने वाला है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां तो भीतर से कुछ ना कुछ सामग्री लाई जा रही है, और इस सामग्री में कौन कौन सी सामग्री होगी हम थोड़ी देर में बताएंगे। डॉक्टर मीनू खरे, आप देख रहे हैं कितनी हलचल होने लगी है श्रद्धालुओं में,
1: मानो अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ। आज इस समय श्री द्वारिकाधीश मंदिर में, जो कि जहां पर बल्लभ संप्रदाय के आचार्यों के संरक्षण में पूजा अर्चना की जाती है, पुष्टि मार्गी सेवा प्रणाली के अंतर्गत आज भाव भोग श्रृंगार की प्रधानता है। यहां पर बाल भाव की सेवा की जा रही है, भगवान का यहां पर ध्यान मुद्रा में है, और यहां पर जय जयकार के नारे के लोग अब उनसे प्रतीक्षा के पल बहुत भारी हो रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई दीर्घाओं में, दर्शक दीर्घाओं में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए उनके वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएं जहाँ से कम एक बार वो देख तो लें। आप श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर। एक आकाशवाणी द्वापर युग में भी हुई थी जब कि हे कंस, देवकी का आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा, लेकिन एक के बाद एक सात पुत्रों को मारा गया, पर जिसे भगवान बचाए, जब भगवान स्वयं अवतार ले तो फिर किसकी क्या विसार। चारों ओर अंधकार था पर प्रकाश का अद्भुत संचार होने वाला था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। संकादि ऋषि स्तुति करने लगे, वासु सर्व निवास परम पुष्प वासुदेव। देवकी वासुदेव विस्मित माँ ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी संतान के इस दिव्य रूप के आभा सहने की नेत्रों में क्षमता नहीं है। और देखते देखते चतुर्भुज रूप नीलमणि सी कांति वाले द्विभुज बालक के रूप में बदल कर बाल रूप में रुदन करने लगे। ऐश्वर्य का विस्मरण हुआ और वात्सल्य उमड़ पड़ा। वसुदेव ने शिशु को गोद में उठाया, पांवों की बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए और एक नई यात्रा की ओर चल पड़े वासुदेव कृष्ण को लेकर। मानो अपने यमुना नदी ज्योति उफान पर थी, वो धीमे धीमे, और अब यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण इकट्ठा हो गए हैं। चारों ओर जिधर भी देखिए आपको भक्तगण दिखेंगे, उनके अंदर अद्भुत सामंजस्य है। भीड़ होने के बाद भी उनके अंदर सामंजस्य है और वो एक दूसरे को किनारे होकर जगह दे रहे हैं खड़े होने की। और हमारे बीच में ब्रज संस्कृति साहित्य के विशेषज्ञ और समालोचक आशुतोष शुक्ल भी हैं। अगली आवाज आप सुनेंगे आशुतोष शुक्ल।
2: अब वह घड़ी निकट है जब लाला का अवतार होने वाला है। अवतार ऐसा क्षण है जो बड़ा ही भक्तिपूर्ण होता है। यह अवतार का क्षण भावनाओं का चरम शीर्ष होता है, भक्ति का चरम शीर्ष होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। भागवत कहता है, निशीथे तम उद्भूते जाय मने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाश्यः आविरासीत यथा प्राच्यम दिश इंदु इव पुष्कलः। जिसका भावार्थ है, मध्यरात्रि के उस दिव्य समय में जब भगवान जनार्दन का प्राकट्य हुआ, तब सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। इसी बीच मंदिर के पट खुल गए हैं, पर्दा हट गया है और श्री द्वारिकाधीश जी महाराज के दर्शन सबको सुलभ हो रहे हैं। और हम इसी के साथ ही मां भागवत के उस क्षण पर चलते हैं जब माता देवकी और पिता वसुदेव ने अपने दिव्य बालक के दर्शन किए, तो उन्होंने देखा कि वह साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में अवतरित हो चुके हैं। भागवत कहता है, तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि युदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। इसका भावार्थ है, वसुदेव ने उस अद्भुत बालक के दर्शन किए जिसके नेत्र कमल के समान

0: बलवान थे, वे चार भुजाओं वाले थे, उनके हाथों में दिव्य आयुध थे, उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी, वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनका स्वरूप वर्षा के गहरे मेघ के समान अत्यंत मनोहर था। ऐसे अलौकिक स्वरूप को देखकर देवकी और वसुदेव का हृदय आनंद, आश्चर्य और भक्ति से भर गया। वे समझ गए कि जिन परमात्मा की उन्होंने आराधना की, वही आज पुत्र रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की कि प्रभु अपने इस दिव्य स्वरूप को छिपाकर सामान्य बालक का रूप धारण करें, ताकि कंस के इस दिव्य प्राकट्य का ज्ञान न हो। श्रीमद् भागवत में माता देवकी की यह प्रार्थना अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में आती है। उपसंहर विश्वात्मन अदह रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। इसका भावार्थ है, हे विश्वात्मा, अपने इस अलौकिक चतुर्भुज स्वरूप को अब छिपा लीजिए। शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित यह दिव्य स्वरूप अत्यंत अद्भुत है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप सामान्य बालक के रूप में अपनी लीला प्रारंभ करें। यही वह अद्भुत क्षण है जहां परम सत्ता ने प्रेम के लिए स्वयं को सीमित कर लिया। जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वही माता पिता की गोद में आने के लिए तैयार हो गए। यही भगवान और भक्त के संबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी के साथ मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कृष्ण जी के।
1: धन्यवाद आशुतोष शुक्ला जी, क्या ही सुंदर पल, अद्भुत घड़ी, और जिस घड़ी की प्रतीक्षा सभी को थी, और इस समय पार्कधीश मंदिर के ये पट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं की अपलक निहारने की ये जो कला, ये जो दृष्टि और वो जो कन्हैया को अपने नेत्रों में भरने की ये जो ललक है, श्रद्धालु इस समय राजाधिराज द्वारकाधीश की अनुपम छवि को एकटक अपलक होकर निहारे जा रहे हैं। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, शंख ध्वनि, नगाड़े की ध्वनि, नफीरी की ध्वनि, क्या आज के इस धन्य यशोदा भाग्य त्योहारों जिन ऐसा सुत जायो, आज द्वारकाधीश प्रभु का अलौकिक श्रृंगार हम देख रहे हैं ठीक सामने। इस श्रृंगार को भारी श्रृंगार कहा जाता है और यहाँ आभूषण और अलंकारों से सुसज्जित द्वारकाधीश अवर्णनीय छवि, भक्तजन मंत्र मुग्ध आकर्षित हुए जा रहे हैं। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ पर मुक्ताहार, मणियों की मालाएं, कलाइयों में कंगन, सुंदर करधनी युक्त आभा, पर्वत अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। जो जहाँ खड़ा है वहीं पर ठगा सा रह गया है। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मनमोहन के साथ मनमोहक भी लग रहे हैं, और संभवतः यही वह श्रृंगार है, यही वह सौंदर्य है, यही वह आकर्षण रहा होगा जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक में लिख दिया, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वसनम मधुरम, चरितम मधुरम, वचनम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आज लोकमानस, जनमानस का उत्साह, उमंग और श्रद्धालुओं में इस समय बहुत तीव्रता से हर कोई चाहता है कि मैं तुरंत आगे जाऊं और अपने कन्हैया को, अपने द्वारकाधीश को, उनके बगल में विराजित रुक्मणी जी को यहां जाकर के निकट से देख लूं, दर्शन कर लूं, या मुरली मनोहर की अद्भुत छवि उसका दर्शन कर लूं। और कभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं, कभी सामने पर्दे पर नाचते हुए मोरों की छवि देख रहे हैं, और लेकिन पुनः सभी की दृष्टि अपने अपने द्वारकाधीश के चरणों में लगी हुई है। और पुष्टि मार्ग में यही कहा जाता है, चरणों से ऊपर की ओर जैसे जैसे दर्शन किए जाए, कुंडल की छवि अद्भुत है, क्या ही सुंदर ये मुकुट की छवि, आप जिस अंग को देखें, जिस जगह से देखें, मेरे कन्हैया को यहाँ पर देखना, और ये देखते देखते यहाँ पर आतुरता से बाट जो रहे बाहर जो श्रद्धालु खड़े थे, अब वो धीरे धीरे धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। और धन्य है ये ब्रजवासी, और धन्य है ये सेवायत, आप अद्भुत देखेंगे, जिसको भी किसी को कष्ट ना हो, जो यहाँ पर सेवक लगे हुए हैं, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, सिर्फ सबसे यही कहते हैं राधे राधे राधे जरा आगे चलो। और ये ब्रज में जैसे जैसे राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, इसकी गूंज के संग ये ब्रजवासी आगे आ रहे हैं, ये यहाँ पर श्रद्धालु आगे आ रहे हैं। और किसी को अस्पताल ना हो, इसके लिए हमारे ये जो व्यवस्था में लगे हुए सेवक हैं, इनका भी कहना क्या, इनको धन्यवाद। और इस समय चलते बहुत सुंदर झांकी के लिए, वहाँ पर भागवत भवन में श्री कृष्ण जन्म स्थान से क्या दृश्य, क्या मनोरम छवि है, इसके लिए चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान भागवत भवन।
0: अद्भुत है हमारे कन्हैया के जन्मोत्सव की ये छटा। ये संपूर्ण अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सप्तपुरिया ही नहीं, स्वर्ग से देवता भी लालायित होकर इस दृश्य का साक्षात्कार करने के लिए एकत्र हो गए हैं। और सबकी दृष्टि समय पूरे ब्रजमंडल पर है, जहां हर घर में कृष्ण जन्म के आनंद की बधाइयां गाई जाने लगी हैं, क्योंकि वो क्षण अत्यंत निकट आ गया है जब परमात्मा एक बार पुनः अवतरित होंगे प्रतीक रूप में इस धराधाम पर, हम सभी को आश्वस्त करने के लिए। यहाँ भागवत भवन के जो विक्रय है, वहां पर सहस्त्रार्चन पूर्ण हो चुका है, वहां पर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं भगवान के जन्म के समय उनके विशिष्ट पूजन की। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अनवरत बढ़ता चला जा रहा है, वो बाईं तरफ से प्रवेश करते हैं, तालियां बजाते हैं, गाते हैं। और अब यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा विविध रूपों में परिलक्षित हो रही है। बच्चों को उन्होंने कान्हा बना रखा है, कोई राधिका बनाए हैं, उन्हें जब लाते हैं विक्रय के सामने तो अपने कंधे पर बैठा ले रहे हैं, ठिठकते हैं, लेकिन एक बार पुनः विवशता है क्योंकि पीछे से प्रवाह भगवती यमुना के समानांतर चला आ रहा है। परसों से ही लगातार जब श्रद्धालु इस धराधाम पर आ रहे थे तो देखकर लगता नहीं था कि कैसे इतने श्रद्धालु इस ब्रजमंडल में समाएंगे, लेकिन ममता मई माँ की तरह इस पूरी धराधाम ने सभी को समाहित कर लिया है। सामने छोटे जगमोहन में पुजारी विराजमान हो चुके हैं, वहां पर पूजन की तैयारियां चल चुकी हैं, जो स्वर्ण और रजत के चौकियां हैं वो लग गई हैं, जहां पर कुछ ही पलों के बाद प्राकट्य के बाद भगवान की आरती होगी, वहां पर वो अपने दर्शन देंगे। और जो बड़ा जगमोहन कह सकते हैं, जिसे आज घेर कर विशेष रूप से बनाया गया, कुछ विशिष्ट जन बैठे हैं, तालियां बज रही हैं, वहां पर इस समय भजन चल रहा है और लोग भजन में नृत्य भी कर रहे हैं, आह्लादित है कि कृष्ण जन्म का ये उत्साह है। यहाँ पर आज कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है, ड्रोन के द्वारा बाहर भगवान श्री कृष्ण की झांकियों को भी दिखाया जाएगा, साथ ही साथ काशी और अयोध्या से भी भगवान के लिए विभिन्न पोशाक और उनके साथ लिए प्रसाद आया है वो भी चढ़ेगा, क्योंकि काशी, मथुरा और अयोध्या इन तीनों को स्थलों को जोड़कर एक विविधता की गई है। यहाँ पर जब आते हैं तो मुख्य विग्रह के ठीक दाहिनी तरफ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के विग्रह भी विराजमान हैं, और उनके ठीक सामने हनुमंत लाल उनके दर्शन करते हैं, जबकि मुख्य विग्रह के बाईं तरफ बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी हैं, जो कि ब्रज की संस्कृति और पुरी के उड़ीसा की परंपराओं का एक वैशिष्ट्य पालन है। सामने एक शिवलिंग है और उसके ठीक सामने भगवती दुर्गा जी है, यानी कि वैष्णव, शैव और शक्ति तीनों ही परंपराओं का अद्भुत पालन यहाँ पर होता है। बात हम करें भागवत भवन की, तो भागवत भवन की विशिष्ट विशेषता इसकी है जो दृश्य कथा वाचन की परंपरा है। इस भवन के स्तंभों, दीवारों और छत पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की कथा चित्रित है। बाल रूप के कई प्रसंग हैं, तो कहीं गोप गोपियों के साथ लीला है, कहीं कान्हा का प्रेम है, तो कहीं कृष्ण का ज्ञान। यहाँ की दीवारें भी कथा कहती हैं और स्तंभ मात्र भार नहीं उठाते, उनकी लीलाओं के साक्षी भी बनते हैं। और अचानक बड़े जोर से एक हलचल सी हुई है, कोलाहल से हुई है, ये माइक्रोफोन से आवाज भी जा रही होगी। श्रद्धालु उत्साहित हो गए हैं क्योंकि वो क्षण आने वाला है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह को क्या कहा जाए। उन्हें लगता है कि पुजारी जी थोड़ा सा भी पर्दा हिलाते हैं तो लगता है प्राकट्य हो गया है, जबकि वो क्षण है। और उनके उत्साह में उत्साह मिलाते पूरे जगमोहन में लोग खड़े हो गए हैं, अबीर गुलाल उड़ाकर नृत्य करने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एहसास होता है कि वो घड़ी अभी थोड़ी देर में आएगी तो फिर वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये अद्भुत वातावरण रोमांचित कर देने वाला है। लोग यहाँ ठिटकते हैं, खड़े होते हैं, ठाकुर जी को निहारते हैं, राधा रानी को निहारते हैं, उनकी छवि आंखों से आंखें मिलती हैं तो अपलक उन्हें देखते रहते हैं और अश्रु बहने लगते, स्वयं रोमांच हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। और देशी और विदेशी पुष्पों से सज्जित
2: सुगंधित ये पूरा वातावरण आज अपने परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है जहां पर विशिष्ट पूजन अर्चन अपने अंतिम आयाम पर पहुंचेंगे और प्रकटेंगे एक बार फिर आठवें अवतार के रूप में हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने चुना है इस ब्रज धाम को।

0: आकर सभी लोग आनंदित हैं, उल्लसित हैं, उमंगित हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। शास्त्रीय और लोक कलाकारों ने मंच बनाए हुए हैं पूरे मथुरा में, जहाँ पर वो गीत संगीत से अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं। वो भी क्यों ना, ये वो धराधाम है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे। यहाँ की रज भी मोक्षदायिनी है, इसे देवता भी पूजते हैं और पूजे भी, क्यों ना, क्योंकि ये वही रज है जिसमें हमारे लाला ने जब कभी माता यशोदा से बिलख कर कोई जिद पूरी नहीं की तो उनके आंसू इसी रज में है। हमारे नंद बाबा की गऊओं को चराते समय या फिर सखवा के संग खेलते हुए उनके जो पसीने की बूंदे गिरी तो वो भी इसी रज में है। और एक बार फिर श्रद्धालुओं का प्रवाह फिर जोर से उत्साह से बढ़ गया है, तालियां बजती हुई, उत्साह अपने चरम पर पहुंचता हुआ, भावनाएं ऊंची पड़ते हुई। और अब जबकि वो प्राकट्य का समय नजदीक आने वाला है, आगे का विवरण देने के लिए श्री कृष्ण जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। भक्तों के आने का क्रम अचानक से बढ़ गया है और ये मुख्य मंदिर का पर्दा गिरा दिया गया है और भक्तों में एक उत्तेजना, उत्साह, उल्लास, दोनों पैरों पर उछल उछल कर, दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे जय श्री कर रहे हैं। और यहाँ पर सेवायतों ने मुख्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। शास्त्रोक्त विधि से जो भगवान के जन्म की प्रक्रियाएं होती हैं, जो परंपराएं, उनका पालन किया जा रहा है। और जो मंदिर के ठीक सामने जो विशेष स्थान बनाया गया है, जहाँ पर विशेष जन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं, सभी हाथ ऊपर कर उठा कर नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं। बस प्रतीक्षा उस पल की कि जब ये कपाट खुलते हैं। और जो भक्तों का आने क्रम था अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कपाट खुलने की प्रतीक्षा है। यही तो वो पल था जिसको प्रतीक्षा वर्ष पर्यंत करते हैं और आज इस विशेष मौके पर उस पल को कैसे गवा दे। सुरक्षा प्रहरी सेवाएं तो ने बार बार निवेदन कर रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि भक्तों का आने क्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, संभालना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन भक्तों का उत्साह कहीं कम नहीं हो पा रहा है। और ये पट इस तरह बंद है, जो यहाँ पर सेवाएं हैं पट के बाहर खड़े हुए हैं, उसमें दो मयूर बने हैं और जो कास्ट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें पीतल से मोर और नीचे दो मोर नाचते हुए अद्भुत दृश्य है। ये वो बेसब्री की घड़ियां है जिनको इंतजार करना हर एक के लिए बहुत कठिन हो जाता है। बस किसी भी पल ये पट खुलने वाले हैं। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं अपलक निहार रहे हैं कि कब वो घड़ी आए और जब वो लाला का प्रथम दर्शन करें। प्राकट्य उत्सव के बाद जब लाला बाहर आते हैं उस घड़ी को देखने के लिए, निहारने के लिए सभी एकजुट, और ये कपाट खोल दिए गए हैं लेकिन अभी पर्दा नहीं खुला है। भक्तों में उत्साह है, अचानक जैसी राधे का जय घोष हो रहा है और ये सुंदर पर्दा जिसमें गौ माता बनी है, दो हाथी बने हैं, उसमें एक वृक्ष है, बहुत ही रंग बिरंगे झिलमिल सितारों से ये पर्दा जिसके हटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, नृत्य कर रहे हैं और जो यहाँ पर भक्त लोग भजन गा रहे थे, अचानक उनके भजन गाने में ढोल, झांझ, मजीरा, मृदंग और यह पर्दा खुल चुका है। प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और यहाँ पर एक रजत कमल है, यंत्र चालित दम धीरे धीरे उसकी पंखड़ियां खुलती हुई, क्रमशः पंखड़ियां खुल रही हैं और यह लड्डू गोपाल के प्रथम दर्शन आम भक्तों को सुलभ हो रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, यही दृश्य ऐसा जो सभी अपने नजरों में, नेत्रों बसा लेना चाहते हैं। वहाँ पर जो दूसरे सेवायत हैं वो आरती कर रहे हैं और इसमें प्रथम कल से यहाँ पर पुष्पों की वर्षा हो रही है, गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसाई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त ही नहीं बल्कि भगवान भी स्वर्ग से यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है और सुगंधित द्रव्य भी वहाँ पर बरसाए जा रहे हैं, गुलाब जल की वर्षा हो रही है, पूरा वातावरण सुगंधित हो चुका है और ढोल, झांझ, मजीरे, मृदंग, संग, इनका संदेश पर अद्भुत रोमांच पैदा कर रहा है। भक्त का ऐसा समूह और शायद कहीं प्रतीत नहीं होता है। और यहाँ पर जो लोग अपने मोबाइल लेकर आए विशेष जन है, सभी के मोबाइल पर उठे हुए हैं और यहाँ के दृश्य अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने परिवारिक जनों को, अपने मोहल्ले में, टोले में, अपने जनपद में यहाँ के दृश्य वहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है और इसी दृश्य को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर पधारते हैं। और ये कमल जो रजत कमल था उसकी पंखुड़ियां खुल चुकी है, वहां पर चल विग्रह लड्डू गोपाल के विराजमान है उन्होंने पीले वस्त्रों से अपने आप का श्रृंगार किया गया है और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वे सब तालियां बजा बजा कर उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं और सभी का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक समय तक लड्डू गोपाल को निहार सके। लेकिन जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है उन्हें अपने स्थान पर रुकने नहीं दे रहा है और इस समय आरती हो रही है और इस आरती के बाद यहाँ पर लड्डू गोपाल को जो यहाँ पर सेवायत हैं बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ भक्त के भाव के साथ अपने शीर्ष पर रखकर बाहर यहाँ पर एक मंच बनाया गया है जहाँ पर एक रजत स्वर्ण मंडित एक कामधेन व्रत की गई है जिनके पैदलों से निकली दुग्ध धार से प्रभु का यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा और इस समय जो आरती क्रम है वहाँ पर चल रहा है और भक्त लगातार आके आते आ जा रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्था की गई ध्वनि विस्तार केंद्रों से जो ढोल मंजीरे शंख की जो अद्भुत ध्वनि है पूरे जन्म स्थान में ही नहीं बल्कि जन्म स्थान के आसपास जो जितना क्षेत्र है सभी जगह पर यहाँ पर ये ध्वनियां बिखर रही है और जगह जगह यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जो भक्त जहाँ भी हैं ये अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। ये मथुरा नगरी जहाँ पर देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं आज तो अद्भुत दृश्य है। अचानक भक्तजन उछल उछल नृत्य कर रहे हैं और जितने विशेष जन हैं उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा रखा है क्योंकि ये जो बच्चे हैं कहीं भीड़ में भगवान का ये अद्भुत दृश्य देखने से वंचित न रह सके। कुछ यहाँ पर दृश्य आए कुछ ऐसे भी भक्तजन है जिन्होंने लड्डू गोपाल को एक पालने में टोकरे का रूप दिया उन पर लेकर आए हैं वो भी यहाँ पर दृश्य करा रहे हैं और कृष्ण के विविध रूप है जो राधे राधे का अभिवादन है चाहे गीता का पठन पाठन हो युद्ध भूमि में हो कृष्ण हमारे बीच अनेक रूपों में आते हैं। और आइए चलते हैं देश दीपक मिश्र के साथ आगे के दृश्यों के लिए।
0: जब सांसों में यमुना बहे और मन वृंदावन हो जाए जब भीतर का कंस सो जाए और कृष्ण जाग जाए अंधियारे की कोख से जब उजियारा मुस्काए समझो उसी क्षण हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए। हो गया है जन्म प्रतीक रूप में हमारे परमात्मा हमारे ईष्ट हमारे आराध्य श्री कृष्ण का हमारे लाला का हमारे कान्हा का और उनके इस जन्मोत्सव का साक्षी बनते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ भागवत भवन इस समय पर्याय बन चुका है प्रेम का भक्ति का उल्लास का उत्साह का आनंद का माधुर्य का। उछलते कूदते पीत वस्त्र धारण किए हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा का कोई अंत नहीं है। इस समय थोड़े से शिथिल हो गए हैं हमारे प्रशासन के लोग भी वो शायद वो भी लीन हो गए हैं अपने परमात्मा की उस आराधना में जो इस समय मुख्य पुजारी जी कर रहे हैं और हालांकि इस शिथिलता में भी वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं बहुत ही आसानी के साथ देख सकता हूँ बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हमारे प्रशासन की एक कर्तव्य विवशता दोनों एक से बने हुए हैं और इस समय कहते हैं कि इस पूरे भवन में एक अद्भुत वातावरण है और ये वातावरण सिर्फ यहाँ नहीं भागवत भवन में नहीं मथुरा में नहीं हर घर में नहीं गोकुल बरसाना वृंदावन और नंदगांव में नहीं संपूर्ण सृष्टि में हो रहा है क्योंकि अभ्युत्थान आए अधर्मस्य संभव।

0: राधा रानी का प्रेम, उनकी निश्चलता, उनका आनंद अभिभूत कर दे रहा है। कहते हैं कि इस धरा पर आने के बाद जन्म सफल होना क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ये गूंगे का गुड़ की तरह है। लेकिन जो आज मथुरा नगरी में है, भागवत भवन में है, हमारे इस युगल सरकार के विग्रह के सामने है, वो रोमांचित हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि जन्म सफल होना किसे कहते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम भी है, सखा भी है, पथ प्रदर्शक भी है और निष्काम कर्म योगी भी है। संपूर्ण पुरुष की व्याख्या करते हुए यहाँ पर सभी उनके सामने आनंदित हैं, क्योंकि आज वो संपूर्ण पुरुष नहीं, वो कर्म योगी नहीं, वो एक लाला है, हमारे लाल हैं, हमारे शिशु हैं, जिनके आगमन से सभी आह्लादित हैं। इस भागवत भवन की दीवारों के स्तंभों पर विविध प्रसंग भी अंकित है, कहीं राम जटायु प्रसंग है तो कहीं सती के कटे मस्तक पर झुकी शिव भगवान है। तालियों की गूंज, संगीत के धुन के साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ता हुआ कृष्ण जन्म का भी प्रतीक बड़े गूढ़ है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं गूढ़ अर्थों को भी लेके आती हैं। आधी रात को जन्मते हैं कृष्ण जब चारों ओर अंधेरा होता है और क्रोध का, ज्ञान का, अज्ञान का, अंधकार का जब भीतर भर जाता है तो अंधेरा होता है, और जब चेतना जन्म लेती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही कृष्ण बनता है। और इस समय पुष्प वर्षा की जा रही है, जहां से हम ये विवरण दे रहे हैं हमारे ठीक थोड़ी दूर पर जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, और ये आगमन है अपनी अपनी खुशियों को। ये जो पुष्प वर्षा हो रही है, ये गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां हैं, श्रद्धालु इन्हें पकड़ रहे हैं, हाथों में ले रहे हैं और मुट्ठी में बांध रहे हैं, आंचल में बांध रहे हैं, इससे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके ले जा रहे हैं। वो अपने घर ले जाएंगे, धरा धाम ले जाएंगे, जहां पर उन्हें लगेगा बाहर से वो कमल आ गया है, रजत कमल, जिस पर कुछ ही देर में विराजमान होंगे हमारे लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल बाहर निकलकर आने की तैयारी करते हुए, क्योंकि जो रजत कमल है वो यंत्र चलित है, उसे बैठाया जाता है, बनाया जाता है। इस बीच धूप तेज हो गई है, उत्साह फिर अपनी भावनाओं का उभार आ गया है, अश्रु बहते हैं, रोम पुलकायमान है, आत्मा आनंदित है। लड्डू गोपाल सूप में बैठकर शेषनाग की छत्र छाया में आएंगे और यहाँ पर उनका अभिषेक होगा, जल के बाद दुग्ध अभिषेक होगा और उसके बाद पंचगव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद महाआरती होगी। ये सब कुछ व्यवस्था यहाँ चलती हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का जो एक आनंद है, उस आनंद की कोई ओर छोर कोई सीमा नहीं। सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो उन्हें देखते हैं भागवत भवन की दीवारों पर कहीं वेणु वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण, तो कहीं नंद बाबा को अजगर से छुड़ाते हुए श्री कृष्ण अपने कान्हा की लीलाओं को देखकर सब आनंदित हैं। कृष्ण जन्म के प्रतीकों की बात हो रही थी, तो कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, आत्मा रूपी कारागार में जब आ जाती है, शरीर के रूप में आ जाती है आत्मा, तो कारागार होता है जहाँ उसे अपने प्रारब्ध का हिसाब करना होता है। कृष्ण को जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किसे भय नहीं होता है, ये संदेश बेहद सरल किंतु उतना ही गूढ़ है। हम सबके जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किंतु हम खुद को अमर समझने की भूल कर बैठते हैं और यही सभी दुखों का मूल है। कृष्ण कहते हैं कि आनंद में रहो, निष्कलंक रहो, निष्कपट रहो, हमें निश्चलता पसंद है और तभी कृष्ण को आप प्राप्त कर पाओगे। वासुदेव जी की उफंती यमुना में लाला को लेकर जाना भी एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसा संकेत है जिसे समझना होगा। उफंती लहरें हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, सुख की लहर, दुख का बहाव, किंतु जब सर पर सत्य यानी परमानंद की कृपा हो तो समस्त परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तालियों की गूंज में श्रद्धालु बढ़ते हुए रुकते हुए पीत वस्त्रों में यहाँ पर पुजारी यहाँ पर हैं और वो पूजन की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। कुछ ही क्षणों में लड्डू गोपाल का आगमन होगा, जो कि शिष्य रूप में है, सूप में बैठकर आएंगे और शेषनाग की छत्र छाया में, जो कि रजत कमल में विराजित होंगे, यंत्र चलित है, और वहां पर जो कुछ भी होगा विशिष्ट पूजन अर्चन आगे का विवरण देंगे साथी श्री कृष्ण।
1: धन्यवाद देश में। इस समय भगवान कृष्ण का जो चल विग्रह है उसको बाहर लाया गया, जहां पर एक कामधेनु स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर के बाहर दो मंच बनाए गए हैं, एक दाहिनी ओर मंच है, एक बाईं ओर। दाहिनी ओर मंच पर ये कामधेनु विराजित है, जो रजत स्वर्ण मंडित और उनके पैदलों से निकली दुग्ध धार से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बाईं ओर मंच है वहां पर एक रजत निर्मित विशाल कमल पुष्प, उसके ऊपर जो पंखुड़ियां खुली थी वो पुष्प विराजमान है। अभी यहाँ पर दुग्धाभिषेक के बाद भगवान कृष्ण को इस मंच पर स्थापित किया जाएगा। और जब भगवान यहाँ पर आज प्रकट होते हैं तो भगवान कृष्ण के विविध रूप हमारे सामने आते हैं, कहीं प्रेमी रूप में आते हैं, कहीं भक्त केंद्र रूप में आते हैं, एक महान योगी रूप में, नटखट माखन चोर के रूप में आते हैं और ये बाल लीलाएं करते हैं। ये मन को आनंदित करने वाली तो है ही, साथ ही साथ इनसे महान दार्शनिक संदेश भी प्राप्त होते हैं। अगर वो गोप गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं, झूमर चराने जाते हैं, वो भले ही राजा के बेटे थे कुलीन से, लेकिन आम जनमानस के साथ मिलकर कैसे समाज में संदेश देना है, सहजता, निश्चलता, आत्मीय प्रेम, ये सभी संदेश उनके साथ मिलता है। समरसता की बात होती है और अगर वो काली नाग का दमन करते हैं तो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं। और वहीं साथ ही साथ आजकल किस तरह से नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है, इसका भी कहीं ना कहीं संदेश देता है और ये उतना ही आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की थी तो प्रकृति, पशुधन, कृषि, जीवन संरक्षण, सहकारिता, सामूहिक एकजुटता का प्रमाण है कि किस प्रकार से अगर कोई संकट आता है, भले ही देव इंद्र क्यों ना हमारे विपरीत हो, लेकिन हम सबके साथ मिलकर सबके सामूहिक सहयोग से हम इस विपत्ति से पार पा सकते हैं। ये संदेश देना भगवान के कृष्ण का जो उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था, जो उन्होंने दर्शन दिया है, वो हम सब के लिए एक तरह से प्रसाद हो सकता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के पंचाभिषेक की तैयारी हो रही है, इसमें पंचामृत बनेगा, दूध, घृत, शक्रा, शहद और इन सब के साथ गंगा जल। और यह अभिषेक के उपरांत यहाँ पर रात में 12:40 तक ये होगा, उसके बाद 12:50 पर श्रृंगार आरती हो और उसके बाद 1:25 से 1:30 तक शयन आरती हो और प्रातः यहाँ पर नंदोत्सव होगा। इस समय कान्हा की नगरी में भक्त की हिलोरें उफान पर हैं और न केवल भागवत भवन में बल्कि पूरी मथुरा नगरी में हर जगह, हर मठ में, मंदिर में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इस समय जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर जो भक्तजन भजन गा रहे थे उनके साथ साथ तालियां बजा बजा कर नृत्य कर रहे हैं, हाथ उठाकर कर रहे हैं और ये अत्यंत भावुक क्षण है जब भगवान का, प्रभु का अभिषेक चल रहा है। और यहाँ पर जो विसर्जन बैठे सुरक्षा कर्मी है, वे भी हाथ उठाकर नृत्य कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कुछ यहाँ पर ऐसे भक्तजन है, इनकी आंखों में आंसुओं का प्रवाह है, अत्यंत भावुक है। मैं बात कर रहा था अनेक श्रद्धालुओं से बात की जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और अपने परिवारजनों के साथ में आते हैं और यही मान्यता रहती है कि पिछले कई वर्षों से कुछ आने वाले श्रद्धालु हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रभु उन्हें अपने पास बुला लें। कम से कम आज के दिन जब प्रभु का प्राकट होगा, अजन्मे का जन्म होगा, पालनहार का जन्म होगा, वो यहाँ पर आए। और इस भक्ति के सागर में मैं श्री कृष्ण आप सबू को प्रभु के आगमन की, अजन्मे के जन्म की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। और इसी के साथ मैं श्री कृष्ण अपने साथी कमेंटेटर देश दीपक मिश्र, डॉक्टर बीनू खरे और डॉक्टर नित्य गोपाल के साथ आकाशवाणी के स्टूडियो वापस

अभी आप मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। श्री कृष्ण जन्म स्थान से आंखों देखा हाल सुना रहे थे श्रीयुत श्री कृष्ण और श्री देश दीपक मिश्रा। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से आंखों देखा हाल सुना रहे थे डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा केंद्र के सौजन्य से आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 12:15 हो चुके हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।